ठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार चार विचार

संध्या बादंग सिल पूज सुबगल समादंग मुख झूठ भूखण सारंग त्रिपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दो धोती बस्तर का पाटंग जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट नीचो कर्म तो नानक नीचो त्यावै बिन सतगुर वात न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छट दुनिया अंदर जाम नाम रचना अपना आपे ही इतना पावना हुक्म किए।

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती स्मरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय, और जन हर गोबिंद नाउ सुमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जस डठे सब दुख जाए, तेक बहादुर सुमरिया घर नाउ नावे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड सगया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चरियारिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचारे आए। तो देख तेग फतेह गिरद की पैज पंत की जीता, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान, चौंकिया झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार तिस बा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो
ਨਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ।

स्वागत करम साजन जी मिश्रे आवास में लोलित दिलाई आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे पेश आहे तफ़सरो अठजानी वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन शांघाई 2026 में भारत जी टीम नई पोजीशन हासिल कई है तंहिं में 6 चांदी जा बिला ऐं 20 बिला एक्सलेंस जा हासिल कया आहिनि आर्मी स्किल्स चटाभेटी ताज़ो चीन जे शांघाई में पूरी थी अॼु भारत जी पोज़ीशन वर्ल्ड स्किल्स लाइन 2024 में 13 नंबर ते हुई जिते भारत 4 कांस्य बिला ऐं 12 बिला एक्सलेंस जा खटिया हुआ आर्मी समत ते मुल्क जे स्किल्ड नौजवाननि जे रिज़र्व में बहितरी आई आहे चांदी जा बिला वर्ल्ड स्किल्स शांघाई में खटिया आहिनि स्मृति नामबियार बेकरी में मोहम्मद सलाम डेंटल प्रोस्थेटिक्स में कोविद अजय गांगरड़े डिजिटल इंटरएक्टिव मीडिया डिजाइन में पार्थ वोरा इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में मेहरुनिसा बेगम लॉजिस्टिक एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग में तंहिंखां अलावा सनिया जोशी रिटेल सेल्स में चांदी जो बिलो खटियो आहे इन सभिनी जी हासिलात क्रिएट तकनीकी ऐं सेवा खेत्र सां वाबस्ता स्किल्स में आर्मी समत ते भारत जे टैलेंट जो पतो ॿुधाए थी इन खां अलावा भारत ॿिया 20 बिला एक्सलेंस में कया आहिनि तंहिंमें घणा ई खेत्र जी था वञनि तकनीकी हुनरी डिजिटल क्रिएट ऐं सर्विस स्किल्स

ফ্রেশমেন্টে নামি আর ব্যাকরিমে চালি জবিলো খটবায় তাইখে বেস্ট অফ দ্য নেশন ফর ইন্ডিয়া করে মই তারিনি হই আই ছিন জো বেনল কোমি বাকিও 22 সেপ্টেম্বর খা 27 সেপ্টেম্বর 2026 দরমিয়ান হলো জেমে 1400 খা বধিক নওজওয়ান জটা ভেটি কান্দন হিসো ورتো সে লগভগ 70 মুলকন এ এলাকান মা আয়ল হুয়া चटाभेटी में भारत पे ये मजबूत टीम मोकली जैमें 70 हिस्सों वठन हुआ तेरे ट्रेड कैटेगरी स्किल्स भी हूँ ओवर टेक्नोलॉजीज का वाटी करे जदीद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्रिएटिव हुनर स्पेशलाइज सर्विसेज ट्रेनी खां 26 सितंबर 2026 जे चैनियन जे तेज चटाभेटे खां पोए खटमान के तारीनी वही 27 सितंबर थे शांघाई में जलसे में खास तकनीकी महारत इनोवेशन क्राफ्टमैनशिप चटाभेटी कंदन के एक हंत कठो करे आर्मी एजन महारन हुनर जे एजन के दुनिया भर जे हुनर जे एजन के एक हंत कठो कर वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जे सूबाई वजीर इंडिपेंडेंट चार्ज श्री जयंत चौधरी भारतीय टीम के वाधायु नींदे चाहिए भारत जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड स्किल शांघाई 2026 में बेहतरीन रहा है जैमें असाखे छह चांदी जा मिला वीह मेडल्स एक्सलेंस में मिले तैसा असाजी आलमी स्किल्स यात्रा में जो सुधार आयो है हर के चटाभेटी में हिस्सो वठंदड़ माहिर ट्रेनर हुन जे भाईवर के सभी के इन हासिलात जो वाधाई डिन्हियूं वधीक चयो त इहा सोब असांजे वचनबद्धता के पुदराती करे त असां हिकु मुस्कबिल तयार स्किलिंग इकोसिस्टम तयार कर रहिया आहियूं जंहिं सां हर हिकु नौजवान भारती आलम जे वधि में वधि बेस्ट सां चटाभेटी करे सघंदो आहे हिन साल भारत जे हिसे वठण जो ॿियो ख़ासि हिकु अहम पहलू रहियो 11 नयूं ऐं उभरंदड़ स्किल्स कैटेगरियूं तंहिंमें अची थो वञे डेंटल प्रोस्थेटिक्स डिजिटल इंटरेक्टिव मीडिया डिज़ाइन इंटेलिजेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लैंडस्केप गार्डनिंग ऑप्टो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी रिटेल सेल्स अनमैन्ड एरियल सिस्टम इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैवी व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जब वर्ल्ड स्किल्स शांघाई 2026 पूरी थी भारतीय टीम फकत बिला खटिया पर वचनबद्धता लचकेदारी ए 70 नौजवान भारतीय के अभिलाषण के पण हासिल कर जिन मुल्क जो एफसी पिणों आलम के वध में वध तेज फर्म स्किल्स प्लेटफॉर्म से दिनों वर्ल्ड स्किल आलम जी वध में वध आलमी चटाभेटी वाली स्किल्स की कॉम्पिटिशन है जैमें दुनिया भर में नौजवान प्रोफेशनल्स माहिर अची करे इकट्ठा थींदा आहिनि ऐं हुननि वोकेशनल ऐं टेक्निकल स्किल्स में पंहिंजा जौहर ॾेखारींदा आहिनि इहा चटाभेटी हर ॿिए साल थींदी आहे ऐं हिन में आलमी दर्जा मापिया वेंदा आहिनि इन्हनि दर्जनि ते चटाभेटी थींदी आहे तंहिंमें ॼाण जी मट सट थींदी आहे ऐं नौजवान माण्हू पंहिंजे स्किल कैरियर खे अॻिते वधाईंदा आहिनि। तव्हां तफ़सरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम सही तोखे खबर।

एशियन खास खास खबरों। भारत यूएई व्यापार के रवानगी $1 ट्रिलियन जो निशान मुकर्रर किया हुआ है। ऐसा 2032 ताई 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो निशान मुकर्रर किया हुआ है। बिनल कौमी वचनबद्धता के दोहरा हुआ है तो फिरके वार पढ़ने लाए भाव के दूर कह वेंदो यो भारत प्यान मुदा जमात पिनो अलावा डरबन ऐलान ते अमल करण जो पण सडनो। भारत सेहत मदबरी के पुख्तो कंदे श्रीलंका डां एंटी टीबी मेडिसिन जा 3 टन दवा मोकलियो आहिनि। ईरान मुता जमायत एविएशन वॉचडॉग में रस्मी तौर पर जो प्रोटेस्ट दायर किया हुआ है जो अमेरिका मथस उड़ा में जो बंदिशों ही हुआ है। एविएशन वादन में भारत 12 नंबर ते अची पहुतो ते में खेस 45 बिला मिलिया 4 सोने जा 20 चांदी जा 21 कांसे जा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु परोसी रहियो आहे. वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 लॻे. तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाईंदड़.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयास

0: प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमरीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना डीडीपीए की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। UN Women Summit inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister will also engage bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. The Supreme Court has directed the Centre and the CBSC to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohanna asked the Centre and the CBSC to grant the same relaxation granted to students of Class 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. The Solicitor General told the bench that the latest data showed that implementation-related difficulties affected only about 1.2% of CBSE-affiliated schools. According to the Centre, nearly 99% of schools had adopted the third language policy and had the necessary facilities. Indian Navy will host the second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from the Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff will also engage with naval commanders to foster tri-services synergy and integration. The FASTag annual pass has crossed the significant milestone of 1 crore passes issued after its launch on 15th of August last year. Minister of Road Transport and Highways said that the milestone reflects growing acceptance of the annual pass among private vehicle owners for providing a seamless and economical travel option on the national highways and expressways. India has dispatched about 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. In a social media post, External Affairs Minister S. Jaishankar announced the dispatch and expressed India's commitment to supporting its neighbouring country. Dr. Jaishankar said India remains committed to supporting Sri Lanka's public health system. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of northeast India, Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to IMD, thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over Madhya Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Konkan, Goa and Odisha today. Meanwhile, IMD has said that the line of withdrawal of southwest monsoon continues to pass through Gurdaspur, Chandigarh, Muzaffarnagar, Alipur, Dholpur, Udaipur, Desa and Nalia. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. In shooting, Isha Singh won silver in the women's 25-meter pistol individual event. Currently, India are 12th in the Asian Games medal standings with a total of 45 medals. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नीलम पांडे के गाए हुए भजन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। देखो इस समय घड़ी में बजे हैं ठीक 7:30:44। तो कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे और कुछ लोग रास्ते में होंगे, कुछ ऑफिस से घर आ रहे होंगे और कुछ सुबह की चाय की चुस्की ले रहे होंगे। तो फिर कार्यक्रम सुनते रहिए और हम आपको सुनवाएंगे अच्छे अच्छे गाने और साथ में बताएंगे आपको कुछ जिंदगी जीने के तरीके। तो उससे पहले ये प्यारा सा गीत।

खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म चाहत से, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं, नहीं सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं कि क्या आप सब या हम सब जिंदगी जी रहे हैं, पर क्या हम जीना सीख पाए हैं? हम कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, हम EMI भी भरते हैं, हम इंस्टाग्राम भी दिन भर स्क्रॉल करते हैं, पर क्या सच में इसको हम अपनी जिंदगी जीना कहते हैं? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, और हम अपनी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम करके ही जिंदगी को जिया जा सके। कुछ छोटे छोटे से काम भी होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे करके अपने दिन को शुरुआत कर सकते हैं। तो और भी जाने की बातें, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत।

देखो दोस्तों, अपने 15 साल के आगे की जर्नी में मैंने एक बात सीखी है। जिंदगी में अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी किताब से सीखे। कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिसमें हम अपने दिन को बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह होती है कि अपनी जिंदगी में किसी और से तुलना करना अपनी बंद करें। आपके पास जो है उसमें खुश रहें और उसका ही ऊपर वाले का शुक्रिया करें, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले को देखते हैं, उसके पास ये चीज अच्छी है मेरे पास नहीं है, उसकी सैलरी अच्छी है मेरी कम क्यों है। तो जो ये सब चीजें होती है ना छोटी छोटी, इन सब बातों को जब ज्यादा आप सोचने लगते हैं ना, तो फिर वो हमारी खुशियों को छोड़कर वो हमारी तकलीफ का कारण बन जाती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि सामने वाले के पास कैसा है या हमारे पास कैसा है। हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो एक चीज ये देखिए कि ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, हमारी चाय गर्म है इस बात के लिए भी खुश होइए, हमारी सांसें चल रही हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब तो धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कल की फिक्र करना और आज का जिक्र करना। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम कल की फिक्र को देखते हुए हम आज को खो देते हैं। हमारी जो आज की खुशियां होती हैं उसको हम नहीं देखते, पर आने वाले कल के लिए हम सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी बहुत खराब से होने लगती है। इसलिए जो है आपके पास सामने, जैसी आपकी जिंदगी चल रही है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि अपने लिए जीना सीखो पर दूसरों के साथ लेकर चलो। जी हाँ, आप अपने लिए तो जियो पर दूसरों को भी आप साथ लेकर चलो। दिन में एक बार किसी एक अनजान या जिसको आपकी जरूरत हो उसकी हेल्प करो, आपको अपनी जिंदगी खुद खूबसूरत लगने लगेगी।

देखो दोस्तों, जाते जाते बस मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसमें ट्रैफिक भी होता है, उसमें दिल भी टूटता है, लोग छोड़कर भी जाते हैं, पर इसी टूटी फूटी इनपरफेक्ट जिंदगी में ही अपनी असली सुंदरता है। तो आज से एक खुद से वादा कीजिए कि रोज हंसना है, खुल के थोड़ा रो भी लेना है अगर आपका मन करे तो, और रोज किसी एक पल को बिना फोटो खींचे सिर्फ आंखों से जी लेना है। तो मैं हूं आपकी आरजे निधि और आपसे बहुत जल्द मिलूंगी आपके इसी कार्यक्रम में। तो अपने इस कार्यक्रम गीत भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अपने दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। छोड़ जाते हैं आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय

2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। यह विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों

0: से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। वहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा माँ पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
1: पहले बारिश के पानी से जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
4: हमारे चंडा हल्दा इस जंगल में हम लोग आम भी लगाए हैं और केले भी है, फल उलदा रहा है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महवेश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस में सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।

0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता। रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है ट्रैफिक चालान न भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिन्दुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुषों की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू कंसिडर एग्जाम्पटिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसईज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी दिस ईयर। इंडियन नेवी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुडे टिल थर्सडे। डेली गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टफर एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग विंटर सीजन। US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
3: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities, and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre however maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की तीन जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारती बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसमी सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE को हिदायत दी है कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को तीन जबानों के निजाम से वही रियायत देने पर गौर करें जो पहले ही सातवीं जमात के तलबा को दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची और वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज और CBSE की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इस साल छठी जमात के तलबा को भी वही रियायत दी जाए जो सातवीं आठवीं और नवीं जमात के तलबा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितम्बर को CBSE से कहा था कि वो छठी जमात के तलबा के लिए तीन जबानें जिसमें दो भारतीय मुकामी जबानें शामिल हैं पढ़ने की अपनी पॉलिसी 2027 से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल से नाफिज करने पर गौर करे। CBSE के बयान के मुताबिक इस वक्त सातवीं आठवीं और नवीं जमात में पढ़ने वाले तलबा को जब वो दसवीं जमात में पहुंचेंगे तो तीसरी जबान का बोर्ड इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत आलिया को बताया कि तकरीबन 99% स्कूलों ने तीसरी जबान की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और उन्हें इसके लिए

0: ऑपरेटरिया कमांडरों समेत सीनियर बहरी क्यादत को यकजा होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फौजी स्ट्रेटजिक सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों का जामे जायजा लिया जाएगा और इदारा जाति मैकेनिज्म के जरिए सीनियर हुकूमती अमले के साथ तबादले ख्याल किया जाएगा। यह कॉन्फ्रेंस मगरबी एशिया में जारी तनाजात के दौरान तवानाई के तहफ्फुज समेत भारत के बहरी मफादात की हिफाजत में भारतीय बहरिया के रोल को भी नुमाया करेगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी बहरी नजरियात और भारतीय बहरिया से तवक्कुआत के मौजू पर अपने ख्याल पेश करेंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर जनाब भूपेंद्र यादव ने कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। कल मुनद हुई इस मीटिंग में पहले से किए गए इकदाम, जमीनी सतह पर हासिल की गई पेशरफ्त और मौसम सरमा से कबल और इसके दौरान किए जाने वाले इजाफी इकदाम का जायजा लिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एक्शन प्लान के तहत बेदारी और कानून के निफाज के जरिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट शनाख्त से लैस तमाम पेट्रोल पंपों पर पीएमसीसी नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जाएगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली इन्हदामी सरगर्मियों और खुले मकामात पर शहरी तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सफर आखिर तक रबते को मजबूत बनाने के लिए एक आवामी मुहिम के जरिए दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को फरोग दिया जाएगा। हुकूमत शनाख्त किए गए बंजर इलाकों में शजरकारी और हरियाली बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। मौसम सरमा से मुतालिक प्रोटोकॉल में आलूगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, पार्किंग फीस में इजाफा, दफातर के औकात में मरहलावार तब्दीली और घर से काम करने के इंतजाम शामिल होंगे। ईवी पॉलिसी 2026 और परिवर्तन स्कीम को भी रजिस्ट्रेशन मुहिम और जन भागीदारी कैंपों के जरिए फरोग दिया जाएगा। मीटिंग के दौरान माहौलियात के मरकजी वजीर ने दिल्ली के 37 शनाख्त शुदा हॉटस्पॉट पर आइंदा महीने की 10 तारीख तक जन भागीदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया। दिल्ली के वजीर आला ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि लिए गए फैसले और निशानजद किए गए इकदाम जमीनी सतह पर मौसर अमल आवरी में तब्दील हों। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि मिशन लाइफ के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरवेकार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड की रियासत जो मुल्क के तकरीबन 40% मादनी वसायल का मरकज है, सनअती तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के चैलेंज का सामना कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से शुरू किया गया मिशन लाइफ अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। झारखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां नौजवानों में माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए तमाम कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट सतह पर 10 हफ्तों और 2 क्रेडिट पर मुश्तमिल लाजमी कोर्स मुतारफ कराया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तहरीक के पीछे कारफरमा नजरिए की वजाहत कर रहे हैं।
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: वज़ीर आज़म का ये नजरिया कोडरमा जिले की जरगा पंचायत में भी अगले इकदाम की सूरत में नजर आ रहा है। खयाटन गांव में कम्युनिटी की शिरकत से बंजर जमीन को सरसब्ज इलाके में तब्दील कर दिया गया है। पानी की बचत की कारकुन पार्वती देवी की क़यादत में गांव वालों ने पानी की बचत और पानी को जखीरा करने के लिए हजारों खाईनुमा बंद तामीर किए। इन कोशिशों के एतराज में सदर जमहूरिया ने उन्हें एजाज से भी नवाजा। इस इकदाम से कोडरमा में जेर जमीन पानी की सतह बेहतर बनाने में मदद मिली है। साहिबगंज के कबायली इलाकों में इस साल 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं जिससे पानी जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ में मदद मिल रही है। इस मुहिम से मकामी कबायली बिरादरियों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं और पत्तों और बांस के जरिए इजाफी आमदनी भी हासिल हो रही है। स्कूलों में कायम इको क्लब बच्चों को कमी से ही पानी और तवानाई की बचत की तरकीब दे रहे हैं। रांची से महविश रहवान।

0: साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्बार।
1: खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से होने वाली शदीद बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाईस कई जिलों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में कुआनो और कुशीनगर में गंडक दरिया भी खतरे की सतह से ऊपर बह रहे हैं। कुशीनगर जिले में नारायणी दरिया के किनारे बना हुआ एक पुश्ता तंकुही राज तहसील के इलाके से गुजरता है, कल रात पानी के शदीद बहाव के बायस टूट गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव कार्रवाइयां अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज भी रियासत के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम मुतासर अजला की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: उत्तराखंड में मौसमी हालात में बेहतरी के बाद चारधाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिले मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर चारधाम यात्रा 26 सितंबर के दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चिरबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रैकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। चिरबासा के करीब शदीद बारिश के बाद मलबे और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से गोरी कुंड के ऊपर बने तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते को नुकसान पहुंचा था। ओडिशा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। हीराकुंड डैम के 28 दरवाजे खुले हैं जिनसे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कटक के नजदीक मुंडली में छोड़े जा रहे पानी की मकदार बढ़कर तकरीबन 8 लाख क्यूसिक हो गई है, जिस पर करीबी नजर रखी जा रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर, लामहदूद कंटेंट के दौर में अखबार की तश्कील। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के इफ्तिताही इजलास के दौरान फिक्की के साबिक सदर और जियो स्टार के नायब चेयरमैन उदय शंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान भारत की स्क्रीन मईशत, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स वीविंग, मसनूई जहानत और कॉपीराइट के अलावा दीगर मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: अमरीका, भारत और दीगर 19 मुल्कों ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी रजिस्टर में इन ममालिक की फहरिस्त शाये की है, क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स दरामदात और उससे मुतालिक अज्जा पर 29 सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। सिफर महसूल वाली मसनूआत में गैर मामूली बीमारियों के इलाज की सभी दवाएं, बांझपन के इलाज, खुलियात की थेरेपी, जेन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के अज्जा पर भी कोई महसूल आयद नहीं होगा। भारत के अलावा सिफर महसूल के जुमरे में यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, बरतानिया और वियतनाम शामिल हैं। ये इस्तेमाल ट्रंप के अप्रैल ऐलान पर अमलावरी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तजारती तोसी के कानून की दफा 232 के तहत फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अज्जा की दरामदात को तरतीब देने की बात कही थी। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईसी नागोया में खराब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मनसूख कर दिया गया। इसके साथ ही जापान के आईसी नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत का तमगे जीतने का शानदार सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और निशानेबाजों ने मुल्क के तमगों की तादाद में कई तमगों का इजाफा किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों के लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भव्य शाराश्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे भव्य सारस्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका।

नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज पर्यावरण केवल पेड़ पौधों या जंगलों का विषय नहीं है। वायु प्रदूषण, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता का नुकसान सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में केवल सरकार या पर्यावरण संगठनों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है, आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। ऐसे समय में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को जागरूक करने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया समाज का आईना होने के साथ साथ बदलाव का प्रभावशाली माध्यम भी है। मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मीडिया लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। जब मीडिया लोगों को पानी बचाने, पेड़ लगाने, बिजली की बचत करने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और कचरे का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो केवल जानकारी नहीं देता बल्कि व्यवहार में बदलाव की नींव भी रखता है। हालांकि केवल संदेश देना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी जागरूकता अभियान की सफलता तब होती है जब संदेश वास्तविक कार्य में बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि मीडिया केवल ये बताए कि पानी बचाइए तो ये एक सामान्य संदेश हो सकता है, लेकिन यदि वो लोगों को वर्षा जल संचयन, पानी के रिसाव को रोकने और दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी कम करने के आसान तरीके भी बताए तो लोगों के लिए उस संदेश को अपने जीवन में लागू करना आसान हो जाता है। मीडिया की एक और महत्वपूर्ण शक्ति कहानियां और वास्तविक उदाहरण है। जब किसी किसान, विद्यार्थी, संस्था या समुदाय की पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सफलता की कहानी सामने आती है तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसी कहानियां ये विश्वास पैदा करती हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार मीडिया समस्या बताने के साथ साथ समाधान का रास्ता भी दिखा सकता है। रेडियो इस क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा सकता है। रेडियो की पहुँच व्यापक है और इसे लोग अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ सुन भी सकते हैं। रेडियो कार्यक्रमों में विशेषज्ञों की बातचीत, स्थानीय लोगों की कहानियाँ, प्रश्नोत्तरी और श्रोताओं की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण केवल एक गंभीर विषय न रहकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बन सकता है। आज सोशल मीडिया ने पर्यावरण जागरूकता को एक नया मंच दिया है। एक छोटा वीडियो, पोस्ट या कुछ अभियान कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन सोशल मीडिया की वास्तविक सफलता केवल किसी संदेश के वायरल होने में नहीं, बल्कि लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में है। किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने के साथ साथ यदि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तभी डिजिटल जागरूकता वास्तविक परिवर्तन में बदल सकती है। युवाओं की भागीदारी भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण है। युवा सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पर्यावरण से जुड़े संदेशों को रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक कम करने और ऊर्जा बचाने जैसी छोटी छोटी पहलें भी समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी केवल पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना नहीं, बल्कि सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना भी है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों और व्यावहारिक समाधानों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को केवल किसी विशेष दिवस तक सीमित न रखकर नियमित रूप से चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को मीडिया ने बड़े स्तर पर जनता तक पहुँचाया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के विषय को देखें। यूरोप और अमेरिका में समाचार चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया ने हीट वेव, जंगलों की आग, बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी घटनाओं को लगातार रिपोर्ट किया। इससे आम लोगों के सामने ये सवाल आया कि इन घटनाओं का संबंध बदलती जलवायु से किस प्रकार है। इसी तरह कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की पर्यावरण संबंधी डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्टों ने जंगलों, समुद्री जीवन, वन्य जीवों और जलवायु परिवर्तन के विषयों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए वन्य जीवों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में जब दर्शक किसी विलुप्ति के खतरे में पड़े जानवर या नष्ट होते जंगलों को देखते हैं, तो पर्यावरण का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वो एक भावनात्मक और वास्तविक अनुभव बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और बढ़ाया है। किसी जंगल की आग, समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण या किसी घायल वन्य जीव का वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे लोगों में चर्चा, जागरूकता और कई बार जन अभियान भी शुरू होते हैं। विदेशों में पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों को भी मीडिया ने व्यापक मंच दिया है। उदाहरण के लिए ग्रेटा थनबर्ग और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन को लिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर शुरू हुआ ये आंदोलन सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा। यहां मीडिया ने केवल घटना की रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि युवाओं की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी प्रदान किया। हालांकि मीडिया का काम केवल किसी आंदोलन का प्रचार करना नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों, अलग अलग दृष्टिकोणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर लोगों को जानकारी दे। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ भी मीडिया ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। सरकार द्वारा स्वच्छता, खुले में शौच की समस्या और कचरा प्रबंधन को लेकर अभियान चलाए गए। टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इन अभियानों के संदेशों को गांवों और शहरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा मन की बात जैसे रेडियो कार्यक्रमों में भी स्वच्छता, जल संरक्षण, स्थानीय पर्यावरण और जन भागीदारी से जुड़े उदाहरणों को सामने लाया गया। इससे ये संदेश पहुंचा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिक भी इसमें योगदान दे सकते हैं। एक अन्य उदाहरण नमामि गंगे कार्यक्रम का है। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। मीडिया ने नदी में प्रदूषण, सीवेज, औद्योगिक कचरे और गंगा की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा। इससे आम लोगों में ये समझ विकसित करने में मदद मिली कि नदी केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारे जल संसाधन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह अनेक सरकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर उतारने में मदद मिली है। भारत में अनेक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए WWF इंडिया वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्य करता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे संगठनों के अभियान और जागरूकता कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट

0: CSE पर्यावरण, प्रदूषण, जल और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जब इन रिपोर्टों को समाचार माध्यमों में जगह मिलती है तो पर्यावरण से जुड़े विषय केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहते बल्कि आम नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज के समय में पर्यावरण जागरूकता का सबसे तेज माध्यम सोशल मीडिया भी बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग प्लास्टिक कम करने, पेड़ लगाने, पानी बचाने और कचरे को अलग अलग करने जैसे अभियानों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में लोग मिलकर किसी झील, बावड़ी, कुएं आदि जल स्रोतों की सफाई करते हैं और उसकी तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में ऐसा अभियान शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, नदी में प्रदूषण या अवैध कचरा फेंकने ऐसी समस्या का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन का ध्यान भी उस समस्या की ओर आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया एक तरफ जागरूकता का माध्यम है तो दूसरी तरफ नागरिकों को अपनी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं की आवाज उठाने का मंच भी देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, मीडिया का प्रभाव जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। पर्यावरण से जुड़ी खबरों में केवल सनसनी फैलाना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है तो मीडिया को केवल ये बताने के बजाय कि प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं, वैज्ञानिक आंकड़े क्या कहते हैं और नागरिक तथा प्रशासन क्या कदम उठा सकते हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल विषयों पर वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार, वैज्ञानिकों या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझाने में मीडिया एक सेतु का काम कर सकता है। सरकार और जनता के बीच, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के बीच तथा पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधानों के बीच एक अच्छी पर्यावरणीय खबर केवल हमें समस्या के बारे में नहीं बताती बल्कि हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम उस समस्या के समाधान में क्या योगदान दे सकते हैं। आज आवश्यकता ऐसे मीडिया की है जो पर्यावरणीय समस्याओं को सही तथ्यों के साथ सामने लाए, सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाए, वैज्ञानिक जानकारी को सरल भाषा में समझाए और नागरिकों को जिम्मेदार भागीदारी के लिए जागरूक करे। क्योंकि जब सही जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो जागरूकता पैदा होती है और जब जागरूकता के साथ जन भागीदारी जुड़ती है तभी पर्यावरण संरक्षण एक वास्तविक जन अभियान बन सकता है। अंततः ग्रीन संदेश तभी सार्थक है जब वो ग्रीन कार्य में बदल जाए। मीडिया के पास लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है। यदि इस शक्ति का उपयोग सही जानकारी, प्रेरक कहानियों और व्यवहारिक समाधानों के साथ किया जाए तो मीडिया पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है। हमें केवल ये कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि धरती बचाइए, हमें ये भी समझाना होगा कि धरती को बचाने के लिए हम आज क्या क्या कर सकते हैं। एक छोटा पौधा लगाना, पानी बचाना, बिजली की अनावश्यक खपत रोकना या प्लास्टिक का उपयोग कम करना, हर कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलाव केवल संदेश से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब संदेश हमारी आदत और हमारी कार्रवाई बन जाता है। आलेख था विज्ञान लेखक डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता का।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनके दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने

0: कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: हमें अपने भजन सुना, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो बरस 1836 में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना आज ही की तारीख को हुई थी। 1959 में भारतीय तैराक आरती साह ने 16 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया और ऐसा

होने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी। इसके तीन वर्ष बाद यानी कि 1962 में आज ही की तारीख को कोलकाता के एमपी बिरला तारामंडल ने जो है परिचालन में काम करना शुरू किया था। और अब समय है श्रोता उन महान विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में बात मातंगिनी हजारा की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से एक थी। वर्ष 1942 में आज ही की तारीख को एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। मातंगिनी इसमें सबसे आगे रहना चाहती थी, किंतु पुरुषों के रहते एक महिला को संकट में डालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ उस काल में। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, ब्रितानी सेना ने बंदूकें तान ली और प्रदर्शनकारियों को रुक जाने का आदेश दिया। ठीक इसी समय जुलूस के बीच से निकलकर मातंगिनी हजारा सबसे आगे आ गई। मातंगिनी ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया, अंग्रेजी सेना ने चेतावनी दी और फिर गोली चला दी। पहली गोली मातंगिनी के पैर में लगी। जब वो फिर भी आगे बढ़ती रही एक हौसले के साथ तो उनके हाथ को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा फिर भी नहीं छोड़ा। इस पर तीसरी गोली उनके सीने पर मारी गई और इस तरह एक वीरांगना ने मां भारती के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो नमन है ऐसी वीर सपूत को। आज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी की भी जयंती है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी रहे, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज से अपना करियर शुरू किया और फिल्मिस्तान फिल्मालय स्टूडियो की स्थापना भी की। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल दे के देखो, लव इन शिमला और जागृति जैसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। शशिधर मुखर्जी हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मुखर्जी परिवार का हिस्सा थे, जिनमें उनके बेटे जॉय मुखर्जी और पोती रानी मुखर्जी शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया ये नगमा।

0: श्रोताओं, आज जयंती है बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद की। महमूद का जन्म 1932 को हुआ। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सराबोर उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। तो आइए सुनते हैं उनका ये संवाद।
1: एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियाँ घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। और एक साया, लंबा साया चला रहा है। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा जलाएगी चमकी बिजली, छत पे बिजली चमकी और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे पक पक जमीन पे गिरने लगी। और जो ही दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद बहुत
2: Wow, that's amazing display of his talent. Mahmood's early life was all about making Bollywood actors of that era and building an incredibly powerful connection with Indian cinema.
0: और श्रोताओं, ये एक गाना भी जो है आपके सामने जो पेश होने वाला है, ये महमूद पर ही फिल्माया गया है।

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आपने सुना आज सवेरे, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल सीबीएसई की तीन जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसमी सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से बरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई को हिदायत दी है कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को तीन जबानों के निजाम से वही रियायत देने पर गौर करें जो पहले ही सातवीं जमात के तलबा को दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची और वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज और सीबीएसई की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इस साल छठी जमात के तलबा को भी वही रियायत दी जाए जो सातवीं, आठवीं और नौवीं जमात के तलबा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को सीबीएसई से कहा था कि वो छठी जमात के तलबा के लिए तीन जबानें, जिसमें दो भारतीय मुकामी जबानें शामिल हैं, पढ़ने की अपनी पॉलिसी 2027 से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल से नाफिज करने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से जुमेरात तक नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे एडिशन की मेजबानी करेगी। तीन रोजा ये कॉन्फ्रेंस मरकजी मुकाम से बाहर तैनात ऑपरेशनल और एरिया कमांडरों समेत सीनियर बहरी क्यादत को यकजा होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फौजी स्ट्रेटजिक सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों का जाम जायजा लिया जाएगा और इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए सीनियर हुकूमती अमले के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मगरबी एशिया में जारी तनाजात के दौरान तवानाई के तहफ्फुज़ समेत भारत के बहरी मफादात की हिफाजत में भारतीय बहरिया के रोल को भी नुमाया करेगी। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर जनाब भूपेंद्र यादव ने कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मुनद हुई इस मीटिंग में पहले से किए गए इकदाम, जमीनी सतह पर हासिल की गई पेशरफ्त और मौसम सरमा से कबल और इसके दौरान किए जाने वाले इजाफी इकदाम का जायजा लिया गया।

एक्शन प्लान के तहत बेदारी और कानून के नफाज के जरिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट शनाख्त से लैस तमाम पेट्रोल पंपों पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अथक अज़्म का सिलसिला जारी है। झारखंड की रियासत जो मुल्क के तकरीबन 40% मादनी वसाइल का मरकज है, सनअती तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के चैलेंज का सामना कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू किया गया मिशन लाइफ अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी शक्ल इख्तियार कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से होने वाली शदीद बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाइस कई जिलों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बाराबंकी अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा में कुआनो और कुशीनगर में गंडक दरिया भी खतरे की सतह से ऊपर बह रहे हैं। कुशीनगर जिले में नारायणी दरिया के किनारे बना हुआ एक पुश्ता खुज राय तहसील के इलाके से गुजरता है, कल रात पानी के शदीद बहाव के बायस टूट गया। NDRF और SDRF की टीमों को मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव की कार्रवाइयां अंजाम देने की हिदायत दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में मौसमी हालात में बेहतरी के बाद चारधाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिला मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर चारधाम यात्रा 26 सितंबर की दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चौबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रैकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। ओडिशा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर लामहदूद कंटेंट के दौर में अखबार की तश्कील। सियाहत और सलाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में पहाड़ कौमी सिटी पॉलिसी और हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पहाड़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 कलीदी सूत्रों पर गौर खोज किया गया जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्द अमल, दाखिली सलाहियतों में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैन अलाक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल रहे। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से अगले महीने की 5 तारीख तक अमरीका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कल से शुरू होने वाली 2 रोजा G20 वज़राए तजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग के मौके पर जनाब गोयल अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। महाराष्ट्र तो टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने माली बरस 2026-27 के लिए उन टैक्स दहिंदगान के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है जिनके लिए इनकम टैक्स ऑडिट की दफात लागू होती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने शुमाल मशरकी रेलवे के वाराणसी डिवीजन में 614 किलोमीटर से ज्यादा पर कवच 4.0 नस्ब करने के लिए 2023 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी डिवीजन के बाकी हिस्सों में भी कवच 4.0 की कवरेज बढ़ाई जाएगी जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए मौजूद हिफाजती निजाम मजीद मजबूत होगा। अमरीका भारत और दीगर 19 ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी

0: ये ममालिक की फहरिस्त शाये की है क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल दरामदात और उससे मुतालिक अजजा पर 29 सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईची नागोया में खराब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मनसूख कर दिया गया। खास खास खबरें एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल सीबीएसई की 3 जबानों की पॉलिसी से 6ठी जमात तक के तलबा को मुस्तसना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अखबार जरिए का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: इरशाद इलाही है, झूठी बात से करारा कश रहो। मुतअद्दिद अहादीस पाक में भी झूठ से परहेज करने की तलकीन की गई है। मसलन, हमेशा सच बोलो और झूठ मत बोलो। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही क्यों न हो। झूठ बोलने से बचो कि झूठ और फजूर साथ साथ हैं और ये दोनों दोजख में हैं। आदमी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि जो बात सुने बयान कर दे। झूठ निफाक के दरवाजों में से एक है। एक सहाबी ने फरमाया, जब से मुझे पायजामा बांधने की तमीज हुई मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाह वजू का कौल है कि अल्लाह के नजदीक बड़े खता झूठी जुबान है और सबसे बड़ी नदामत के दिन पशिमानी है। हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, तमाम बुराइयां एक कमरे में बंद हैं और उस ताला बंद कमरे की कुंजी झूठ है। झूठ की यह भी एक सजा है कि झूठे आदमी पर यकीन नहीं किया जाता अगरचे वो सच भी बोले। वॉशिंगटन लिस्टान का कहना है, सबसे बदतरीन झूठ वो है जिसमें निस्फ हद तक सच्चाई की बू आती हो। सबसे बड़ा झूठ खुश्क जमीन पर तड़पती मछली की तरह है। यह झूठ तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचा सकता, इंतजार कीजिए, यह खुद ब खुद दम तोड़ देगा। फारसी में मुहावरा है कि दुरो गोरा हाफजा बना शुद्ध। झूठे आदमी का हाफजा कमजोर होता है। कभी ऐसा भी होता है कि झूठ को सच बनाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है। एडिसन का कौल है कि झूठ और फरेब हर मिट्टी से उगते हैं, ये मौसम हर मौसम की पैदावार है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि गुस्सा अकल को खा जाता है और झूठ रिस्क को। नहायत संदिलाना झूठ खामोशी की जुबान से अदा होते हैं। किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा है, झूठ बोलने का असर गहरे जख्म का सा है जिसके भर जाने के बाद भी निशान बाकी रहता है। सच्चाई कामयाबी और झूठ रुसवाई का बाइस है। झूठ बोलना और झूठी कसम ऐब फहश और गुनाह अजीम है। हदीस नबवी है कि 3 ऐसे शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला कयामत में बात न करेगा और न उन पर नजर शफकत होगी। एक वो जो किसी को कुछ देकर एहसान जतलाए, दूसरा वो जो झूठी कसम खाकर अपना माल बेचे, तीसरा वो जो पायजामा टखनों से नीचे रखे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے.
1: آپ سن رہے تھے اپال زرین کپڑوں کے ایمشم میں فروزہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے جتندر سنگھ سے شیخ محمد ابراہیم ذوق اور جانسار اختر کا کلام, اور جیشری گپتا سے ولی آسی اور مخمور دہلوی کا کلام.

0: जयश्री गुप्ता के गए हुए इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब वो पेश खिदमत है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम में सिक्किम के एक युवा साइबर शोधकर्ता और एक बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ से, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी नामित किया है और विभिन्न बड़ी संस्थाओं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और तमाम ऐसी तकनीकी दुनिया की संस्थाओं ने उनके काम को उन्होंने पहचान दी है। करीब दुनिया की 328 संस्थाओं ने उनकी उपलब्धि को पहचाना है। विवेक राज तमांग का काम साइबर सुरक्षा को लेकर है। साइबर सुरक्षा की खामियों को लेकर उन्होंने कई शोध किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी उपलब्धि और सफलता की कहानी।
3: सिक्किम के रहने वाले विवेक राज तमांग को दुनिया भर की 328 संस्था से मान्यता और सराहना मिली है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार इस उपलब्धि की पुष्टि 25 जुलाई 2026 को हुई। विवेक ने अलग अलग संस्थाओं की वेबसाइट और डिजिटल सिस्टम में मौजूद सुरक्षा खामियों की पहचान की और उनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं को दी ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसे सुरक्षा खामियों की जिम्मेदारी से जानकारी देना कहा जाता है। विवेक को उनके काम के लिए बग बाउंटी प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और सम्मान सूची में जगह सहित कई तरह की मान्यताएं मिली हैं। उनकी 328 मान्यताओं में नासा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पांस सेंटर और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।
4: My inspiration to pursue cyber security and ethical hacking came from a very curious mind. I've always enjoyed challenges, the thrill of solving a difficult puzzle or completing a challenging level in a video game to finding Easter eggs. Since childhood, I have been fascinated by computers and electronic devices. I will often try to understand how things worked, sometimes even taking things apart just to see the mechanism behind them. Eventually, I realized that I had developed a genuine love for computer science and technology. Over the years, I explored and learned about different areas of computer science, but when I discovered cybersecurity and ethical hacking, I finally found something that I could truly see myself enjoying every single day. My journey was also not entirely traditional. Of course, I have my degree, certification and courses. But courses can give you a strong foundation. But I believe ethical hacking is something you really learn by constantly exploring, practicing and challenging yourself. Cybersecurity is an enormous field and the learning never really stops. So for me, the answer was never just one degree or another course or another certification. It was about learning from anywhere and everywhere possible.

0: साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता और सॉफ्टवेयर विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। उनका सफर युवाओं को लगातार सीखने, शोध करने और अपने तकनीकी कौशल को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। विवेक को मिली यह पहचान उनके व्यक्तिगत सफर की उपलब्धि के साथ साथ सिक्किम के युवाओं के लिए उभरती तकनीकों में आगे बढ़ने की संभावनाओं को भी सामने लाती है। साइबर सुरक्षा जैसे तेजी से बदल रहे क्षेत्र में विवेक का सफर दिखाता है कि सही तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करके युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मायना चैटर्जी, दिल्ली राम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: त्रिपुरा की 5 दशक पुरानी गोमती जल विद्युत परियोजना त्रिपुरा की एक बड़ी आधारशिला रही है और इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने को लेकर अब विचार किया जा रहा है। 1970 में शुरू हुई इस परियोजना से त्रिपुरा के लिए स्वच्छ बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाता रहा है और दोबारा से अब उम्मीद है कि नए सिरे से जब गोमती जल विद्युत परियोजना शुरू होगी तो त्रिपुरा में स्वच्छ बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। तो आइए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में गोमती जल विद्युत परियोजना के पुनर्जीवन की कहानी को सुनते हैं।

0: इस परियोजना की कहानी 1965 में शुरू हुई थी। उस समय त्रिपुरा में बिजली से जुड़ी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। राज्य के जल संसाधनों का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करने के उद्देश्य से घूमती जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। 5 साल बाद 1970 में यह परियोजना शुरू हुई। इसमें बिजली बनाने वाली 3 इकाइयां थी। हर इकाई की क्षमता 5 मेगावाट थी और परियोजना की कुल क्षमता 15 मेगावाट थी। कई वर्षों तक इन इकाइयों के जरिए बिजली का उत्पादन होता रहा, लेकिन समय के साथ परियोजना की मशीनें पुरानी होती गई। साल 2010 में पहली इकाई ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद 2021 में दूसरी इकाई भी बंद हो गई। तीसरी और आखिरी इकाई भी अपनी पूरी 5 मेगावाट क्षमता से बिजली पैदा नहीं कर पा रही थी। इसकी क्षमता घटकर करीब 3 मेगावाट रह गई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में आई भीषण बाढ़ ने परियोजना को और बड़ा नुकसान पहुँचाया। तीसरी इकाई भी बंद हो गई और 5 दशक से ज्यादा समय से बिजली पैदा कर रही यह परियोजना पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन अब इस पुरानी परियोजना को फिर से शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पावर जनरेशन लिमिटेड यानी TPGL परियोजना के पुनरुद्धार पर काम कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार परियोजना को फिर से चालू कर करीब 10 मेगावाट स्वच्छ बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पानी के नीचे परियोजना की संरचना की स्थिति कैसी है। इसी उद्देश्य से पानी के अंदर रोबोट की मदद से जांच की गई। इसके लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV का इस्तेमाल किया गया। यह मशीन उन हिस्सों की जांच कर सकती है जहां इंसानों के लिए सीधे जाकर निरीक्षण करना मुश्किल या जोखिम भरा हो सकता है। जांच में बांध के गेट, पानी के नीचे मौजूद संरचनाओं और संभावित रिसाव जैसी चीजों की स्थिति को देखा गया।
1: Recently, we conducted inspection in Gunti HCV project as a requirement by the TPGA. During the inspection, we covered the gate area, intake gate area, and captive gate area. In the inspection, we captured detailed videos of these critical submerged structures using our ROVs. These data will definitely help them to understand the current conditions of the submerged structures.
0: इस जांच से मिलने वाली जानकारी परियोजना के पुनरुद्धार की आगे की योजना तैयार करने में मदद करेगी। अगर पानी के नीचे मौजूद संरचनाएं मरम्मत के बाद इस्तेमाल करने लायक पाई जाती हैं, तो आगे तकनीकी जांच, मरम्मत और मशीनों को दोबारा लगाने का काम किया जा सकता है। वहीं अगर संरचनाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो अधिकारियों को यह तय करना होगा कि परियोजना को दोबारा शुरू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना संभव है। फिलहाल अंतिम फैसला जांच और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना है, लेकिन यह निरीक्षण त्रिपुरा की इस पुरानी जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोमती परियोजना ने दशकों तक त्रिपुरा को जल संसाधनों से बिजली उपलब्ध कराई है। अगर इसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से दोबारा शुरू किया जा सका तो यह राज्य के बिजली नेटवर्क में फिर से योगदान दे

0: सकती है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी समाचार अगरतला।
1: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: वर्ष 2012 में शुरू हुआ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल संगीत के प्रति जुनून, स्थिरता, सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक गतिविधि का उत्सव है। यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदाय और कलाकारों को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय तथा वैश्विक स्वतंत्र संगीत जगत को भी मंच प्रदान करता है। पिछले वर्षो में हनुमान काइंड, कैलाश खेर, शिल्पा राव और फरहान अख्तर जैसे कलाकार जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में प्रस्तुति दे चुके हैं। इस वर्ष स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सूची में सुकेश शुक्लबाद्या भी शामिल है। संगीत प्रस्तुतियों के अलावा महोत्सव के दौरान लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन, कहानी कथन, आपातानी मिट्टी के बर्तन निर्माण, संगीत एवं लय, इम्प्रूव थिएटर, ओरिगामी और लेजो, कोरिया के पारंपरिक वाद्य संगीत विषयों पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। 26 सितंबर को जीरो फेस्टिवल में दामिंदा की प्रस्तुति होगी, जिसमें 800 से अधिक स्थानीय आपातानी महिलाएं हिस्सा लेंगी। दामिंदा मेजबान आपातानी जनजाति का पारंपरिक सामुदायिक फसल कटाई और स्वागत नृत्य है। यह कृतज्ञता कृषि विरासत और सामुदायिक एकजुटता को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश के सुरमई जीरो वैली की पृष्ठभूमि में आयोजित यह महोत्सव बांस जैसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करता है और आगंतुकों की मेजबानी के लिए स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शामिल करता है, जिससे स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से महोत्सव कलाकारों, कार्यकरों और स्थानीय युवा समूहों को भी जोड़ता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र का बल्कि पूरे भारत का, दुनिया भर में ये विरासत और संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसने वाली इन जनजातियों की अपनी खासियत है, अपना खान पान है, पहनावा है और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। लेकिन जो विशेष बात इस क्षेत्र को बनाती है कि इन विविध जनजातियों में एक सामंजस्य है और यही सामंजस्य जो भारत में विविधता में एकता का एक खूबसूरत मंत्र है, उस मंत्र को ये पूर्वोत्तर क्षेत्र परिभाषित करता है। और 8 राज्यों में बसने वाली इन विभिन्न जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजातियां क्या परंपराएं लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से खुद में इन परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं, जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नेशी, अपतानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिस्मी प्रमुख हैं। अपतानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियाँ अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं।

असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की है।

मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैटी, नागा और कुकी। मैटी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है।

मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, राल्ते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध है।

नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है।

0: पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा, उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, 2026 के एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर भारत की प्रतिभाओं ने फिर अपना परचम लहराया है। मणिपुर की रोशोविना देवी ने इस बार फिर से तीसरा अपना पदक एशियाई खेलों में जीता। वुशु खिलाड़ी रोशोविना देवी ने इस बार पदक जीतकर फिर से नया इतिहास लिखा है। तो आइए रोशोविना देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने खेल का सफर शुरू किया और कैसे वो एशियाई खेलों तक अपने प्रतिभा को ले गई और भारत का नाम रोशन किया।
2: रोशोविना देवी का जन्म 30 दिसंबर 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कौसिफाई मायाई लिकाई में हुआ। इनके माता पिता छोटे किसान हैं। बचपन में गांव में एक वुशु प्रतियोगिता देखने के बाद रोशोविना की इस खेल में रुचि पैदा हुई। पांचवी कक्षा में रहते हुए उन्होंने वुशु सीखने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी, माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन रोशोविना ने खुद अभ्यास जारी रखा। उनके पिता के अनुसार वो गांव के बच्चों के साथ चावल के भूसे से भरी बनियान को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके अभ्यास करती रही। बाद में उन्हें इम्फाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI सेंटर में प्रशिक्षण का मौका मिला। वहां उनके खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई और उन्होंने कोच मैबाम प्रेम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू किया। 2016 में बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में रोशोविना ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2017 में उन्होंने एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया और आगे चलकर 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी पहचान बनाई। 2018 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में पदार्पण किया और कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2019 में उन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2023 में हांगझोउ एशियाई खेलों में रोशोविना ने 60 किलोग्राम सांडा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। उसी साल उन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप में भी रजत और मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सफर में चोट ने भी चुनौती पेश की। 2024 में घुटने की चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रहना पड़ा। वापसी के बाद 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और शुरुआत में टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन बाद में चोट के कारण खाली हुई जगह पर रोशोविना को भारतीय टीम में शामिल किया गया। जापान जाने का ये मौका उन्हें एशियाई खेलों से कुछ ही दिन पहले मिला। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची। फाइनल में उनका सामना चीन की झांग शियो ओ से हुआ, जहां रोशोविना को 0-2 से हार मिली और उन्होंने रजत पदक जीता। इस रजत के साथ रोशोविना ने 2018 का कांस्य, 2023 का रजत और 2026 का रजत एशियाई खेलों में लगातार 3 पदक अपने नाम किए। वो एशियाई खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुशु खिलाड़ी बनी।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: पदक जीतने के बाद रोशिबीना ने अपने परिवार के त्याग को याद किया और कहा कि उनके माता पिता ने उनकी खेल यात्रा में बहुत सहयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में अशांति के बीच तैयारी करना उनके लिए मुश्किल रहा और अगर उन्हें ज्यादा समय मिलता तो वो बेहतर तैयारी कर सकती थी। मणिपुर के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ रोशिबीना का सफर अब भारतीय वुशु के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। उनका ये सफर मेहनत, संघर्ष, चोट से वापसी और मौके को सफलता में बदलने की कहानी है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी, आकाशवाणी समाचार।
1: अब खेल की ही बात हो रही है तो अपनी सहयोगी निशा की अगली रिपोर्ट में हम इस बार एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मीराबाई चानू की भी उपलब्धि को सुन लेते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया तो इस बार एशियाई खेलों में भी अपना पहला पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने किस तरह से इस बार फिर से भारोत्तोलन में एक नया कीर्तिमान रचा है और एशियाई खेलों के पदक की कमी को भी पूरा किया है, आइए हम इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
4: मणिपुर की नोंगपोक कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर एशियाई खेलों के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। लगातार मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारतीय भारोत्तोलन में अपनी अलग पहचान बनाई। मीराबाई ने 2014 के एशियाई खेलों से अपने एशियन गेम सफर की शुरुआत की थी जहाँ वह 9वें स्थान पर रही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में वह कोई वैध लिफ्ट दर्ज नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बावजूद एशियाई खेलों का पदक उनकी उपलब्धि की सूची से दूर था। 2018 के एशियाई खेलों में वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकी, जबकि 2023 के हांगझो एशियाई खेलों में क्लर्क एंजर्ब के दौरान लगी चोट के बाद वह चौथे स्थान पर रही थी। 2026 में मीराबाई ने इस इंतजार को खत्म किया। 23 सितंबर को महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंजर्ब में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 198 किलोग्राम रहा। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की री सॉन्ग गम ने 2015 किलोग्राम वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई ने रजत पदक हासिल किया।
5: That smile on her face knows that the trophy cabinet is complete for Mirabai Chanu. The one medal that was missing in her trophy cabinet was that medal at the Asian Games. She clinches that now, a silver medal.
4: मीराबाई का यह पदक इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का पिछला पदक 1988 में जीता था। 28 साल बाद मीराबाई ने भारत को इस स्पर्धा में फिर पदक दिलाया। मीराबाई पहले ही ओलंपिक, विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुकी थी। अब एशियाई खेलों का पदक भी उनकी उपलब्धियों से जुड़ गया है। पदक जीतने के बाद मीराबाई ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना उनका सपना था और इस उपलब्धि से उनका सपना पूरा हुआ। मीराबाई चानू की यह उपलब्धि उनके लंबे संघर्ष, चोटों से वापसी और लगातार मेहनत की कहानी भी है।
6: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
4: मणिपुर से निकलकर उन्होंने विश्व के बड़े खेल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब एशियाई खेलों में पहला पदक जीतकर अपने करियर की एक महत्वपूर्ण कमी भी पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
1: श्रोताओ, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
2: सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्म नामों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं मजाहिया अदाकार महमूद साहब को। हम आपको सुनाएंगे उन पर फिल्माए हुए कुछ नगमे।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: ताले ताले धुमी ताले ताले ताले धुमी ताले ताले आम के ताले धुमी ताले ताले के ने ताके धुमी ताके नाके नाके धुमी ताके नाके नाके धुमी ताके नाके नाके जाम तारी ता जग तारी ता धन जाने को तारी ता को तारी के ने ताके धुमी तारी ता जग तारी ता।
1: समीन महमूद सिर्फ एक कामयाब कॉमेडियन ही नहीं थे बल्कि वो अदाकार भी थे, गुलूकार भी थे, हिदायतकार भी थे और फिल्म साज भी थे। उनका ताल्लुक सिनेमा के उस दौर से था जब हिंदुस्तानी फिल्में सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं हुआ करती थी बल्कि हमारे कल्चर की भी कहीं न कहीं उनमें छाप हुआ करती थी, यानी अवामी सकाफत का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। तो ऐसे में महमूद ने अपने करियर की शुरुआत की, कॉमेडी को एक नई शनाख्त दी और कई दहाइयों तक हमें और आपको महसूस किया। महमूद साहब की पैदाइश आज ही के दिन हुई थी सन 1932 को मुंबई में और उनके वालिद थे मुमताज अली, अपने जमाने के मारूफ स्टेज और फिल्मी फनकार। इसी तरह देखा जाए तो महमूद को बचपन से ही फनून लतीफा और फिल्मी माहौल मिला, लेकिन फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद महमूद का सफर आसान नहीं था साहब। उन्होंने इब्तदा में फिल्मी दुनिया में छोटे मोटे काम किए। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मी स्टूडियोज में मुख्तलिफ नौयत के काम भी किए और यूं कैमरे के पीछे से दुनिया को करीब से समझा और यही तजुर्बात जिंदगी के जो थे उनकी शख्सियत और फन में आगे चलकर बहुत काम आए थे। बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में महमूद साहब ने काम करना शुरू कर दिया था और इब्तदा में छोटे किरदारों में नजर आए, लेकिन उनकी अदाकारी में जो मिजाज था, चेहरे के जो उनके तासुरात हुआ करते थे और डायलॉग्स डिलीवरी का जो उनका अंदाज था, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा।

0: महमूद चले गए, लेकिन उनकी हंसी आज भी जिंदा है। उनके किरदार आज भी पुरानी फिल्मों के पर्दे पर नजर आ जाते हैं। कभी कोई मुकालमा सुनकर हंसी आ जाती है, कभी उनका कोई अंदाज याद आ जाता है, कभी पड़ोसन या गुमनाम फिल्म का कोई मंजर हमें उस दौर में गोया वापस ले जाता है जब सिनेमा में कॉमेडी के अपने अलग रंग हुआ करते थे। महमूद सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो हिंदुस्तानी सिनेमा की उस रवायत का हिस्सा थे जिसने लोगों को मुश्किल वक्त में भी हंसने की वजह दी। और शायद यही एक फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो चला जाए मगर उसका फन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहे। तो ये थे महमूद अली, हिंदुस्तानी सिनेमा के बेमिसाल कॉमेडियन, अदाकार और एक यादगार फनकार।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

दाग लेना चाहते हो?

समय ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेरी पसंद, जिसमें हमने चंद बातें की मारूफ कॉमेडियन महमूद अली के हवाले से और आपको सुनवाए उन पर फिल्माए हुए कुछ खूबसूरत फिल्मी नगमे। अब आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। मीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। ये अब सुनिए एक ड्रामा जिसका उन्वान है तमाशा। तहरीर डॉक्टर गजनफर अली की है और पेशकश है सरफराज अहमद की।

0: अरे भाई, क्या क्या खेल शुरू हो गया?
1: अरे नहीं भाई, अभी नहीं हुआ।
0: थैंक गॉड।
2: यार जरा मुझे भी तो देख ले दो।
3: अभी क्या है जो इतने उतावले हो रहे हो यार? तुम आ रहे तुम्हारे वाली तो है,
4: अब तो साहेबान कदरदान मेहरबान, आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मगर आज हम आपको आंखों से दिखाएगा कि वो लड़ाई कैसे होती है, नेवला किस तरह सांप के टुकड़े टुकड़े करता है और टुकड़ों को किस तरह से फिर जोड़ता है, और टुकड़ों में बटा हुआ सांप जुड़कर फिर किस तरह लहराने लगता है। साहेबान वो अनोखी लड़ाई हम आपको दिखाएगा और जरूर दिखाएगा। मगर लड़ाई दिखाने से पहले हम आपसे कुछ मांगना चाहता है। घबराइए नहीं, हम आपसे कोई सोना चांदी या कोई कीमती चीज नहीं मांगेगा कदरदान। हम आपसे आपका ध्यान चाहता है, आपकी तवज्जो मांगता है, क्योंकि इसके बिना ना खेल देखने में मजा आएगा ना दिखाने में। इसलिए हम अपने हिंदू भाई से प्रार्थना करता है कि वो एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। और अपने मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता है कि वो दिल से नारा लगाए नाराए तकबीर
2: अल्लाहु अकबर।
3: आज कौन सा तमाशा होगा?
1: अरे वही सांप और नेवले का तमाशा।
3: फिर तो बहुत मजा आएगा।
1: हाँ भाई मजा तो आएगा। अच्छा एक बात तो बताइए, ये आपने पहले भी कभी देखा?
3: नहीं, पहली बार मौका मिला है ना।
1: अच्छा मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ।
4: कदरदान तैयार हो जाइए और आंखें खोलकर होशियार हो जाइए। अब हम सांप की पिटारी में हाथ डालेगा और सर पर ताज वाले नाक को निकालेगा।

0: आप तो साहेबान, ये सांप वो नहीं जिसे आप आए दिन देखते हैं। ये सांप साइबेरिया के जंगल में रहता है। ये एक अजीबोगरीब सांप है। इसके कई मुंह और कई सर हैं। एक सर पर तो ताज भी है। ये सांप सचमुच बहुत ही अनोखा सांप है। ये कंगारू का दूध पीता है, छिपकली के अंडे सेता है। अच्छा तो लीजिए, अब हम ढक्कन को उठाता है। क्या अभी नहीं? साहेबान, नागराज का कहना है कि वो अभी मूड में नहीं है। बच्चा लोग जरा जोर से ताली बजाओ कि नागराज मस्त होकर मूड में आ जाए। कुछ खास मजा नहीं आया, जरा और जोर से बजाइए। शाबाश, अब नागराज जरूर मस्त हो जाएंगे।
1: अरे वो देखूं, अब वो जादू के थैले में हाथ डाल रहा है। लो, उसने कुछ निकाल लिया।
2: जरा मैं भी तो देखूं।
3: अरे क्या देखूं, मुट्ठी तो बंद है।
4: अरे अरे देखो तो, अरे इसने ऊपर की तरफ ये क्या उछाल दिया।
0: साहेबान साहेबान, आप इसे देख रहे हैं, ये आपको पत्थर मालूम हो रहा होगा, लेकिन कदरदान, ये वो छह नहीं जो देखने में हमको आती है। ये वो छह है कि जिसको पाके किस्मत जाग जाती है। जी हाँ कदरदान, ये पत्थर नहीं, एक बेशकीमत चीज है, एक बहुत कीमती चीज है। इसमें अनगिनत खूबियां हैं, इसमें हजारों गुण हैं, बेशुमार फायदे हैं। आप जरूर जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं। तो कदरदान हम आपको बताएगा और इसका फायदा भी दिखाएगा, मगर अभी नहीं। पहले हम आपको सर्पताज वाले सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएगा। तो नेवले राजा, आपका क्या इरादा है? लड़ाई शुरू हो जाए? क्या नहीं? लीजिए साहेबान, ये श्रीमान भी मना कर रहे हैं। क्यों जनाब, आप क्यों मना कर रहे हैं? क्या लोग कम है? ये साहेबान, इनको शिकायत है कि अभी मजमा छोटा है। ठीक है, हम अभी इसे बड़ा किए देते हैं। बच्चा लोग जरा एक बार और जोर के साथ ताली बजाओ और नेवले राजा को लुभाओ। कदरदान, घबराइए नहीं, बस चंद मिनट बाद हम आपको लड़ाई दिखाएगा और आपके तजस्सुस को मिटाएगा।

जी हाँ साहिबान, इस पत्थर के बारे में बताएगा और इसका फायदा भी दिखाएगा। हाँ हाँ हाँ हाँ, अभी बताएगा, अभी बताएगा। कदरदान, हमने बताया था कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमत चीज है, एक बेशकीमत। इसमें अनगिनत फायदे छुपे हुए हैं। लीजिए, हम आपको इसके फायदे बताता है। फायदा नंबर एक, अगर किसी को जहरीले से जहरीला सांप ने काट लिया है तो ये पत्थर तिर्याक का काम करेगा। जिस जगह सांप ने काटा हो इस पत्थर को पानी में डुबोकर वहां रख दीजिए, ये चिपक जाएगा और उस वक्त तक चिपका रहेगा जब तक जिस्म में जहर होगा। जब ये पत्थर उस जगह को छोड़ दे तो समझना जिस्म से जहर निकल चुका है। फायदा नंबर दो, किसी आदमी को बिच्छू ने डंक मार दिया और वो आदमी जमीन पर चीखे मार मार कर लौट रहा है, आप इसे किसी पत्थर या सिल पर रगड़ कर चिपका दें, सारा जहर मिनटों में गायब और लोट पोट आन के आन में छू मंता। फायदा नंबर तीन, मुसाफिर जाने वालों देख लो मुंह फेर कर, अरे हम मुसाफिर किस लिए बैठे हैं रास्ता घेर कर। जाइए नहीं, जाइए नहीं, अभी खेल दिखाएगा, आप खेल देख कर जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लीजिए, हम अभी दिखाता है।

0: अरे वो देखो उसके हाथ में सांप की दुम कैसी बल खा रही है। हाँ
1: अरे दादा मुझे भी तो
2: अरे इसका तो रंग भी तो अनोखा है।
0: हाँ
1: अरे भैया दादा मुझे भी तो देखने दो।
0: ये लीजिए
3: साहेबान ये सांप खतरनाक भी बहुत है, इसका काटा हुआ आदमी मुश्किल से बचता है और वो भी इसे सिर्फ एक चीज बचा सकती है, सिर्फ एक चीज बचा सकती है और वो है ये फकीरी संगरेजा। जी हाँ जी हाँ ये सिया पत्थर जिस किसी भाई को शुबा हो और इसे आजमाना चाहता है वो हमारे पास आ जाए, हम इस सांप से इनको कटवाएगा, चंद सेकंड के लिए वो जरूर लोटपोट हो जाएंगे मगर इस फकीरी संग्रेजे की मदद से वो जल्दी ही हंसने भी लगेंगे। है कोई हिम्मत वाला, है कोई जमामाल, है कोई शेर दिल तो निकल कर सामने आए। आइए इस फकीरी संग्रेजे को आजमा कर देखें। कोई नहीं कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम अभी आपको इसका एक नमूना दिखाता है। कदरदान ये टिकिया देख रहे हैं, इसको हम इस पानी में डालता है। साहिबान ये देखिए ये देखिए, ये सफेद पानी खून की तरह लाल हो गया।
4: हो गया हो गया हो गया हो गया।
3: अब इस गिलास को हम इस पिटारी में रखेगा और सांप अपना जहर इस गिलास में छोड़ेगा। आप देखें जहर पीकर पानी क्या से क्या हो जाता है। तो लीजिए मैंने ये गिलास पिटारी में रख दिया।

0: बेटे मोहन चलो देर हो रही है,
1: थोड़ी देर और रुक जाइए बापू।
0: नहीं बहुत देर हो जाएगी।
1: अच्छा तो आप चले जाइए, मैं खेल देख कर आऊंगा।
0: अच्छा जल्दी आ जाना।
1: जी बापू।
2: साहेबान देखिए ये गिलास, अब इस पानी का रंग बिल्कुल सियाह हो चुका है। साहेबान जिस आदमी को ये सांप काट लेता है उसका रंग भी इसी तरह काला पड़ जाता है। अब हम आपको इस फकीरी संगरेजे का कमाल दिखाता है। ये देखिए मैंने इसे गिलास में डाला और ये लीजिए काला पानी फिर खून की तरह बदल गया। शुक्रिया मेहरबान, शुक्रिया इनायत कदरदान। साहेबान देखा इस फकीरी संगरेजे का कमाल, ये तो सिर्फ एक कमाल है, ऐसे ऐसे तो इसमें बीसों कमालात बंद हैं, अनगिनत जादू के करिश्मे पोशीदा हैं। इसके चंद और फायदे हम आपको बताता है। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो इसे उस आदमी की नाक के पास ले जाइए और फौरन होश में आ जाएगा, और मिर्गी का मरीज अगर इसे अपने पास रखता है तो उसे कभी दौरा नहीं पड़ेगा। इसी तरह किसी को पुराने से पुराना बवासीर हो और लाइलाज बन चुका हो, आप इससे सिर्फ एक हफ्ते शिकायत कीजिए, मस्सा गलकर राख हो जाएगा। कदरदान इसके और बहुत से फायदे हैं जिनका जिक्र इस पैम्फलेट में तफसील के साथ छपा हुआ है, ये लीजिए।
3: ये तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
4: चलिए चलिए भाई साहब, चलो यार, चले चले यार, चलो
3: चलो सब चलते हैं, चलिए आइए।
4: अजय भाई तमाशा नहीं देखेंगे क्या?
5: मुझे तो नहीं लगता कि तमाशा होगा।
4: अरे होगा कैसे नहीं, जरूर होगा, जरूर होगा।
2: कदरदान इतने सारे कमालात, इतने गुण और इतनी सारी खूबियां इस फकीरी संगरेजे में मौजूद हैं। आप सोचते होंगे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हाँ कीमत तो वाकई में बहुत ज्यादा है, मगर दाम दाम दाम कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त फकीर की बख्शी हुई चीज है, इसका दाम कुछ भी नहीं। हाँ पीर और मुर्शिद के न्यास के लिए एक मामूली सी रकम है, एक रुपया, सिर्फ एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया बतौर हदिया जरूर ली जाती है, एक रुपया। जिस किसी भाई को जरूरत हो आवाज देकर मांग सकते हैं।
3: लाइए भाई,
5: ओफो अब चलो भी यार।
3: क्यों तमाशा
5: हो गया? तमाशा,
4: अरे भाई साहब ठीक कह रहे हैं भाई, चलिए अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
3: कैसी बात कर रहे हो जनाब, तमाशा तो अब होगा।
5: तो ठीक है देखते हैं।
4: अरे क्या सचमुच तमाशा नहीं होगा?
1: भाई भाई लगता तो ऐसा ही है।
4: अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसने वादा किया है, इतने सारे लोगों को घेर रखा है भाई, दिखाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ?
5: खूब कहा, जाएगा कहाँ? अरे साहब वही जाएगा जहाँ से आया है, मैं तो चला।
4: अरे मोहन
1: हाँ?
4: तुम अकेले आए हो?
1: नहीं रमेश, बापू के साथ आया था, उनको देर हो रही थी इसलिए वो खेल देखे बिना ही चले गए।
4: अच्छा अच्छा
1: यार रमेश
4: हाँ?
1: आखिर बात क्या है, धीरे धीरे सभी लोग चले जा रहे हैं, क्या ये लोग खेल नहीं देखेंगे?
4: यार क्या पता। अच्छा आओ मेरे साथ आओ, किसी से पूछते हैं।
1: हाँ अंकल, अंकल एक मिनट,
4: अंकल एक मिनट
6: बोलो।
1: अंकल खेल नहीं होगा क्या?
6: क्या मालूम।
4: तो अंकल आप क्यों जा रहे हैं?
6: भाई इसलिए के सब जा रहे हैं।
5: हाँ? अरे तुम लोग किस लिए रुके हुए हो?
4: अब बोल जी, खेल देखने के लिए।
1: हाँ?
5: खेल? अरे कैसा खेल? अच्छा सांप और निहुले का खेल है?
1: हाँ
4: यार मोहन, हाँ? अरे यार मुझे तो इसकी हंसी बड़ी भयानक लग रही है।
1: हाँ?
4: यार मुझे तो डर लग रहा है, चलो जल्दी यहाँ से खिसक लो।
1: लेकिन खेल देखे बिना ही?
4: अरे यार खेल वेल को मारो गोली और निकल चलो यहाँ से, वरना सुना है कि मदारी लोग जादू भी जानते हैं।
1: हुँ?
4: और जादू से मुंह बंद कर देते हैं, हाथ पांव भी बांध देते हैं।
1: सच?
4: हाँ बिल्कुल सच, मेरे पिताजी कहते हैं।
1: तो चलो यहाँ से।
4: चल भाई चल, जल्दी करें।

0: यार रमेश
1: हा?
0: हम बेकार डर कर आ गए। हो सकता है वो खेल दिखाए, क्योंकि वो जो लड़के रुके हुए हैं ना, वो यूं ही तो नहीं रुके हुए हैं।
1: लेकिन यार खेल होना होता तो वो लोग भी रुकते जो चले गए। तुम बेकार पछता रहे हो।
0: यार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये तमाशा देखने की। वो सांप कैसा होगा जिसके कई मुंह हैं और एक सर पर तो ताज भी है? किस तरह टुकड़ों में बटा हुआ सांप फिर से जुड़कर जिंदा हो जाता होगा, है ना जी खेल?
1: यार तू तो
0: खैर फिर कभी देखेंगे मौका मिला तो। अब इधर क्या हो रहा है रमेश?
1: अरे शायद उधर भी कोई तमाशा हो रहा होगा, और क्या।
0: चलो देखते हैं।
1: चलो
2: देवियों तथा सज्जनों, आज समूचा संसार अंधकार से भर गया है। चारों ओर का वातावरण दूषित हो चुका है। इस अंधकारमय और दूषित वातावरण में हृदय घुटन के शिकंजे में कसकर रह गया है। मस्तिष्क विचलित है, आत्मा व्याकुल है, मानव मन की शांति के लिए भटकता फिर रहा है। बंधुओं, पर ऐसा नहीं कि संसार मार्गदर्शन से खाली हो गया है। आज भी ऐसे महर्षि महंत साधु संत भूमंडल पर उपस्थित हैं जो भटकती आत्माओं का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही महर्षियों में से एक महर्षि आत्मानंद भी हैं। बाबा आत्मानंद जी ने अपनी घोर तपस्या उपासना एवं योग साधना से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि यदि वो चाहें तो समूचे संसार को उज्जवल बना सकते हैं। बाबा जी ऐसा भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ज्ञान बंटे, संसार से अंधकार छंटे और आंखों के सामने से अज्ञानता की धुंध हटे। परंतु बाबा जी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, आपकी चाह से ही उनकी चाह पूरी हो सकती है। आपकी इच्छा को देखकर ही बाबा जी अपना वह केंद्र बिंदु स्थापित कर सकते हैं जहां से प्रकाश के स्रोत फूटेंगे, किरणों के झरने बहेंगे, सुख की सरिता प्रवाहित होगी, शांति का सरोवर जन्म लेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके मार्गदर्शन के लिए महर्षि बाबा आत्मानंद जी एक शांति आश्रम खोलना चाहते हैं, परंतु वह आश्रम तभी खुल पाएगा जब आप भरपूर योगदान करेंगे। इस शुभ तथा अनिवार्य कार्य के लिए जितनी जल्दी आपका हाथ आगे बढ़ेगा उतनी ही जल्दी संसार से अंधकार मिटेगा, उतनी ही तीव्रता से उजाला फैलेगा और आपके व्याकुल हृदय को शांति प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि इस पुण्य कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हाथ बटाएंगे। भगवान आपको सन्मति दे, सुबुद्धि दे, शांति दे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
3: हम सब योगदान देने के लिए तैयार हैं।
4: हमारी ओर से 501 रुपया का योगदान कबूल कीजिए।
3: मेरे नाम पर 5,000 रुपए भी लिख लीजिए।
5: अरे यार मोहन,
0: हाँ
5: चलो आओ यहाँ से चले।
0: चलो

0: यार मोहन, इधर कैसे भीड़ लगी हुई है?
1: अरे वहां भी शायद कुछ हो रहा होगा, और क्या।
0: चलो चलो चलकर देखते हैं।
1: चलो।
2: भाइयों, बहनों और साथियों, मुझसे ज्यादा आपको एहसास होगा कि आपके चारों तरफ बदहाली की भयानक बदली छाई हुई है। आपके आंगन में भूख, प्यास और बीमारी की महामारी फैली हुई है और बाहर बेकारी, रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का राक्षस तांडव नाच नाच रहा है। दुख का नाग आपके तन मन से लिपटा पड़ा है, जहर से आपका जिस्म तड़प रहा है। साथियों, क्या आप नहीं चाहते कि धरती पर खुशहाली आए, आपके इर्द गिर्द हरियाली छाए, आपके आंगन में सुख और अमन चैन की बहार आए, घर का कोना कोना महक उठे, आपका जीवन चहक उठे? भाइयों, यकीनन आप चाहते हैं कि ऐसा हो, मगर होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, शायद आप भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि जिन्हें ऐसा करना चाहिए वो करना नहीं चाहते। दोस्तों, हालांकि वो बार बार आपसे वायदा करते हैं, मगर वो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आपके फायदे में उनका अपना नुकसान है। मगर ऐसा भी नहीं कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, वो होगा और यकीनन होगा, मगर इसके लिए अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। आपको क्या करना है और आपके लिए हमें क्या करना है, ये सब कुछ इस पंपलेट में तफसील से छपा है। उम्मीद है आप इस पर जरूर अमल करेंगे और अपनी चाहत के लिए हमें चाहेंगे। साथियों, मेरे साथ मिलकर सब नारा लगाएंगे, जय।

0: आ गए बेटे?
1: जी बापू।
0: सांप और नेवले की लड़ाई देखी?
1: नहीं बापू, रमेश लेकर आ गया कि डुगडुगी वाला खेल नहीं दिखाएगा।
0: अरे पर इतनी देर कहाँ रहे?
1: दो और मजमू में चले गए थे।
0: अच्छा
1: जी,
0: वहाँ क्या देखा?
1: एक में तो ये बताया जा रहा था कि संसार अंधकार से भर गया है और कोई महर्षि जी शांति आश्रम खोलकर इस अंधकार को दूर करना चाहते हैं।
0: और दूसरे में?
1: दूसरे में खुशहाली लाने की बात हो रही थी, बेकारी और काला बाजारी को खत्म करने को कहा जा रहा था। हम लोग वहाँ भी ज्यादा देर तक नहीं रुके क्योंकि हम तो गए थे तमाशा देखने, मगर तमाशा कहीं भी नजर नहीं आया।
0: क्या कहा
1: जी?
0: तमाशा कहीं भी नजर नहीं आया।
1: जी बापू। बापू आप हंस क्यों रहे हैं?
0: मोहन
1: जी,
0: इन मजमों में पंपलेट भी बटे थे?
1: हाँ बटा, मगर
0: तुमने भी लिए?
1: जी हाँ, ये हैं। ये शांति आश्रम वाला पंपलेट है और ये खुशहाली लाने वाले जलसे वाला।
0: पैम्फलेट तो डुगडुगी वाले ने भी बांटा होगा।
1: हाँ उसने भी बांटे थे, पर उसे मैंने कहीं फेंक दिया।
0: बीमारियां दूर करने की उसमें तरकीब लिखी होगी और उसकी दवा भी उसने बेची होगी।
1: जी हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आपको ये सब मालूम कैसे हुआ? आप तो पहले ही आ गए थे।
0: बेटे मैं तो बगैर पढ़े ये भी बता सकता हूँ कि इन पैम्फलेटों में क्या लिखा है।
1: क्या? आप हाँ, ये भी बता सकते हैं?
0: हाँ, बता सकता हूँ।
1: तो बताइए ना।
0: एक में लिखा होगा, क्या अगर आप इस दुनिया से अंधेरा मिटाना चाहते हैं और मन की शांति चाहते हैं तो दिल खोलकर शांति आश्रम को चंदा दीजिए। और दूसरे में ये छपा होगा कि आप भूख बेकारी और बीमारी वगैरह को दूर करने और धरती पर खुशहाली लाने के लिए फला फला का साथ दीजिए।
1: अरे बापू कमाल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल यही लिखा है। आप तो लगता है जादू जानते हैं। अरे अरे तमाशे का मजा तो मुझे यहाँ मिला।
0: अरे नहीं बेटे, असल तमाशा वही था जिसे तुमने महर्षि जी के मजमे में देखा, खुशहाली वाले मजमे में सुना और मदारी के मजमे में देखा।
1: क्या?
0: हाँ बेटे हैरत मत करो, ये सारी दुनिया एक तमाशा है और इसका मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम और बड़े हो जाओगे। हाँ

सारी दुनिया ही एक तमाशा है और इसका मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम और बड़े हो जाओगे। सारी दुनिया ही एक तमाशा है और इसका मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम और बड़े हो जाओगे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया आ गले लग जा फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं मोहम्मद रफी के साथ, अब सुनिए सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम है फर्ज।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में सुहाग फिल्म का नगमा भी आपने सुना। प्रवीण की अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले को सुनिए। फिल्म है हम किसी से कम नहीं।

मानू रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना काला पत्थर फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

इस गद्दार फिल्म का नगमा भी अपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है सोनू निगम और सारिका कपूर की आवाजों में। फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है।

0: वन टू का फोर फिल्म का नगमा आपने सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, बाप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज से अमरीका के एक हफ्ते के दौरे पर रहेंगे। अमरीका भारत और दीगर 19 ममालिक से दरामद की जाने वाली मखसूस अद्वियात पर टैरिफ आयद नहीं करेगा। भारत ने श्रीलंका के सेहत आम्मा में मदद फराहम करने के लिए टीबी की रोकथाम से मुतालिक 3 टन अद्वियात कोलम्बो भेजी हैं। म्यांमार में बागी ग्रुप के जेर कंट्रोल इलाके पर फौज के फजाई हमले में कम से कम

0: खिलाड़ियों की लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से अमरीका के एक हफ्ते के दौरे पर रहेंगे। अमरीका, भारत और दीगर 19 ममालिक से दरामद की जाने वाली मखसूस अदवियात पर टैरिफ आयद नहीं करेगा। भारत ने श्रीलंका के सेहत आम्मा में निजाम में मदद फराहम करने के लिए टीबी की रोकथाम से मुतालिक 3 टन अदवियात कोलंबो भेजी हैं। म्यांमार में बागी ग्रुप के जेर कंट्रोल इलाके पर फौज के फजाई हमले में कम से कम 33 अफराद हलाक और 36 जख्मी हुए हैं। स्पेस एक्स का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप पहली बार मदार में पहुंच गया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स के लिए 1071 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस दस्तियाब है और DD फ्री डिश पर भी आप हमें सुन सकते हैं।

सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज से अमरीका के एक हफ्ते के दौरे पर रहेंगे। अमरीका भारत और दीगर 19 ममालिक से दरामद की जाने वाली मखसूस अदवियात पर टैरिफ आयद नहीं करेगा। भारत ने श्रीलंका के सेहत आमा निजाम में मदद फराहम करने के लिए टीबी की रोकथाम से मुतालिक 3 टन अदवियात कोलंबो भेजी हैं। म्यांमार में बागी ग्रुप के जेरे कंट्रोल इलाके पर फौज के फजाई हमले में कम से कम 33 अफराद हलाक और 36 जख्मी हुए हैं। स्पेस एक्स का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप पहली बार मदार में पहुंच गया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

श्रोताओं, पवित्र पापी राजेंद्र भाटिया द्वारा निर्देशित 1970 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में बलराज साहनी पन्नालाल के किरदार में हैं, परीक्षित साहनी केदारनाथ के किरदार में हैं, तनुजा वीणा की भूमिका निभा रही हैं और नीतू सिंह विद्या यानी बेबी सोनिया के किरदार में शामिल हैं। यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक नानक सिंह के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है।

0: अल्ले
1: मम्मे क्या सोचोगे,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार खमत के चल, जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लचक।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पवित्र पापी की। आपको बता दें, प्रेम धवन ने इस फिल्म के लिए गीत और संगीत दोनों की रचना की है। इस फिल्म का गीत तेरी दुनिया से किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। किशोर कुमार के निधन के समय ये गीत रेडियो और टेलीविजन चैनलों पर बजाया गया था। और रफी साहब का एक अन्य गीत अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे हरियाणा के एक जिले जिंद में स्थित रानी तालाब नामक एक प्रसिद्ध स्थान पर फिल्माया गया था।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख

0: सब नो कोलैटरल।
1: वो कहा है?
0: मिठाई।
2: आरबीआई कहता है
3: तरह से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी केदारनाथ के इर्द गिर्द घूमती है, जो पन्ना लाल नामक व्यक्ति की जगह घड़ी मरम्मत की दुकान में नियुक्त होता है, जिसके कारण पन्ना लाल केदारनाथ को कोसता है और कहता है कि उसी के कारण उसका परिवार कंगाल हो गया है। पन्ना लाल केदारनाथ को पत्र लिखकर कहता है, तुम्हारे कर्मों ने मुझे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया है, क्योंकि ना तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं, ना तो अपनी बेटियों की शादी। इसके बाद पन्ना लाल अपनी पत्नी को बताता है कि वो पुराने मित्र से मिलने और धन जुटाने शहर जा रहा है और वहां से चला जाता है, फिर कई दिनों तक वापस नहीं आता। केदारनाथ को जब ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो पन्ना लाल की पत्नी माया को और दो बेटियों वीणा और विद्या की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो उनके घर में एक कमरा किराए पर लेता है और पन्ना लाल की पत्नी माया को पत्र लिखता है, जो पन्ना लाल के भेजे गए पत्रों की तरह माया तक पहुंचते हैं और इन पत्रों में पैसे भी होते हैं। इसी दौरान केदारनाथ को पन्ना लाल की बड़ी बेटी वीणा से प्रेम हो जाता है, पर वीणा को ये एहसास नहीं होता। केदारनाथ को ये बाद में पता चलता है कि वीणा की शादी पहले से तय थी और उसकी शादी में पैसे कम पड़ने की वजह से केदारनाथ अपने मालिक की दुकान से पैसे चुराकर माया को दे देता है। बाद में जब पता चलता है कि वीणा की ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, तो वो उसे सुलझाकर वहां से चला जाता है। तो श्रोताओं, ये थी फिल्म पापी पवित्र की कहानी।

0: लंबा ना हो मोटा। इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपने होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।
1: झूठी चल झूठी, कब देखा तूने? देखा हाँ देखा, देखा, देखा
0: पर... अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत के चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी समेत वख-वख खेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। चोन कमिशन ने 11 राज्यसभा सीटों लिए 2 साल चुनाव वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहरी हवाबाजी मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनने वाल काम कर रहा है। तीन निशानेबाजी नीरू ढांडा ने एशियाई खेडा च औरतों के ट्रैक मुकाबले विच भारत लिए पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा है।

क्या खतरा विस्तार माल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन का संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। न्यूयॉर्क विच एशिया सोसायटी वालों कराए गए समागम विच बोलदिया डॉ जयशंकर ने कहा कि सरहदी रुकावट हल होने तो बाद संबंधा विच सुधार होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय तो चीन ने दस्सा आ रहा है कि दुवल्ले संबंधा विच गिरावट किसी भी देश की मदद नहीं करती है, लंबी रुकावट किसी भी देश के हितों को पूरा नहीं करती। भारत अफ्रीका संबंधा के व्यापार समझौते की गलबात बारे बोलते हैं विदेश मंत्री ने कहा कि दोवे देश एक अजिहे स्थिति विच पहुंच गए हैं जिथे व्यापार समझौते से एक सहमत है। उन्होंने दस्सिया कि भारत छोटे उत्पादकों छोटे खेतीबाड़ी उत्पादकों से छोटे कारखानों का समाज है। उन्होंने अगे कहा कि भारत और अमरीका विचकार प्रति व्यक्ति भाड़े तो इलावा उत्पादन की प्रक्रिया प्रकृति और समाज की प्रकृति बहुत वक्री है। उन्होंने कहा कि व्यापारक गलबात में इसमें देखने की कुछ हद तक धीरज और वेरवे की लोड़ होती है। उन्होंने कहा कि टैरिफ ने पिछले साल संबंधा में एक रुकावट पैदा की थी। डॉ जयशंकर ने दहशतगर्दी के मुद्दे से भी चानना पाया, कहा कि यह भारत के एक खास महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस बारे अमरीका वालों लोड़ी समझ या हमदर्दी नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन ईरान खाड़ी टकराव का आलमी दखण की आर्थिकता विनाशकारी प्रभाव पे। उन्होंने ऊर्जा स्थिति बारे चिंता प्रगट करते हुए कहा कि बाजार बेहद तंग है। उन्होंने कहा कि जेकर लोग इस नाल राजनीति करते हैं तो यह बाजार पेचीदगियां बढ़ाता है और अजिहे समय कीमतों बढ़ाता है जो लोगों को कीमतों स्थिर करना चाहिए है। भारत और साउदी अरब ने रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा टेक्नोलॉजी सेहत संभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा की एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर साउदी अरब के खजाना मंत्री मोहम्मद अल जदान नाल मुलाकात में खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने साउदी अरब ने भरोसेमंद और रणनीतिक भाईवाल दसिया। उन्होंने भारत साउदी अरब दुवल्ले निवेश समझौते से गलबात के सफल सिटे का स्वागत किया जिसका उद्देश्य एक होर मजबूत और भरोसेमंद निवेश सिलसिला प्रदान करना है। श्रीमती सीतारमन ने भारत विच निवेश के मौकों से चर्चा करने लई स्विट्जरलैंड के एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के गवर्नर पीटरो लासेट नाल मुलाकात की। उन्होंने हर तो बाद यत्ना और दुवल्ले प्रोजेक्टों की चर्चा करने लई नेपाल के खजाना मंत्री स्वर्ण बागले नाल मुलाकात की। उन्होंने यूपीआई एनपीआई डिजिटल भुगतान एकीकरण के जल्दी लागू करने से भी चर्चा की। चोन कमिशन ने 11 राज्यसभा सीटों लिए 2 साल चोणों लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस उत्तर प्रदेश दी 10 सीटों तो उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा आगू और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीएल वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव बसपा के रामजी और 6 होर 25 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड तो नरेश मांसल भी 25 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कमिशन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट से जिमनी चोन लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया। टीएमसी संसद मेंबर रुकमणी मलिक के इस्तीफे कारण खाली हो गई थी। नामजदगी की आज से शुरू हो गई है तो 16 अक्टूबर में वोटिंग होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी सदर मुकाम विखे सूबा इंचार्ज और सह इंचार्जा की मीटिंग की प्रधानगी की। यह मीटिंग हाल ही में की गई संगठनात्मक नियुक्तियों तो बाद पार्टी के सूबा इंचार्जा और सह इंचार्जा की पहली मीटिंग थी। मीटिंग में सारे सूबा इंचार्जा और सह इंचार्जा ने शिरकत की। इस पार्टी दी संगठनात्मक तरजीहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह खबर आकाशवाणी को सुन रहे हो साडा एक्स हैंडल है @EIRRN जलंधर। शहरी हवा राज्य मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत एक प्रमुख आलमी हवाबाजी केन्द्र वजो उभर रहा है और दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनने लई काम कर रहा है। आज नवी दिल्ली विच रूट्स एशिया 2027 की प्रेस कांफ्रेंस में संबोधन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारत का टीचा 2047 तक मुसाफरों की गिनती को मौजूदा करीब 24 करोड़ तो 6 गुणा बढ़ा के 130 करोड़ करने का है। मंत्री ने इस गल पर जोर दिया कि देश में संचालित हवाई अड्डों की गिनती 2014 में 74 तो वध के वर्तमान में 160 तो वध हो गई है। खेतर संपर्क योजना उड़ान को उजागर करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को वधेरे पहुंचयोग उपलब्ध और किफायती बनाया है। मंत्री ने कहा कि भारत अगले साल 16 मार्च को नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे रोड स्टेशन 2027 के 23वें एडिशन की मेजबानी करेगा। यह 3 दिन का प्रोग्राम खेतर दियां एयरलाइना हवाई अड्डों सैर सपाटा अधिकारियों और हवाबाजी हिस्सेदारों नैटवर्क रणनीतियां विकसित करने और एशिया प्रशांत में भविष्य के रूट विकास को यकीनी बनाने के प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। भारत और अमरीका विचकार रक्षा सहयोग को होर मजबूत करने वाले एक

महत्व पूर्ण कदम चुकाया गया। इस बारे ऐलान भारतीय फौज के अधिकारिक जनरल ADGPI ते घोषित किया गया। ADGPI ने लिखा है कि भारत अमरीका दोस्ती नूं अगे वधाउणा यूएस के RPAC के डिप्टी कमांडिंग जनरल लैफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने 28 सितंबर नूं जनरल सीरस सेठ नाल मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत विच विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति ते कई खेतरां विच आपसी रक्षा सहयोग नूं अगे वधाउण दे मौकियां ते चर्चा की। भारतीय समुद्री फौज की साल 2026 की दूजी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज नई दिल्ली विच हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने दस्सिया है कि इस 3 दिन रोजा कॉन्फ्रेंस विच समुद्री फौज के सीनियर अधिकारी वख-वख खेतरां दे संचालन मुखी ते खेतरी कमांडर हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस विच फौजी ते रणनीतिक पद्धर ते समुद्री फौज की संचालन तैयारी की व्यापक समीक्षा की जाएगी। पश्चिम बंगाल विच महानिर्वाण रोड मासार सोसायटी दे दुर्गा पूजा तो पहला दे समागम नाल संबंधित कथित माली बेनेमिया दे संबंध विच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोलकाता दी 15 थावां ते छापेमारी कर रही है। इस छापे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 तहत मारे जा रहे ने। डायरेक्टरेट मुताबिक मासार ने यूनेस्को सहायता प्राप्त संगठन होने का दावा करके धोखाधड़ी नाल व्यक्तियों तो वड्डी रकम इकट्ठी की ते फंडा दी वरतो निजी लाभ लई कीती। आज विश्व दिल दिवस है। ये दिन हर साल 29 सितंबर नूं दिल दीआं बीमारियां उन्हां दी रोकथाम अते विश्वव्यापी प्रभाव बारे लोकां विच जागरूकता पैदा करन लई मनाया जांदा है। इस मौके केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री JP नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट विच किया कि ये दिन लोकां नूं बीमारी दे लक्षणां नूं पछाणन सेहतमंद जीवन जांच अपनाउण जोखमां नूं घटाउण अते समय सिर डाक्टरी सहायता लैण दी याद दिवांदा है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत दीआं 5 नवीआं थावां ते किहड़ी ते अंतरराष्ट्रीय तजवीज शामिल कीते गए ने। इस नाल भारत तो इन्हां थावां दी गिणती वध के 78 हो गई है। नवीआं शामिल कीतीआं गईआं थावां विच बाग गुफा चित्रां ते बोधी कंध चित्रकारी चंबल घाटी के मंदिर समूह गुप्तकाल दीआं उदयगिरी गुफावां ते गिनौरगढ़ का कबायली विरसा शामिल ने। इसकी सत्याग्रह स्थल भी शामिल है क्योंकि भारत से दक्षिणी अफ्रीका में जोड़ने वाली लड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय तजवीज है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सभ्याचार के सियासत सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवीं थावां भारत के विरसे की असाधारण भिन्नता दर्शाउंदियां ने। निशानेबाजी विच नीरू टांडा ने जापान विच एशियाई खेड़ा च औरतों के ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा है। नीरू एशियाई खेड़ा विच इस मुकाबले विच सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय औरत निशानेबाज बन गई है। उन्होंने 28 अंकों नाल एक नवा एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले अज औरतों के ट्रैप टीम मुकाबले विच भी नीरू टांडा आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने चांदी का तमगा जीता। उधर मुक्केबाजी विच नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम तो भार वर्ग विच कांस्य का तमगा अपने नाम किया। प्रवीण हुड्डा औरतों के 65 किलोग्राम भार वर्ग और अंकुश पंगाल मर्दा के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल विच पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमगा जेतुआ नूं वधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत के चीन संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा से टेक्नोलॉजी समेत वख-वख खेतरां विच सहयोग की समीक्षा की थी। चोन कमीशन ने 11 राज्यसभा सीटों लई 2 साला छोड़ा वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। शहरी हवाबाजी मंत्री के रामन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाई बाजार बनने वाल काम कर रहा है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 बजे होगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दफा सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इंफिरादी

ट्रैक मुकाबले में पहला इंफिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले ताल्लुकात आज बेहतर हुए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी ने किया था, डॉ जयशंकर ने कहा कि जब सरहद से मुतालिक तातुल को हल कर लिया गया तो ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक लंबी मुद्दत से बता रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी से मुल्क को कोई मदद नहीं मिलती और देरीना तातुल से किसी भी मुल्क के मफादात पूरे नहीं होते। भारत अमरीका ताल्लुकात और तजारती समझौते पर मुजाकरात के बारे में वजीर खारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच गए हैं जहां तजारती मुआहिदे पर मुफाहमत कायम हो गई है। डॉ जयशंकर ने यह कहते हुए दहशतगर्दी के मामले को उजागर किया कि ये भारत के लिए एक अहम मामला है। उन्होंने रायजनी की कि अमरीका की तरफ से इस सिलसिले में कोई वाफर मुफाहमत या हमदर्दी का इजहार नहीं किया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का मकसद मुसाफिरों की तादाद को, जो फिलहाल 24 करोड़ है, साल 2047 तक 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब यह तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान के साथ एक मीटिंग के दौरान, जो दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग मुनाकिद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वजराए खजाना ने भारत सऊदी अरब दो तरफा सरमायाकारी समझौते के बारे में मुजाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूत तर और मजीद काबिल एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। मोहतरमा सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के AIIB गवर्नर सफीर पियत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और NIIF, नीज, गिफ्ट IFSC समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दो तरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा रामगोपाल यादव, बीएसपी के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दतकार 15 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सीट टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। यह मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रूपये से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर प्रवेश साहिब सिंह, शहरी तरक्की के वजीर आशीष सूद और दीगर वजरा ने शिरकत की। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर

0: और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमरीका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज

0: अपुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काली खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें जाए तो वालों ने हमारे साथ ये किया, उसमें ज्यादातर बहने बेटी है। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कहीं अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की यह पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल

0: 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और आप प्रस्तुत है आपका मनपसंदता सेगमेंट एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक हास्य कलाकार हैं। हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए वे जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद अली की। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। महमूद अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज अली के 9 बच्चों में से एक थे। तो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की हमारे आज के

कलाकार और इनके बारे में करेंगे खूब सारी रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं उनकी ही फिल्म से ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे और साथियों की आवाजों में।

0: 생각.
1: 그 다음.
2: 아요.
1: 그 다음.
2: 나.
1: 다음. 다음. 다음으로. 나의

श्रोता, एक बार की बात है, लेखक मनमोहन मेलविले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्से को बयां किया था। इसमें कहा गया है कि महमूद ने अपनी करियर में सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सके। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा कि एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी ने ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता अभिनेता के तौर पर महमूद पहले छोटे मोटे काम करते थे, वाहन चलाने का काम भी करते थे। उस जमाने में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की। शादी करने और पिता बनने के बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने दो बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। महमूद को फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक जो मिला वो फिल्म परवरिश में मिला था। इसमें उन्होंने फिल्म के नायक राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोई का काजाई किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने प्यार किए जा, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी हिट फिल्में दी। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ज्यादा पसंद किया।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं हमारे पास भर भर

कि संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेश को पढ़ते हैं। पहला संदेश जो आया है वो है प्रकाश रंभाड़े का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से। इनके साथ है भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। स्वर्ण सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला संदेश है नितेश देवांगन का है, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन और बिग दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है कविता गौर और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मेरठ कैंट से। अगला जो संदेश है वो है गुरमीत सिंह का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन, इनके साथ हैं मीता, शालीमार बाग से शिव कुमार सहगल हमें लिखकर भेज रहे हैं। ताज मोहम्मद का संदेश आया है, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। हरजिंदर शिंदा में संदेश भेज रहे हैं पंजाब से, इनके साथ है जसवीर, जसी, सीता और गीता। अगर संदेश है वो आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आदि, अरोड़ा, इंद्रभान सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं। और धर्मेंद्र चीपा का अगला संदेश आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, इनके साथ है कपिल चीपा, ईशान कीपा, पूजा परिहार, फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं, अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ हैं प्रमिला भावसर। अगला जो संदेश है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ हैं वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघल मस्कीन, चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और जो अगला संदेश है रवि कुमार, राहुल रवि, इनके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशत सिंह राहुल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अम्बाला हरियाणा से। अगला जो संदेश है राजकुमार डूडी का है, और इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरांसी, जिला हिसार से। साथ ही अगला संदेश है प्रकाश वर्मा का, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है नमन ढींगिया, पा ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। मस्कीन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से। और जो श्रोताओ अगला संदेश है वो हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

शुभ 23 जुलाई 2004 में नींद में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हिंदी सिनेमा में वे एक महान हास्य अभिनेता, गायक, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्हें आज भी हम उतना ही याद करते हैं जितना उन्हें पहले किया करते थे, और वो प्यार और वो याद आज भी बरकरार है।

तो हमारे पास संदीप शायर है पंकज शर्मा का, और इनके साथ हैं संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जगीत दुआ जी। और जो अगला संदेश है वो है अमर रमेश कुमार खत्री का, और इनके साथ है टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, शंकर गुल शर्मा। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का ये कार्यक्रम आज एक ही कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी ठीक दिन के 2:30 पर। तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे आगे के कार्यक्रमों में, जो कि आप सुनेंगे दिन के 3:00 मिथिनी मेलोडीज।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हो जाते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन तालुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में एआईआईबी सालाना मीटिंग से अलग दफा सलामती तिजारत सरमायाकारी तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 नशिस्तों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इन्फिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इन्फिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले ताल्लुकात आज बेहतर हुए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी ने किया था, डॉ जयशंकर ने कहा कि जब सरहद से मुतालिक तातुल को हल कर लिया गया तो ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक लंबी मुद्दत से बता रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी से मुल्क को कोई मदद नहीं मिलती और देरी न तातुल से किसी भी मुल्क के मफादात पूरे नहीं होते। भारत अमरीका ताल्लुकात और तजारती समझौते पर मुजाकरात के बारे में वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच गए हैं जहां तजारती मुआहदे पर मुफाहमत कायम हो गई है। डॉ जयशंकर ने यह कहते हुए

दहशतगर्दी के मामले को उजागर किया कि यह भारत के लिए एक अहम मामला है। उन्होंने रायजनी की कि अमरीका की तरफ से इस सिलसिले में कोई वाफर मुफाहमत या हमदर्दी का इजहार नहीं किया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का मकसद मुसाफिरों की तादाद को, जो फिलहाल 24 करोड़ है, 2047 तक 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब यह तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दिफा, सलामती, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान निक के साथ एक मीटिंग के दौरान, जो दोहा में एआईआईबी सालाना मीटिंग से अलग मुनक्किद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वजराए खजाना ने भारत सऊदी अरब दोतरफा सरमायाकारी समझौते के में मुजाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूत तर और मजीद काबिल एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। महामंत्री सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के एआईआईबी गवर्नर सफीर पेत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और एनआईआईएफ, नीज, गिफ्ट, आईएफएससी समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वाकले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दोतरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 निशस्तों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 निशस्त शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी, पीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दतकार 15 नवम्बर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 निशस्त के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यह निशस्त टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। यह मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से अगले महीने की 5 तारीख तक अमरीका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कल से शुरू होने वाले 2 रोजा G20 वजराए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग के मौके पर जनाब गोयल अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। इन मीटिंगों में किसानों, माहिगीरों, खातून कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमईस और दीगर कारोबारी इदारों के लिए मौके को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यूनेस्को की आरजी फहरिस्त में भारत के 5 नए मकामात का सिलसिलेवार नीज बैन अल-अक़वामी नामजदगी की तजावीज शामिल की गई है, जिसके बाद इस फहरिस्त में भारत के मकामात की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। नए शामिल किए गए मकामात में बाघ गारों की बुधमत से मुतालिक दीवारों पर बनाई गई तस्वीर, चंबल वादी के मंदिर, गुप्ता अहद की उदयगिरी गारें, गिनोरगढ़ का कबायली विरसा और सत्याग्रह से मुतालिक मकामात शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस इजाफे से भारत के विरसे के गैर मामूली तनवों की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किसी शख्स के 6 औसाफ को उजागर किया है, जो मेहनत, हिम्मत, सब्र, काम करने की सलाहियत, इल्म और शुजात हैं। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जिस शख्स में ये खूबियां होती हैं उसे रूहानी मदद मिलती है। आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिल की बीमारियों, उनकी रोकथाम और उनके आलमी असरात के ताल्लुक से अवामी बेदारी को बढ़ाना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि ये दिन लोगों को इंतबाही अलामात की शिनाख्त करने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने, खतरा बढ़ाने वाले अवामिल से निमटने और बर वक्त सेहत की देखभाल

0: करने की तहरीक देता है। वजीर मौसूफ ने दिल की सेहत का तहफ्फुज करने और दिल की बीमारियों को दूर करने से मुतालिक अपने अहद का इरादा किया। उन्होंने बताया कि इस साल का मौजू है एक भी धड़कन को नजरअंदाज न करें। फ्रांस में कल हाईस्कूल तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद होने के बाद 160 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर के नाबालिग अफराद गुज़श्ता हफ्ते से अपने स्कूलों की नाकाबंदी कर रहे हैं। ये एहतजाजी मुजाहिरे क्लासरूम्स में तलबा की गुंजाइश से ज्यादा तादाद, काम के बोझ, कम मेयार वाले तालीमी मवाद और असातिज़ा की कम तादाद से मुतालिक हैं। हालांकि ये मुजाहिरे पेरिस में शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही ये दीगर इलाकों जैसे लील, मार्सी और सिडान तक फैल गए। वीडियो में तलबा को इमारतों के अंदर आतिशबाजी करते जबकि पुलिस को इसके जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रूपये से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर और शहरी तरक्की के वजीर और दीगर वुजरा ने शिरकत की। एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने खवातीन के इन्फिरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय शूटर बनकर तारीख रकम की है। आशिमा हलावत और मनीषा कीर के खवातीन की टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद भारत को यह सोने का तमगा हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में प्रवीण हुड्डा और अंकुश पंघल ने आज नशियों में अपने मुकर्ररा वजन के जुमरों में सोने का तमगा हासिल किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने चांदी और रोहित यादव ने कांसे का तमगा हासिल किया। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इन्फिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इन्फिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर हमारी नशियात जारी है। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आंखें फिल्म का नगमा, आशु भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में।

जी सुनिए बेटी बेटे फिल्म का नगमा, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मौसीकी शंकर जय किशन की है।

0: ये था हमराही फिल्म का दुगाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, और इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीटी फेडेज पर हमारी नशियात जारी है। और जब सुनिए प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामईन की खिदमत में आदाब अर्ज है। अदब नुमा प्रोग्राम का शुमारा लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर हो गए हैं सामईन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अदबी मैगजीन टाइप का प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको कलाम शायर के तहत किसी शायर का कलाम सुनवाते हैं और एक अफसाना सुनवाते हैं, और कभी कभी अगर वक्त रहता है तो एक गजल भी प्रोग्राम में शामिल कर ली जाती है। तो चलिए आज भी हमतन गोश हो जाइए इन तमाम चीजों से महसूस होने के लिए।

0: और शेर समाज फरमाए
1: आके तो बरसती रही सावन के बिना भी तुझ बिन जो गुजर जाए वो बरसात कहाँ है।

0: और शेर समाज फरमाए,
1: पत्थर की लकीरों में सिमटते रहे आंसू, जलते हुए कागज किए औकात कहाँ है।
0: और शेर पेश करने की इजाजत चाहूंगी।
1: ठहर

वो बात कहाँ है। एक गजल और समाप्त फरमा लीजिए, तहत से पढ़ना चाहूंगी। कभी इनकार भी इकरार ठहरे, कभी इनकार भी इकरार ठहरे, मेरी खामोशी भी इजहार ठहरे। कभी इनकार भी इकरार ठहरे, मेरी खामोशी भी इजहार ठहरे। और शेर समाज फरमाए, करूं मैं अपने दरिया को चरागा जो तूफान वक्त का उस पार ठहरे। करूं मैं अपने दरिया को चरागा जो तूफान वक्त का उस पार ठहरे। और शेर देखिए, लकीरें कितनी कागज पर बनी हैं, लकीरें कितनी कागज पर बनी हैं, कहीं तो नुक्ते परकार ठहरे। और ये शेर खास तौर से समाप्त फरमाए, ये दीवारें भी अब तो खोखली हैं, ये दीवारें तो भी अब तो खोखली हैं, कहां तक साये दीवार ठहरे। वही जो लफ्ज बेमानी थी जर्री की शर्माए गुफ्तार ठहरे। कभी इनकार भी इकरार ठहरे, मेरी खामोशी भी इजहार ठहरे।

को अगर कोई हवा देता है। और शेर समाप्त फरमाए,

के मैं वापस आऊं, मेरा माजी मुझे

मुझे बेकार सदा देता है। और शेर समाज फरमाए किस लिए

किस लिए अब इन्हें रह रह के हवा दे।

0: ऐसे में बहुत सुकून देता है। खजूरकार, वो किसी फ्रांसीसी रसाले के मॉडल की तरह मेरे चेहरे के करीब आई। बोली, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती। उसने बाहें फैला दी। नहीं, मैं सोफे से उठकर खड़ा हो गया। मैं एक पल खामोश रहा, फिर मैंने कहा, मैं आजाद नहीं। फितरत मशरिक यही है, पाबंद शरीयत हूं, बगावत नहीं कर सकता, और मुझे शादी के नाम पर उम्र भर की कैद मंजूर नहीं। वो बोली, एक दिन की कैद तो मंजूर करोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। 100%, एक नहीं 100 दिन। तो मोहताज का सेवा पढ़ लो, मगरिब और मशरिक के बीच एक तवाजुन भी कायम हो जाएगा। मरहबा, कहती हुई उसने पास पड़ा तौलिया खींचकर अपने सर पर रखा और सुनीला लहजे में बोली, एक खुदाए वाहिद को हाजिर और नाजिर मानकर मैंने तुमको अपनी तरफ से वकील किया कि तुम मेरा मुता अपने साथ पढ़ लो। बिल एवज महर मुबलिग 1,000 रुपए सिक्के राय जुल वक्त, दोस्ती बरकरार रहने की मुद्दत तक। मैंने भी इकरार कर लिया, कबिल तुल मुद अते लिनफ्सनी फिल मुद्दतिल मालूमते अलल महरिल मालूम। नायबा से जिस्मानी रिश्ते का इकरार मेरी मजबूरी थी या कमजोरी, मैं फौरी तौर पर नहीं समझ सका। नई दुल्हन की तरह चहकती नायला ने अक्सर बावर किया कि गुनाह नहीं तो पर्दादारी कैसी। मैंने इस खबर को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खैर, खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। शहला को 2 महीने बाद यह खबर मिली। मैंने कहा अफवाह है, तो उसने यकीन कर लिया, लेकिन मैं खौफजदा हो गया। उसका रद्दअमल खतरनाक होता है। निकाह से कबल मैंने उसे देखा भी नहीं था। बहू अम्मा के पसंद से आई थी, गोरी चिट्टी और खूबसूरत। मैं इस सांवले को देखकर मुरझा गई थी। महीनों जहनी कश्मकश से गुजरने के बाद वो अपने वालिद के इंतखाब को कबूल कर पाई। मुल्क के पसमानदा सूबे बिहार की एक खानकाह में फरसूदा रवायतों और पाबंदियों में पली बढ़ी लड़की दिल्ली के समाजी माहौल में फ्राइड की बेटी बनकर उभरेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन तन्हा बाजार जाने से मना करने पर बुरी तरह बिफरी। औरत की आजादी का सफर शादी के बाद शुरू होता है। बाप के घर में मेहमान और मुसाफिर थी, हमेशा एक ही फिक्रा सुनती, शादी के बाद जो चाहे कर लेना। लेकिन हमारी समाजी आजादी पर तो पहरा अब तक बरकरार है। जानवरों में भी विशाल का मौसम आता है, मगर इंसानों के 365 दिन लज्जत मुसीबत के तराजू में तुलते रहते हैं। बाबा फ्राइड ने सही कहा था, शादी हवसप्रस्ती का कानूनी इजाजतनामा है जो औरतों को बेबसो महकूम और मर्दों को जाबिरो हाकिम बना देता है। उस दिन शहला के तखीली उड़ान में आजादी निस्वा का इनकलाब पिन्हा था। मैंने करीब से महसूस किया, वो रवायती सब्र से बगावत पर आमादा थी। मैंने खामोश रहकर घर में उसकी हुक्मरानी कबूल कर ली। जब शहला को मेरे और नायला के रिश्ते का हकीकी इल्म हुआ तो सख्त नाराज हुई, खाना पीना छोड़ा, बीमार हो गई। मैं उसकी तीमारदारी के लिए घर में कैद। कई दिनों तक मुलाकात न होने पर नायला मेरे घर आ गई। मैं शहला के पास ही बैठा था, वो मेरे बजाय शहला से मुखातिब हुई। आपा, मैं तुम्हारी जिंदगी में मेहमान बनकर आई हूं, तुम्हारा बेटा मेरी कोख में पल रहा है, विलादत के बाद इसे लेकर वापस अमरीका चली जाऊंगी। एक पल खामोश रहे बिना शहला ने जवाब दिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं है, खैर खूबी से बच्चे के साथ वापस जाओगी तो मुझे खुशी होगी, वही मेरे लिए ईद का दिन हो गया। उसकी डिप्लोमेसी में समझ गया था, भरोसा रखो अल्लाह बेटा ही देगा, उसका नाम सीमा रखना, वक्त पर उसकी भी शादी कर देना, मगर उससे जिससे वो प्यार करेगा। शहला ने बड़े सब्र तहमुल से गुफ्तगू की, चावल और दूध से नायला की गोद भरी, खाना खिलाया और ड्राइवर के साथ उसे घर तक पहुंचाने गई।
1: तो सामीन, ये था अफसाना तवाजुन, पेश कर रहे थे जनाब शाहिद रहीम। उम्मीद करते हैं ये अफसाना आपको पसंद आया होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम अदब नुमा। एक खूबसूरत सी गजल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जल्द होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

ये कचतुर नार हम छोड़े नहीं।

तू था कि यो परिपन्न थी समझ तो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दू।

है ये फलसफा।

0: गुमनाम फिल्म का नगमा सुन रहे थे महेंद्र कपूर की तदत्त और साथियों का गाया हुआ रविशंकर की थी मौसीकी। और जब सुनिए मन्ना डे की आवाज में नील कमल फिल्म का ये नगमा।
1: खाली डब्बा

यह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बॉम्बे टू गोवा फिल्म का नगमा किशोर कुमार का गाया हुआ नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण मौसीफी आर डी बर्मन की।

0: एशियन गेम्स 2026 में नीरू धांधा ने खवातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय शूटर बनकर तारीख रकम की है। आशिमा अहलावत और मनीष खीर की खवातीन के टीम ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद भारत को यह सोने का तमगा हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा और अंकुश पांगल ने आज नेशियो में अपने मुकर्रा वजन के जुमरों में सोने का तमगा हासिल किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जिवेलियन थ्रो में दो तमगे जीते। यशवीर सिंह ने चांदी और रोहित यादव ने कांस्य का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभर रहा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का जायजा लिया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: FM बैंड 103.6 MHz थी आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवाई। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम जोक माही दी।

ए ऑल इंडिया रेडियो दे विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करेंगा। आज असा हाजिर है आप सब दे नाल सिराई की सूफी संगीत दे नाल। असा दे नाल हैं आज रूपेश चोपड़ा जी, वो असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज विच सुने सन। सब तो पहले वो पेश करेंगे पेन सुल्तान शाह हुसैन साहब जी का एक गावन, माहे नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी।

सेवन दास सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल।

हरिदास सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर ईदा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो।

सखी शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमा दम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर।

बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे गड़ी याले बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सकी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर।

अली दा पहला नंबर हो लाले मेरी हो लाले मेरी लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर।

हाय रात धम्मी लुटी जान दिए आख गयो वे साई मुड़ ना आयो आख गयो वे साई मुड़ ना आयो आख गयो वे साई मुड़ ना आयो आख गयो वे साई आख गयो वे साई मुड़ ना आयो आख गयो वे साई मुड़ ना आयो लिख लिख चिट्ठियां मैं पांदी लिख लिख चिट्ठियां मैं पांदी हाय रात धम्मी।

खुशी गुलाम ओ नदी, खुशी गुलाम ओ नदी। नींदर ते कईयां हाए, नींदर ते कईयां, नींदर ते कईयां हाए, कईयां चौका लाइयां, हाए रात दम्मी लुट्टी जान।

है यार डाडी इश्क आतिश लाई है ओ सानू लग गई बे अख त्यारी सानू लग गई बे अख त्यारी सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है इश्क अवेड़ा बहन न देंदा इश्क अवेड़ा बहन न देंदा थी गदागर मस्त करेंदा थी गदा

है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग

0: बीबी पापा की दरवाजा नहीं खोल दे, जल्दी आ बीबी।
1: हाय ओए मेरे रब्बा,
0: ये बारी खोल के देखना है, शायद बारी खुली हो गए। बारी तो खुली है। पापा जी निकल लग गए। पापा जी
1: की होया
0: बीबी? पापा जी फोन लेने लग गए। हाय मैं मर गई। मैं क्या जी आप की कर लग गए तुसे? उतरो कड़ी गलो मर लग गए मुझे तुसे।
2: आसरा देने मेनू किसे दा आसरा बनन जोगा नहीं छड़िया।
0: गल कर दिया पापा जी।
2: पापा जी जिन्हों तुसी रब कहती हो उसे रब ने मजबूर किया मेनू मर जान वास्ते।
0: की कह रहे हो तुसी?
2: ठीक कह रहा मैं भला की बिगाड़िया सी तेरा वे रब्बा। सच्ची सुची किरत किरसानी करन वाले नू तू जीन जोगा नहीं छड़िया। जे तेरी यही मर्जी है तां फिर मैं आ रहा तेरे कोल तेनू पुछण अपना कसूर।
3: तेनू मेरे कोल आने वास्ते रस्से नाल झूलन की कोई जरूरत नहीं पंजाब सिंह, मैं आप आ गया तेरे कोल। बस की पूछना चाहना है?
4: तू तू तू कौन?
3: जिसनों तू हमने दोष दे रहा सी।
4: यानी तुसी रब हो?
3: जो मर्जी है कह लै, सोच मैं तेरी आत्मा तेरा अंतर मन।
2: मैनू वड़े वड़े लफ्जा च ना उलझाओ, मैं सीधा साधा जिमीदार हाँ। मैं तो बस यही जानता कि उत्ते रब हुंदा ते हेठा धरती ते किसान हुंदा, ते किसान भी रब तो घट नहीं हुंदा।
3: बिल्कुल ठीक पंजाब सिया, जेड़ा बंदा अपने खून पसीने नाल बाकियां दियां लोड़ां पूरियां करदा है वो रब ही हुंदा है। पर इस रब नूं मरन दी की लोड़ पै गई?
2: मेरी इन्नी दुर्दशा करके हुण भोले बनन दा नाटक ना करो रब जी। तुहानूं भला पता नहीं केड़ी गल लुकी है तुहाडे कोलों?
3: जी सच पुछे ते मैं तेरी कोई दुर्दशा नहीं कीती। असल विच मैं किसी की भी दुर्दशा नहीं करता।
2: झूठ कोरा झूठ, जे तुसी नहीं तो होर किन्ने कीता मेरा बेड़ा गर्क। मैं मेहनत करता रहा ते तुसी मेरी मेहनत नू मिट्टी च मिलांदे रहे। मैं फिर भी खामोश रह के अपनी मेहनत ते यकीन करता रहा, सोचा कि कदी ता तुहानू मेरी मेहनत ते तरस आएगा रब जी। पर उही गल होई जो मेरे वर्गे बदकिस्मत लोग कहते ने कि अजकल रब भी वड़े बंदियां दा ही हो के रह गया। गरीब वल तो तुसी तकदे भी नहीं, ते जे तकदे हो तो सिर्फ ओहदा बेड़ा गर्क करन वास्ते ते उहनूं मर जाण लई मजबूर करन वास्ते।
3: जे तू मैनूं अपने ही अंतरमन नूं रब समझिया तो ये भी समझ कि रब सिर्फ उसे नूं कहा जांदा है जो दूजों का भला करता है। बुरा करने वाले नूं कौन रब का दर्जा देता है? तू भी किरसानी करके दूजों वास्ते अनाज उगाता है तो तेनों भी धरती का रब मनिया जाता है।
2: पर धरती का रब हुण थक गया, हार गया अपनी बदकिस्मती के सामने। मैं की नहीं किया अपनी ते अपने मुल्क की तकदीर बदलन वास्ते? मिट्टी नाल मिट्टी होया, ना ठंड देखी ना गर्मी, ना भुख देखी ना प्यास। अपने सारे सुख आराम तज के त्याग के मैं अपने खेतां नाल यारी पाई। बंजर धरती दी हिक पाल के उस तो सोने वर्गी कणक उगाई, चाल उगाए, भुखे ढिड्डां नूं रजा दिता, गोदामां दे गोदाम भर दिते, अन्न पैदा कर दिता के पूरा संसार खावे तामी ना मुके। पर उहदे बदले मैनू की मिलिया? गरीबी लाचारी शाहूकारां ते बैंकां दे कर्जिया दा बोझ, नित दिन दरवाजे ते आउण वाले लैणदारां दी जलालत।
3: तू क्रांति वीर है पंजाब, क्रांति वीर निराश हो के रोंदे नहीं होंदे?
2: कादा

0: लांगेरू राम जी।
1: जय हिंद जी मार जी।
0: जय हिंद जी। जय हिंद रुड़िया राम जी। सौ बच्चालियो की हाल चाल है तुहाडा ते नाले तुहाडी खेती बाड़ी दा?
1: लहरा बहरा मार जी।
0: ते लो फिर हुण जिमीदारा दियां होर लहरा बहरा कराउन लई ना खेती बाड़ी विज्ञानिया ने गन्ने दी एक होर नवी किस्म कढ़ी।
1: अच्छा जी।
0: बस रुड़िया राम जी बैजा बैजा हुजू। और इस किस्म नू ना ता लगे

0: मैं माफ कर दियो रब जी, मैं सचमुच पटक गया सा, मैं समय दे नाल नहीं चलिया, शायद इसे करके समय ने मैनू बहुत पिछे तक दिता। गुरबत ते कर्जिया की दलदल विच,
1: इस दलदल चो हूं तुसी खुद बाहर निकलना है पंजाब सिंह जी। कणक ते झोना उन्ना ही उगाओ जिन्नी इन्हां दी बाजार विच मंग है, बाकी होर फसलां उगाओ जिन्हां बारे खेतीबाड़ी दे माहिर विज्ञानी तुहानूं बार बार ताकीद कर रहे ने। पंजाब सिंह जी, जिहड़ा सौंदा है वक्त दी मंग, ओही जितदा है जिंदगी दी जंग।
0: मैथों गलती हो गई जो मैं आप हुदरा बन के कणक झोने दे चक्कर च फसिया रहा, हुण मैं जित के दिखावांगा जिंदगी दी जंग। मैं अपने माहिर विज्ञानियों के दसे राह नूं अपनावांगा, एक बार फिर शान नाल अन्नदाता कहावांगा।
1: कोई शिकवा तो नहीं मेरे नाल?
2: शुक्र है मेरे रब्बा, चाह ठंडी होगी प्रीत, जो गर्म करके लिया।
3: गर्म क्यों, मैं नमी बना के लिया अपने पापा जी।

अन्नदाता एक कहानी तुसी सुन रहे सी कथा लोक प्रोग्राम दे विच। लो जी हुण वेला हो गया है पंजाबी गीतां दा। सब तो पहला पेश कर रहे हैं आशा भोसले दी आवाज दे विच एक गीत।

दोस्तों पंजाबी फिल्मां दे विच वेला उदों बदलिया जदों गुड़ नालों इश्क मिठा वर्गे गाने चल पे यारी जट दी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच एक मील दा पत्थर साबत हुई। पहली बारी किसे फिल्म च दिखाया गया कि ओवरसीज तो किवें प्यार जाके पाया जा सकता है, बाहरले मुल्कां च जाके भी बंदा अपने प्यार नूं भुल नहीं पाउंदा। सो ये जिहड़ा गीत सी गुड़ नालों इश्क मिठाए दे बड़े रीमिक्स बनाए गए पर जो ओरिजिनल है ना उहदी तां कोई रीस नहीं है। तो आओ फिर थानू उही गाना सुनाउने आ सविता साथी ते उहनां दी साथियां दी आवाज़ां च।

कहंदे ने कि औलाद लई माता पिता सब कुछ करदे ने। माता पिता अपना ढिड कट के भी अपने बच्चों की जरूरत पूरी करदे ने। उना माता पिता दे कदमा दे विच वाकई जन्नत हुंदी है दोस्तो, जेड़े अपने पाटे झगे वल कदी नहीं वेखदे, जेड़े अपने पाटे बूटा वल कदी नहीं तकदे। उन्हां नूं इह हुंदा है कि मेरा पुत मेरी धी चंगी तरह रोटी खावे, रज के पढ़ाई करे, ते अपना ते अपने पिंड दा, अपने शहर दा, अपने देश दा, अपने माता पिता दा नां रोशन करे। की इन्ना सपना वेखना माता पिता दा हक नहीं है? सो इस वक्त आकाशवाणी दा इह प्रोग्राम जिहड़ा भी साडा छोटा बच्चा नौजवान सुन रहा है, उन्हूं इको गल कहना चाहवांगे कि माता पिता दे नाल कदी भी बहस ना करो। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

परमात्मा दा नां ना सिर्फ थानू जिंदगी जीण दी जात सिखांदा है पर अजमा के वेख लेना तुहाडे औखे सौखे वेले दे विच ओ आप सहाई हुंदा है। कदे किसे दा दिल नहीं दुखाना चाहिदा, कदे किसे नूं मंदा नहीं बोलना चाहिदा, वड्डियां दा सत्कार करना चाहिदा ते छोटियां नाल प्यार करना चाहिदा। बस यही तां सिखांदी है साडे गुरुआं दी बाणी। एक बहुत ही प्यारा गीत जेड़ा बहुत बार तुसी सुनिया होएगा दूरदर्शन दे उते अज आकाशवाणी तो सुनोगे। एरिए पंभीरिए तू दित्ता घर केड़ा, अंबा वाली कोठड़ी अनारा वाला वेड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा।

दोस्तों इस दे नाल ही अज दा देश पंजाब खत्म करन दी इजाजत दियो। उम्मीद करदे हां कि अज दा प्रोग्राम तुहानूं बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो खत जरूर लिखो। प्रोग्राम देश पंजाब मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। कल नवी सभा दे विच नवी सभा दे विच नवे प्रोग्राम लेके आवांगे। हुण तुसी बाकी दे प्रोग्राम सुनोगे आकाशवाणी जलंधर तों।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेती बाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
2: 60 साल की उम्र वालों को 3000 रुपए महीने की पेंशन होगी सुनिश्चित
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त देके योजना में शामिल हो सकते हैं 18 तो 40 साल तक के किसान
2: इस योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लिए जन सेवा केंद्र में जान
2: ते अपना नाम मुफ्त में दर्ज करा
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत में समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्होंने मान कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी
2: किसान वीरों जे तुसी सरों सोयाबीन मूंगफली तिल सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करदे हो तां तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है ऑल सीड्स किसान मित्रा ई सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानां नूं तेल बीज फसलां संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देने लई शुरू कीती गई है किसान वीरो ई सेवा राही तुसी फसल दी किस्म बिजाई खादां दी वरतों सिंचाई कीड़े मकौड़ियां अते बीमारी दी रोकथाम अते फसल दी सुचज्जी संभाल नाल संबंधित सवाल पुछ सकते हो इस लई अपने मोबाइल फोन विच 40 24 59 81 80 नंबर नूं ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पुछो ई सेवा किसानां नूं तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है सो किसान वीरो आधुनिक टेक्नोलॉजी नूं खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 40 24 59 81 80 वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर ते किसान वाणी प्रोग्राम नाल
0: जय हिंद किसान वीरो उम्मीद करते हैं कि साडे किसान वीर सुहाणिया सब चढ़ती कला विच होंगे और जिथे तक गल करते हैं असि खेती दी असि किसान वाणी दे अंतर्गत हर मंगलवार वीरवार शनिवार वत्त जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि साडे किसान वीर नूं सुहाणे नूं कोई समस्या ना आवे तो हम खेती संदेश की गल करिये कमाद की खेती वधाउण दे लाहेवंद बनाउण लई कुछ नुक्ते ने क्योंकि कमाद एक बहुमंतवी फसल है ते इस दी बिजाई दे रुत्तां पतझड़ ते बहार विच हुंदी है ते सितंबर

0: रिस्पेक्ट जो है सबसे पहले उनसे फीलिंग आनी चाहिए और मेरा काम नहीं है बल्कि ना वर्क इज गॉड या वर्क इज वर्सेस ऐसे करने आएंगे और ज्यादा होना चाहिए प्लस उसे पूरे डेप्थ जाओ उसे पूरी की मेरिट्स ने की डिमेरिट्स ने समझो उन्होंने किस तरह मकामे रखा जाता है किस तरह प्रेजेंट किया जाता है फोन नंबर तुम नोट कर लो 9431156369 जिन्होंने भी हेल्प चाहिए जो भी पूछना चाहते हैं बड़े आराम पूछ सकते हैं मन अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता मैं मखाने लैके मखाने से बहुत सारा प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अभी बाजार बच्चों चिप्स खिलाने या अनहेल्दी चीजा खिलाने या जंक फूड खिलाने अगर कोई इनोवेशन करे या कोई तरह का अगर अपना दिमाग लगाए तो ये पास्ता भी बन सकता है चिप्स भी बन सकते हैं मखाना फिर रोस्टेड से बनाना ही है हर तरह के फ्लेवर बनाना ही है हेल्थ वास्ते ध्यान दिया जाए तो मखाना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केट तो जंक फूड अगर बच्चों लोग ना खिला मखाने के उत्ते अलग अलग तरह के पास्ता बन सकता है बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मखाना लोग प्रमोट करन और अपनी इनोवेशन करन तो एक तो इंडिया हेल्दी भी रहेगा तो नाल टेस्टी भी आएगा जंक फूड ना खा के तुम हेल्दी चीजा तो प्रमोट करो या हेल्दी चीजा के अगर ध्यान दो और हर तरह के मखाने एक ऐसा पाउडर अभी बनाने हैं हर तरह के चीजा बन सकती ने केक बन सकते ने पेस्ट्रीज बन सकती है कस्टर्ड बन सकते ने बच्चे वास्ते जरा पैरेला खाते उस टाइप के प्रोडक्ट बन सकते ने तो बहुत हेल्दी है बहुत हेल्दी अगर इन इंडिया थोड़ा सा ध्यान दे तो जंक फूड के अलावा काफी हेल्दी तरफ बंदा जा सकता है
1: सो कमल जी जी तुसी इस पर जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: प्रोग्राम है किसान वाड़ी हम डॉक्टर चरणजीत कौर जानकारी दे रहे ने नदीन नाशकां दे सही चोण ते तकनीकी ढंग नाल छिड़का किवें करना चाहिए आओ लेने हैं इससे जानकारी
2: सब तो पहला मेरे वालों सारे किसान वीरां ते बीबियां नूं सत श्री अकाल मैं डॉक्टर चरणजीत कौर जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे स्टेशन फार्म सलाहकार सेवा केन्द्र हुशियारपुर गंगिया विखे बतौर प्रमुख पसार विज्ञानी फसल विज्ञान दे तौर ते सेवा निभा रही हां ते मैं आप जी दे नाल अज जो विषय है नदीन नाशकां दी सही चोण ते तकनीकी ढंग नाल छिड़का उस बारे विचार सांझे करांगी किसान वीरो जिस तरह की आप जी नूं पता ही है कि वख वख फसलां दे विच कई तरह दे नदीन हुंदे हन ते एह जिहड़े नदीन हन असीं इन्हां नूं तीन श्रेणियां विच वंड सकदे हां इक हुंदे ने घा वाले नदीन दूसरे हुंदे ने जी चौड़ी पत्ती वाले नदीन ते तीसरी श्रेणी है जिहदे विच कह लो कि गंढी वाला मोथा होर जिहड़े झोने दे विच मौसमी मोथे हुंदे ने ओह वाले श्रेणी है इन्हां दी सही समय ते रोकथाम ना करिए ते फसल दे झाड़ दे विच झाड़ नूं काफी घटा दिंदे हन कणक दी गल करिए ते कणक दे विच जे घा वाले नदीन जिहड़े कि गुल्ली डंडा अपना जंगली जवी हो गया कुई वगैरा ए सारे घा वाले नदीन हन इसे तरह जिहड़े चौड़े पत्ते वाले नदीन जिवें कि जंगली पालक मैणा मैणी होर बिल्ली बुट्टी पित पापड़ा बथू वगैरा ए सारे चौड़ी पत्ती वाले नदीन हन ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੋੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕੱਲੀ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ

0: इन योजना में शामिल हो सकते हैं 18 से 40 साल तक के किसान।
1: इस योजना में सरकार देगी बैंक का योगदान।
0: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ ले जन सेवा केंद्र विच जान
1: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
0: अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है

0: भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 7:05 और 15 सेकंड। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन भोगी सुनिश्चित
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। अमित, जब भी हम अपने अन्नदाताओं यानी किसान भाई बहनों की बात करते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। हमारे किसानों की मेहनत, लगन और नई नई जानकारियों के साथ अब अधिक गुणवत्तापूर्ण और कृषि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर खेतीबाड़ी का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं।
4: बिल्कुल आपने सही कहा, कार्यक्रम किसान वाणी का उद्देश्य भी प्रतिमा यही है कि जो हमारे भाई बहन खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक सोच हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचे, उसका खेती खलिहानी में उपयोग करें, अच्छा उत्पादन लें और देश की इस आर्थिक रीढ़ को मजबूत करें। और हमारी कोशिश होती है कि जो किसान के लिए हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वो हमारे किसान भाई तक पहुंचे और ऐसी ही बातचीत हम अपने कार्यक्रम में साझा करते हैं किसान भाई बहनों के लिए।
3: तो आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर।
4: देश के युवाओं और हमारे किसान भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकार की एक नई दिशा है, नई दृष्टि है, नई सोच है। भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जिससे निरंतर हमारे देश के युवा बढ़ रहे हैं और बागवानी का उत्पादन बढ़ रहा है।
3: जी, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र, फल, सब्जियां, फूल, मसाले, सुगंधित एवं औषधीय पौधों आदि का समग्र और टिकाऊ विकास करना है। वर्तमान में ये व्यापक रूप से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत संचालित होता है।
4: बिल्कुल प्रतिमा, और जो हमारे देश के युवा किसान भाई बहन राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए चाहे पौधों की नर्सरी तैयार करने की बात हो, नए बगीचे लगाने हो, संरक्षित खेती हो, सिंचाई के उपकरण हो, इसके लिए हमारी सरकार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान करती है।
3: और साथ ही मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की हम बात करें तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, नए फल एवं सब्जी बागानों की स्थापना को बढ़ावा देना भी है।
4: तो भाई हम क्यों पीछे रहें, केवल आवश्यकता है जागरूकता की। मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का हम हिस्सा बने, सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लें और निश्चित रूप से अपनी भागीदारी सिद्ध करें।
3: बिल्कुल सही है कहा, और किसान के लिए इसका महत्व बागवानी फसलों में अच्छी तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध, सिंचाई

0: और कटाई के बाद उचित प्रबंधन अपनाने से भी है।
1: और भाई इसकी अधिक जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मिल सकती है।
0: बिल्कुल अमित, और देखिए हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सभी यही चाहती हैं कि हर मिशन के द्वारा किसान भाइयों को लाभ पहुंचे।
1: तो साथियों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक ऐसी बातचीत का, ऐसी जानकारी का, जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहन भाइयों, राम राम। किसान बहन भाई, अमरूद की बागवान की शुरुआत कैसे करें, या हमारे जिन किसान बहन भाइयों के पहले से ही अमरूद के बाग लगा रखे हैं, तो कौन कौन सी समसामयिक कृषि क्रियाएं करें ताकि उनको आने वाले समय में अच्छा फसल उत्पादन मिले, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार।
3: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: डॉक्टर साहब, अमरूद है काफी लोकप्रिय फल माना जाता है, तो क्या वजह है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं?
3: देखिए, अमरूद की लोकप्रियता के पीछे कोई एक वजह नहीं है
2: जी।
3: एक ऐसा ये बहुआयामी और इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि अमरूद अब फलों की जगह ना एक औषधीय फल की तरह प्रचलित हो रहा है। इसके पीछे कुछ मूल कारण है। एक तो आप अपनी जीवन शैली देखिएगा, हमारी जीवन शैली में, भोजन पद्धति में इतना बदलाव आया है कि हम पेट संबंधी विकारों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और अमरूद एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जो पेट संबंधी विकारों के लिए एक ऐसा फल है जो कि आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा महंगा फल नहीं है। इसकी जो जलवायु है, इसकी खेती के लिए देश के 25 राज्यों में अमरूद का कमर्शियल उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ 150 से ऊपर इसकी प्रजातियां हैं। अमरूद को हम सघन बागवानी में लगा सकते हैं। अमरूद की जो फलन शुरू हो जाता है वो तीसरे साल से इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाता है। अमरूद खाने से आपकी विटामिन सी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब जो अमरूद में विटामिन सी उपलब्ध है वो आप सोचेंगे कि सिट्रस वर्गीय फलों से भी ज्यादा है, यानी हमारे संतरे से ज्यादा विटामिन सी अमरूद में उपलब्ध है। अमरूद में फाइबर होता है 5 से 6%, तो जो हमारे गट के बैक्टीरिया है उसके लिए हमें फाइबर बहुत अच्छे से चाहिए होता है, तो हमें अमरूद के जो मिनरल्स अमरूद में उपलब्ध है, सो आप सोचिए कि 150 के ऊपर ऐसी बीमारियां एक प्रकार से चिन्हित की गई हैं जिसमें कि अगर अमरूद का सेवन करें तो उनका निदान या उनका रोकथाम संभव है। सो एक तरफ तो मानव के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर इसका औषधीय बहुत अच्छा है, और दूसरी बात रही किसानों की, तो जब किसान भाइयों ने देखा कि अमरूद की डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए इसका अमरूद का दिन प्रतिदिन रकबा बढ़ने लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 20 सालों में अमरूद का पूरे देश में जो टोटल रकबा है वो 4 गुना बढ़ चुका है। सो इसमें 4 गुना रकबा बढ़ चुका है और 5 गुना इसका उत्पादन भी बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि इसकी जल्दी से आय शुरू हो जाती है, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, और इसकी हम क्योंकि साल में 2 बार फलन आता है तो किसान भाइयों को एक अच्छी हैंडसम इनकम इससे प्राप्त होती है।
2: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि कितना गुणकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आमदनी के तौर पर देखें तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। अब बात आती है कि जो भी हमारे किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो शुरुआत करें, पहले तो खेत के चयन की बात आती है कि किस तरह से उनको कहाँ पे लगाना चाहिए।
3: सबसे पहले तो जो भी किसान भाई सुन रहे हो इसको कि अब अमरूद के अगर आपको बाग लगाने हैं तो खरीफ की फसल कटने के बाद में अब ये बाग लगाए जाएंगे फरवरी में, या फिर अगर आप रबी की फसल भी लेना चाहें तो अप्रैल के महीने के बाद आप खेत की तैयारी से शुरुआत करें। अप्रैल के महीने के बाद आप ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि पानी नहीं भरता हो। मेरे किसान भाई बड़े गौर से इस बात को जाने कि अमरूद में अगर आप ऐसे खेत का चयन करते हैं जिसमें पानी भरता है तो उकटा संबंधी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें कैसे खेतों का चुनाव करना है जिसमें बलुई दोमट मिट्टी हो या जो भी आपके क्षेत्र की मिट्टी हो उसमें पानी नहीं भरता हो। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अमरूद की प्रजातियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। आप सोचें कि पूसा संस्थान से विकसित पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा का एक भी पौधा इस समय बचा नहीं है। सो किसान भाइयों को पहले से ही निर्धारित करना है कि वो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रेडिटेड नर्सरी या अपना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं या कोई केंद्र की पोषित कोई परियोजना से जो नर्सरी चल रही है उनमें हम पहले से ही संपर्क करें। मैं कुछ प्रजातियों के नाम ले रहा हूं, उन प्रजातियों की बहुत अच्छा उत्पादन भी है, उसके साथ साथ उनकी प्लांटिंग की उपलब्धता भी ज्यादा है। जैसे हम पूसा आरुषि, पूसा प्रतीक्षा, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ललित, श्वेता, धवल, ये कुछ उत्तर भारत के लिए उपलब्ध प्रजातियां हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपलब्धता भी रहती है, और अगर आप पहले से बुकिंग कर देंगे, जैसे कि अभी ही किसी ने मन बनाया कि हमको अगले साल से अमरूद की बागवानी में जाना है, तो आप अभी से ही इन संस्थानों के पास में अपनी बुकिंग पहले से कर दें, जिससे कि आपको पौधों की उपलब्धता हो जाएगी। एक हो गया स्थल का चुनाव, दूसरा हो गया प्रजाति का चयन, तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना है कि किसान भाइयों को कितनी दूरी पे पौधे को लगाना है, और पौधा लगाने के पहले

0: अप्रैल के महीने में गड्ढा खोद लेना है 1x1x1 मीटर या कम से कम 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। इनको 3x3 मीटर या 4x4 मीटर की दूरी पे आपको अच्छे से इन गड्ढों को खोद के सूरज की रोशनी से अच्छे से सिक जाए वो गड्ढे, तो जितने भी फंगस होते हैं या जो ऐसे कीट होते हैं उनका सोलराइजेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों को क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद उसके साथ साथ आपको उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास में उपलब्धता हो सके तो वर्मी कम्पोस्ट भी साथ में उसमें मिक्स करके, और जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर करना है, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना है। क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है बहुत प्रोडक्टिव होती है और जब जड़ें जाती हैं जड़ें नीचे जाती हैं, तो हमने ऊपर का पोषण तो हम कर ही रहे हैं बाहर के सोर्स से, सड़ी हुई गोबर की खाद से, बर्मी कंपोस्ट से, नीचे भी हमारे पास में जो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। तो एक तो आपके अंदर कोई पत्थर है, कोई कचरा है या कोई ऐसी फंगस है या कुछ ऐसे रोग कीट वो खत्म हो जाते हैं और हमारा पूरे पोषण की साल भर की उसकी व्यवस्था भी उस गड्ढे से कर देते हैं। तीसरा, 15 जुलाई के बाद में जब 1-2 पानी गिर जाए उसके बाद में दोपहर के बाद पौधारोपण करेंगे तो इसमें पौधों के सर्वाइवल के चांसेस 90% के ऊपर रहते हैं। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। अमरूद में एक नियम है कि अमरूद में नई प्ररोहों पे, नए कलनों पे फलन आता है। सो अगर किसान भाई अपने पौधे का आकार, पौधे का विन्यास ठीक से रखेंगे तो हर साल जब वो प्रूनिंग करेंगे तो उनको रेगुलर फसल मिलती रहेगी, उनका पोषण कम लगेगा और पोषित फल उनको मिलते रहेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया किस तरह से हमारे किसान भाई जो नए बाग हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी किसान भाई कोई फसल लगाते हैं तो अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो क्या बाग लगाने के लिए भी मिट्टी की जांच करवाना जरूरी होता है?
0: देखिए, ये ऐसे ही है जैसे कि हमें बुखार आया तो हमारा डॉक्टर बोलता है कि एक बार अपन ब्लड टेस्ट करा लें, उससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर के स्वास्थ्य के पैरामीटर कैसे हैं। तो मिट्टी लाइव है, मिट्टी जीवित है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता है, वो हमें जानकारी हो तो हम आगे हमारे पौधों को क्या देना है उसका बहुत अच्छे से हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है और मिट्टी की सैंपलिंग का तरीका, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने जो सबसे पास में जो सबसे अच्छा एक जानकारी का स्रोत होता है वो होता है कृषि विज्ञान केंद्र, और मृदा की जांच के बाद में उसके हिसाब से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसको हम नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। सो किसान भाइयों को इसके रेट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर हम बोलेंगे कि हम नेचुरल फार्मिंग से ग्रो करके उत्पादन करके इस अमरूद का उत्पादन कर रहे हैं, तो रेट भी अच्छा होगा और उसका स्वाद भी अच्छा होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी।
1: जैसे सब आपने बताया किस तरह से बाग लगाना है, फिर मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम हो, फायदा ज्यादा हो, तो जब नर्सरी लग जाती है अमरूद की तो फल 3 वर्ष के बाद उनको मिलता है, तो एक 3 साल का गैप भी रहता है, तो उस दौरान वो कौन कौन सी फसल कर सकते हैं साथ में ताकि उनको फायदा भी हो और जो अमरूद की फसल है उसको भी कोई नुकसान ना हो?
0: देखिए, उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में जहां जहां अमरूद का उत्पादन होता है वहां वहां फूलों की भी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। अमरूद के अंदर कभी कभी निमेटोड की समस्या आती है और निमेटोड के लिए हम लोग कई बार संशोधित करते हैं कि हम गेंदे की खेती करें, तो ऊपर से गेंदे के फूल मिल जाएंगे और उसको जड़ों के साथ ले लें तो निमेटोड जो होता है उसमें जो गेंदे की जड़ें होती हैं उसमें वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं निमेटोड, तो हमें निमेटोड से भी निपटारा हो जाता है और गेंदे की जो फसल है वो आपको 3 महीने में सारा लाभ दे जाती है। जैसे हमारे संस्थान से ऐसी प्रजातियां निकली हैं गेंदे की, जैसे दीपावली के टाइम पर जिसकी फ्लावरिंग आएगी, आप सोचिए कि अब तो मंदिरों में, मार्केट में, मैरिज में, हर जगह फूलों की खेती की जरूरत पड़ती है। सो एक तरफ तो आपका अमरूद के बाग में भी साथ में काम चलता रहेगा और इसके साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करें, स्पेशली गेंदे की खेती करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आप उनकी भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप एक बात का ध्यान रखें, अमरूद के बागों में कभी गहरी जुताई नहीं करते, क्योंकि अमरूद की जो पोषक तत्व वाली जड़ें होती हैं वो ऊपर की 25 सेंटीमीटर के नीचे तक ही होती हैं, और अगर हमने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से इन जड़ों का नुकसान किया तो हमें बाद में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सो हमको ऐसी फसल उगानी है जो कि ऊपर टॉप सॉइल में ही होती हो, हमको कोई जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हो ऐसी फसलों को बिल्कुल चयन नहीं करना है।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो भी किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाएं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि जिन किसान बहन भाइयों के हमारे अमरूद के बाग पहले से ही लगे हुए हैं तो वो इस समय कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं या समसामयिक कार्य हैं वो करें ताकि आने वाले समय में उनको फसल का अच्छा उत्पादन मिले और दाम भी अच्छा मिले?
0: देखिए, इस समय ना बरसात की फसल खत्म हो चुकी है, तो इस समय आप देखेंगे कि अमरूद में कुछ सड़े गले फल नीचे पड़े होंगे, उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लें, फिर कुछ शाखाएं सूख रही होंगी उन शाखाओं को भी निकाल दें, कुछ शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खा रही होंगी उन शाखाओं को भी निकाल दें, उसके बाद में या तो हम बोडेक्स पेस्ट बना लें, या हम अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे, बोडेक्स पेस्ट बनाना भी बहुत सरल सा काम होता है, इसमें नीला थोता और चूने का प्रयोग होता है, जिसको आपको ये जहाँ पे ये सीमेंट वगैरह

0: लोहे वगैरह मिलता है वहां पे, नीला धोता आसानी से मिल जाता है। तो अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप लेप बनाएं और जमीन से ऊपर 1 फुट तक तने में इसके लेप का वो करें। उसके बाद हम अगर तने के पास मिट्टी नहीं चढ़ी है तो मिट्टी चढ़ा लें और आप देखेंगे अभी सर्दियों वाले फल सेट हो गए होंगे। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर उसके साथ में आप कुछ ट्राइकोडर्मा का भी पाउडर मिक्स करके डाल सकें तो एक तो जमीन के नीचे माइक्रोबियल पॉपुलेशन पूरी बढ़ जाएगी और जब जमीन में माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अच्छे सूक्ष्म तत्व होते हैं, अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं जमीन में तापमान आपका बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटी चलती रहेगी, तो आपकी जो सर्दियों वाली फसल है वो बहुत अच्छी मिलेगी। इन सब बातों का किसान भाई अभी जिनकी फसल लगी है वो ध्यान दें और सर्दियों की फसल का अच्छा सा उनका लाभ मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कीट की रोग की तो उनका भी प्रबंधन करना जरूरी है क्योंकि जो कीट हैं कीड़े हैं वो भी फसल को बर्बाद करते हैं।
0: आपने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि अमरूद की पॉपुलरिटी के पीछे कारण क्या है। उसके पीछे एक कारण है कि अमरूद में रोग एवं कीट व्याधियां कम आती हैं अपेक्षाकृत दूसरे फलों की फसलों से। फिर भी इसमें एक बहुत खतरनाक बीमारी आती है जिसको हम उकठा रोग कहते हैं। उकठा रोग में क्या सबसे बड़ा कारण होता है कि किसान भाई इन जनरल अभी भी अमरूद में गहरी जुताई कर रहे हैं, अमरूद में खुला पानी दे रहे हैं और इसके साथ साथ अमरूद में अगर हमने शुरुआत में जड़ों में डैमेज किया तो फिर उकठा की बीमारी बढ़ने लगती है। तो इसके 3 तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले हमें खुली सिंचाई नहीं करनी है। दूसरा हमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन नहीं है या जिसको हम लोग बोलते हैं टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप इसमें थाला बनाइए और थाले के बगल में इसमें लाइन खींचिए, इसको नाली कहते हैं, आप थाले वाले विधि से इसकी सिंचाई कीजिए। और तीसरा अमरूद के जो क्राउन पोर्शन जिसको तने का जमीन से जुड़ा हुआ जो जगह है उस पर हम मिट्टी चढ़ा के रखेंगे जिससे कि डायरेक्ट उस जगह पे पानी ना लगे, अदरवाइज उससे भी अमरूद सूखने की संभावना हो जाती है। दूसरा जो अमरूद में सबसे बड़ा जिससे पूरा देश परेशान है वो है फल मक्खी की समस्या। तो फल मक्खी की समस्या के 2 निदान है क्योंकि बरसात में फसल बहुत अच्छी आती है, बरसात की फसल जो होती है उसमें 95% अमरूद का फलन हो जाता है, 5 से 10% फलन हमें सर्दियों का मिलता है। तो हमें इसमें 2 तकनीकी अपनानी। किसान भाई इसमें आप सोचेंगे अगर आपने वो विधियां अपना ली तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे फूल सेट हो जाते हैं, फल लग जाते हैं अमरूद में बरसात में, तो हमें सबसे पहले फलों को तोड़ना यानी हमें फ्रूट थिनिंग करनी है। हम देखेंगे अमरूद के 3-3 जो फल हैं वो एक साथ लगे रहते हैं, साइड के हमें 2 फल निकाल देने हैं और 1 फल रखना है और हमें कोशिश करनी है कि एक पेड़ में करीब हम 75 से 80 फल उससे ज्यादा ना रखें क्योंकि एक फल के लिए हमें 25 से 30 पत्तियां चाहिए होती है उसके पोषण को पूरा करने के लिए। तो जब हम बहुत ज्यादा फलन लेते हैं तो हमारी गुणवत्ता भी कम होती है और उसके साथ साथ हमारे फलों का साइज भी छोटा रह जाता है। आप देखेंगे आजकल अमरूद का बड़ा अच्छा साइज आ रहा है, देसी अमरूद का भी बहुत अच्छा साइज आ रहा है क्योंकि किसान अब फ्रूट थिनिंग करना शुरू कर दें। दूसरा अमरूद जब बेर के आकार का हो जाए तो उसमें आजकल एक पॉलीथिन बहुत अच्छी टाइप की आने लगी है जो बैगिंग में आप उपयोग कर सकते हैं, इससे इसका कलर भी अच्छा होगा और इसके साथ साथ फल मक्खी अपने अंडे नहीं दे पाएगी। अगर आपने इन 2 चीजों का ध्यान रख लिया तो किसानों की बहुत अच्छी आय मिलेगी और लागत कम से कम रहेगी। और तीसरा जो मैंने अपनी बातों में आपसे बताया है कि जो नेचुरल फार्मिंग है जिसको हम कहते हैं कि बगैर किसी केमिकल की कोई खेती हो सकती है तो अमरूद की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब जैसे बाजार में जब भी अमरूद आता है तो लोग साफ सुथरा अमरूद जो फल है अमरूद का वही पसंद करते हैं लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं अमरूदों पर, उनसे कैसे बचाया जा सकता है फसल को?
0: उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकें तो जैसे मैंने बोडेक्स पेस्ट बताया ऐसी बोडेक्स का पेस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप 6 ग्राम प्रति 5 लीटर के हिसाब से आप उसमें घोल बनाएं और इसको छिड़काव करें तो उस बैक्टीरिया का प्रबंधन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप प्रयाग से अमरूद आ रहा है कहीं और से आ रहा है ना, पत्ते चिपके रहते हैं कई कई अमरूद में, जैसे हम चित्तीदार बोलते हैं तो वो एक वैरायटल ट्रेट होता है। बट दूसरे के लिए आप अगर एंथ्रेक्नोज वगैरह की समस्या आ रही है तो उसके लिए आप बोडेक्स पेस्ट का स्प्रे बना के घोल करें या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल करें, उससे निदान आसानी से हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं जहां उनको अच्छा लगता है फसल का भाव वहां बेच सकते हैं, तो ऐसे में अगर हमारे जो किसान भाई अपनी फसल को एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं बेचने के लिए तो खासकर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
0: देखिए हमको जब भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं भी तो हमको देखना है किस स्टेज पे हमें उसकी तुड़ाई करनी है। हम इसको बोलते हैं जब हरापन पूरा खत्म हो जाए, उसको कलर टर्निंग स्टेज कहते हैं। उस कलर टर्निंग स्टेज पे जब किसान भाई इसकी तुड़ाई करते हैं और उसके बाद में हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करने के बाद में उसको अच्छे से हमें कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स या ऐसा लगे कि कोई ट्रे है प्लास्टिक ट्रे, और आजकल बड़ी स्मार्ट पैकिंग होती है, नीचे उन्हीं पत्तियों को नीचे डाल दिया जाता है तो वो पैडिंग का काम करते हैं, ऊपर अमरूद रख दिए जाते हैं और अमरूद की जब तुड़ाई करते हैं तो आप देखते हैं 2 लीफ साथ में जुड़ी रहती है। आप सोचो उसको छू के आदमी बोलता है कस्टमर कि इस अमरूद को लेते हैं जरा फ्रेश लग रहा है, इन थोड़ी छोटी चीजों का किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जिससे ट्रांसपोर्ट में उसको जर्क नहीं।

0: लगे तो इसके ध्यान रखना है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अभी जाड़ों में हमारे किसान भाई फसल लेंगे अमरूद की, तो उसके लिए खाद पानी के प्रबंधन पर भी हम बात कर लेते हैं, किस तरह से उनको करना चाहिए।
0: जब हम सारी साफ सफाई कर लें अपने बाग की, तो उसके बाद में हमें सड़ी गोबर की खाद, अगर उसमें हम ट्राइकोडर्मा मिक्स कर सके तो ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा की अगर हमने कल्चरिंग गोबर की खाद में पहले से कर ली, उसके साथ साथ एक एजोटोवेक्टर नाइजर जैसे अपन AN17 करके स्ट्रेन आता है, अगर वो हमने साथ में अपने गोबर की खाद में डाल लिया और उसका फिर प्रयोग हमने अमरूद के बागों में किया, तो अमरूद के पोषक तत्वों की जो मुख्य जरूरत थे वो पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने दी है हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जैसा आपने बताया उसी तरह से अपनी फसल का प्रबंधन करेंगे और उन्हीं कृषि क्रियाओं का वो उपयोग करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे सभी किसान भाई बहन सुन रहे थे ये खास बातचीत। और हमें देखे ना, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या हमारी सरकारें हैं, समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साझा करते हैं, चाहे वो सम्मेलन हो या संगोष्ठी हो या किसी भी मेला हाट के द्वारा हो। अभी देखिए, रबी अभियान 2026 को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28 और 29 सितम्बर को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
3: आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियां, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं तो खरीफ, जिसमें बहुत चिंता थी मन में, अब क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है, तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई कि बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। एल नीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहां राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। जहां संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है और रबी की तैयारी भी करनी। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहां कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। जहां पानी सीमित है उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूं कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पे खड़े हैं। एकदम रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें, फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए। जहां भरपूर पानी है वहां आप देखिए कौन सी किस्म, जहां पानी की कमी है वहां कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है। और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए, अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं है, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें। बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उनका वितरण, इसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए समयबद्ध। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा राज्य में आप एक मजबूत टीम एग्रीकल्चर बनाइए। केबीके को जोड़ने की बात हुई है, एफपीओ को जोड़िए। एक जो बात अभी डाइवर्सिफिकेशन की कही थी, अब डाइवर्सिफिकेशन

0: करना तो ये राइस फेलो पे काम अभी से करना पड़ेगा भाई। हर एक राज्य विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य, मेरा आग्रह है राइस फेलो में आप दलहन की बोनी की पूरी रणनीति बनाइए उपलब्ध नमी की आवश्यकता को देखते हुए। तो मुझे लगता कि हमारे सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा। और एक मुझे लगता है हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहां विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो, यह हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए। माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है, इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आगे आए, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी पड़ेगी।
1: मित्रों, अब कार्यक्रम में समय है मौसम का और कोशिश रहती है कि मौसम को ध्यान में रखकर ही अपने कृषि कार्य करें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मौसम की बात करें तो सुबह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस और शाम का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
2: तो ये थी मौसम की जानकारी।
1: अब कार्यक्रम में समय है कृषि सलाह का।
2: बिल्कुल अमित, और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी समय समय पर बहुत से अनुसंधान और शोध कार्यों द्वारा ये कृषि सलाह निकालते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और वो जागरूक हो सके। और हम बताना चाहेंगे अपने सभी किसान भाई बहनों को कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव न करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि में सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें।
1: बिल्कुल प्रतिमा, और वहीं जो धान की कृषि हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं, अगेती और मध्यम अवधि की धान की फसल इस महीने पककर तैयार हो जाती है। दानों में नमी 17 से 18% होने पर ही कटाई करें और कटाई के बाद विशेषतः ध्यान रखें फसल अवशेषों का, क्योंकि भाई ये जलाने नहीं है, अपितु जलाने के बजाय पूसा डीकम्पोजर का उपयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
2: तो ये थी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि सलाह। तो अब इंतजार है हमारे सभी किसान भाई बहनों का कि आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव क्या रहे। तो अमित, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कुछ सब्जियों के भाव। अगर हम आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा लगभग 12 से 18 रुपए प्रति केजी। प्याज की अगर बात करें तो ये 35 से 40 रुपए प्रति किलो रहा। टमाटर 35 से 40 रुपए केजी। बैंगन की बात करें तो ये 20 से 25 रुपए प्रति केजी किसानों को मिल रहा है।
1: बिल्कुल प्रतिमा, बात कर लेते हैं कुछ फलों के भाव की। यदि सेब की बात करें तो सेब का भाव रहा है 150 रुपया प्रति किलोग्राम से 175 रुपए प्रति किलोग्राम। अमरूद 100 रुपए से 120 रुपया प्रति किलोग्राम। और वहीं पपीता की बात करें तो पपीता का भाव रहा 40 से 50 रुपया प्रति किलोग्राम।
2: और अमित, इस तरीके से जब मंडी के भाव हमारे किसान भाइयों को पता चल जाते हैं तो वो अपना सामान बेचने और खरीदने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। और अमित, देखिए हमारे सभी किसान भाई बहनों को इंतजार रहता है कि हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है उन तक पहुंचे, और हमें भी इंतजार रहता है उनकी फीडबैक का। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। अब वक्त है किसान भाइयों से विदा लेने का, और साथ ही हम तो यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को उनके मन मुताबिक उत्पादन मिले, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण मिले। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाई बहनों से अनुमति लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में

0: सुविधा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कबाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: इसी के साथ गजल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 7:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को 1941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री शाह ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से राजधानी में आधुनिक, मजबूत और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 शुरू होने से मयूर विहार फेज 1 से सराय कालेखा होते हुए दक्षिण दिल्ली और एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को मौजूदा बारापुला नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी।
3: मैं बधाई देती हूँ अपने सारे अधिकारियों को जिन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ का दौरा किया, एक एक परमिशन के लिए विभागों को संपर्क लिया और संपर्क करने के बाद उन कामों को पूरा करवाया और आज साक्षात रूप में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं।
2: वहीं श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुकरबा चौक अंडरपास का निर्माण बाहरी रिंग रोड पर यातायात को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना में 2 वाहन अंडरपास और 1 पैदल यात्री अंडरपास शामिल है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि बारापुला फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन तथा लोनी अंडरपास और सावित्री सिनेमा, मोदी मिल, फ्लाईओवर का शिलान्यास दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग मिश्रा के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक तथा त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। दूसरे निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से PM2.5 और PM10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की व्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार सड़कों की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, परिवर्तन और जन भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। शिवांग के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली मेट्रो ने आज हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग परियोजना स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों को उनकी दैनिक गतिविधियों से शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान धूल नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को ये भी सलाह दी गई कि वे खाली अवस्था में चल रही मशीनों को बंद रखें, पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल करें और ग्रेडेड

0: एक्शन प्लान ग्रैप के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेलगाड़ी में यात्रा करने वालों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से नियमित यात्री पहले से ही अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। NCRTC ने बताया कि इस सुविधा से बार बार टिकट खरीदने या कार्ड रिचार्ज करने की जरूरत कम होगी और रोजाना के सफर में काफी समय की बचत होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा सुनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की आज शुरुआत की गई। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे राइजिंग लीडर्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को MCD की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और प्रमुख नागरिक दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सीलमपुर के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और पूर्वोत्तर दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय और छोटूराम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विशेष शिविर आयोजित किए। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजधानी के नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। श्रीमती पंत ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई, धूल नियंत्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 6वीं कोर्ट बैठक की अध्यक्षता की। श्री संधू ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए शोध कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहे बल्कि उसके निष्कर्षों को दिल्ली की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आज दक्षिणी जिला पुलिस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ने राजधानी के सुनसान पार्कों में गश्त बढ़ाने और डार्क स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने जैसे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान अनेक विधायकों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष बल दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसकी लंबित FCRA पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। FCRA से संबंधित सभी सेवाएं FCRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है और किसी भी FCRA सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के विशेष योगदान की पहचान करना और सम्मानित करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट।
1: श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के व्यवस्थित ढांचे के जरिए शहरी स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, साफ सफाई और नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एंड इनोवेशन सेंटर भी शुरू किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में टिकाऊ खपत, दोबारा इस्तेमाल संसाधनों की रिकवरी और सर्कुलरिटी को भी बढ़ावा देगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना से देश भर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, पर्यटन प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हवाई मार्गों के लिए नेटवर्क रणनीतियां तैयार करने और भविष्य के नए मार्ग के विकास पर चर्चा के लिए मंच मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तिका सौंपी। इसमें पिछले 1.5 वर्ष में दिल्ली में किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जन कल्याणकारी पहलों का विवरण है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान साफ रहेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला के 3रे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है जीत और गायक कलाकार हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक।

0: Sede.
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टू स्टेट से एक गीत जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्री प्रधाने और गीत रचना है अमित भट्टाचार्य की और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

दोस्तों चैनल पर श्रोता सुन रहे हैं गेट माइल का फिल्म संगीत चेतन के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सोलवा साल। गायक कलाकार हैं हेमंत कुमार।

मैंने अभी आंखें जो तेरी देखी द ट्रेन फिल्म से एक गीत अभी आप मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहब्बत है फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, जसपिंदर, उद्धव, ईशान, श्वेता और सोनाली।

0: श्रोता उसी के साथ मोहब्बत फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की चेतन को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 8:45 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और

0: आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को, ये तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: एफटीए का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Trebuie să reușești de mixan, să reușești de lise, să reușești AI Technician. Tânul mic șef, faci valei la geogelie, mișești cu răstar ca la plan. La mâncă închid fi, ca să găsi în timp să cântă 2000 și abis, dacă tu vrei cu spatii. Aceea vedem pe rei, www.avans.gov.in. Iar sunt parcă care este chisie sicken, dar nu aș căia cu pară să răstar 2000 și abis. Și mă ne vom tini, mi-am.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: No external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमरीका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
4: अमरीकी कांग्रेस के जो यहां पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
5: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
6: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रूपए मिल रहे हैं।
7: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रूपए मिलता है।
5: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाब ही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें। ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किये। मुक्केबाजी में नरेन्द्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रवीण हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भारवर के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रूपये प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरूआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for

डीडीएमए में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में गजल सराहें तलत अजीज, समाप्त फरमाइए कुछ गैर फिल्मी गजलें।

सर्विसेज हामी सबै आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार, और आज के हमारे फनकार हैं तलत अजीज।

2026 में भारत ने खवातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता है। खवातीन के ट्रैप इन्फिरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, गैर यकीनी हालात और जोग्राफियाई इम्कानात से पैदा होने वाले चैलेंजेस के पेश नजर भारत को जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक सोच और हंगामी मनसूबाबंदी को अपनी तैयारियों का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय बहरिया के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का हदफ वाजे है कि बहरान पैदा होने से पहले तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि किसी भी बहरान से निपटा जा सके। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि जारी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने एक बार फिर भारतीय बहरिया की पेशावराना और अमली तैयारी को साबित कर दिया है, जो मुल्क की तवानाई की सप्लाई लाइनों और कौमी मफादात के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत बहर हिंद के खित्ते में एक काबिल एतमाद और तरजीही सिक्योरिटी शराकतदार के तौर पर मजबूती से खड़ा है और एतमाद और भरोसे की अलामत बना हुआ है, जिससे मुल्क के महासागर के विजन को तकवीयत फराहम हो रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि जनूबी बहर चीन, बहर रोम, बहर ओकियानूस में भारतीय जंगी जहाजों की मौजूदगी मुल्क की बहरी ताकत की सलाहियत का इजहार करती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और माकूल कीमतें मिल सकें। इससे हिकमत अमली में कटाई के बाद के बंदोबस्त, पैदावार को साइंसी तौर पर गोदाम में रखना और मार्केटिंग निजाम शामिल है। आज नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 पर कौमी ज़राई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खिताब करते हुए जनाब चौहान ने तूर, उरद और मसूर की कम अज कम इमदादी कीमत पर 100% सरकारी खरीद और 48 घंटे के अंदर अंदर अदायगी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैन अलावा आजाद तजारती माहदों के तवसत से उभरने वाले बाजार के नए इम्कान को भी बरूए कार लाएगा ताकि मुल्क की जरिए पैदावार फलों, सब्जियों और अनाज को आलमी बाजारों तक रसाई फराहम हो सके। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के तहत नए इकदाम के सिलसिले का आगाज किया, जिनका मकसद 50 शहरों के लिए इक्तसादी, सकाफती, विरासती, मजहबी, सयाहती और इंतजामी अहमियत के हामिल मिसाली शहर से मुतालिक तरीकेकार तैयार करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि 24 रियासतों में ये 50 शहर मुल्क के बकिया हिस्से के लिए एक साफ सुथरे मिसाली शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अहम शहरों, सकाफती अहमियत के हामिल शहरों, ज्यादा सयाहों वाले मकामात और इक्तसादी मराकज को इनमें शामिल करने को यकीनी बनाया है। इन इकदाम का मकसद एक मुकर्रर मुद्दत के दौरान निगरानी और जायजे के एक मुनज्जम तरीकेकार के तहत शहरों की सफाई सुथराई, ठोस कचरे के बंदोबस्त, इस्तेमाल शुदा पानी के बंदोबस्त और शहरियों की शमूलियत के जरिए नुमाया बेहतरी लाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर रायजनी का हक नहीं है। इब्सा बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वज़राए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरक ऐलामिया जारी किया, जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ता नजर को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तसादी, तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की रायजनी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की रायजनी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तश्वीश की वजह करार दिया है और यह कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए।
100% محصول پر. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے حال ہی میں نئی دلی میں امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ کی.

0: तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद हो जाए। अगर टेस्टिंग का फैसिलिटीज है तो इमीडिएट टेस्टिंग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि टेस्टिंग नहीं फैसिलिटीज है और इसमें स्वाइन फ्लू लगता है तो इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो प्रोफाइलेक्स भी हम देते हैं। टेबलेट अवेलेबल है, ट्रीटेबल है, इस वायरस को हम ट्रीट कर सकते हैं। सांस के साथ ही अंदर जाता है ये वायरस, और निमोनिया टाइप का जो सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, कफ, खांसी, जुकाम, बॉडी में दर्द, इस टाइप का सिम्टम्स लक्षण दिखाई देता है। और इससे अभी तक जैसे कि इस साल लगभग 9,000 करीब लोग इस पीड़ित हुए हैं, और दिल्ली में कम से कम 1,600 करीब कन्फर्म केसेस पाया गया है।
1: डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके जो सिम्टम्स है यही है जो नजला, जुकाम होना, खांसी होना, इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स?
0: बुखार के साथ ही होता है।
1: अच्छा, बुखार भी होगा,
0: बुखार बुखार होता है, और जैसे नाक से पानी गिरना एक सिम्टम्स है, गला जैसे है, गला में दर्द होना, खांसी होना, थोड़ा सा गला में जो सिम्टम्स गले का, थ्रोट, सो ये एक लक्षण है। तो नाक से पानी, गले में थोड़ा सा दर्द होना, खुसखुस करना, और हेडेक होना, बॉडी में दर्द, जैसे वायरल सिम्टम्स उस टाइप का है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा लंग्स का,
1: सांस लेने का जो प्रॉब्लम,
0: उसमें ज्यादा ये देखा गया, कल्चर उसमें ग्रोथ होते हैं वायरस। अच्छा। और ये जो इसमें क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है, जैसे और भी कॉन्टाजियस, जैसे हाथ और किसी चीज इन्फेक्टेड मेटेरियल को हम अगर टच कर लिया तो उसमें भी वो वायरस होते हैं और एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम अभी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई भी, उसके साथ अगर हैंडशेक कर लिया तो उसके थ्रू से भी, हैंडशेकिंग थ्रू से भी आपको इन्फेक्ट हो सकता है। ये
1: बहुत अहम बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और अब हम तकरीबन अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की जान बरवा दवा है, कुछ और एहतियात आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो हेल्दी रहें? बिल्कुल।
0: हाँ देखिए, ये तो सीजनल फ्लू है, स्वाइन फ्लू।
1: जी जी।
0: और इस सीजन में आपको एक एक स्टेट में, जैसे किसी किसी स्टेट में आपको हाई एंडेमिसिटी होता है,
1: जी जी,
0: कहीं ट्रांसमिशन होता है, तो कहीं पे भी हो अगर इस बीमारी का जैसे रिपोर्टेड है तो पहले तो अपने आपको बचाओ। और कैसे बचाए कि आपको इस सीजन में ज्यादा क्राउड में ना जाए, अवॉइड करे, जरूर जाए बट प्रोटेक्शन लेके जाए। और अगर किसी को इस टाइप का लगता है कि बीमार जुकाम है तो खुद वो बाहर क्राउड में ना जाए, और घर पे अगर कोई आइसोलेटेड रूम हो, कोई अलग सा रूम हो, तो उसमें रेस्ट ले, ना ऑफिस जाए, कम से कम 5 दिन तक, 4 से 5 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, और स्कूल भी नहीं जाना चाहिए, दफ्तर नहीं जाना चाहिए। और जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप जरूर काम पे जाए, क्योंकि आप अगर चाहेंगे क्राउड में जाएंगे तो जरूर ये बीमारी सोसाइटी में फैलेगी और ज्यादा आपको
1: बढ़ सकती है,
0: बढ़ सकती है बीमारी, और ये खतरा भी बढ़ता है देश के लिए भी, वो आपका ठीक नहीं है। तो ये क्योंकि ये कॉन्टेक्ट से ही एक से दूसरे को फैलता है, और इसकी इलाज है अगर आप अर्ली पहचाने इस बीमारी को, जब भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, और इसमें सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट भी होता है, और आपको इमीडिएटली अगर जरूरत पड़े मेडिसिन आपको दे देंगे। और इसकी इलाज है बीमारी का, स्वाइन फ्लू का मेडिसिन है, प्रॉपर मेडिसिन, और इसको वैक्सीन भी है, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं वैक्सीन के लिए, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में बहुत सारे स्टेट में आउटब्रेक चल रहा है, ऐसे ही बीमारी रिपोर्टेड है, लोग पैनिक है, बट अपने आपको
1: पैनिक
0: ना हो, अपने आपको ये बचाव करे, और ध्यान रखे कि अपने आप जब भी किसी को थोड़ा बहुत हो वो बाहर ना घूमे, प्रॉपर इलाज करें।
1: बहुत सही मालूमात एक साथ आपने डॉक्टर साहब दे दी। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: Benchmark domestic indices decline, Sensex falls nearly 250 points, Nifty settles at 22,716. India is working to become world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. And global crude oil prices decline over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,716 के स्तर पर दर्ज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामोहन नायडू ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट।

0: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से कारोबार की शुरुआत में से ही आज दबाव रहा। दोपहर बाद बाजार में कुछ सुधार के बावजूद सूचकांक लगभग 6 महीनों के निचले स्तर पर दर्ज हुए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. The Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index shed 1%, while the small cap 100 index dropped 0.8%. Markets opened lower this morning, tracking weak global cues. In the first hour of trade, benchmark indices touched the day's low before staging a reversal. Despite a moderation in losses during the afternoon session, the benchmark indices closed near their six-month lows as persistent global and domestic headwinds, along with pressure related to the monthly Nifty Futures and Options F&O expiry, continued to weigh on market sentiment.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 18 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.7%, एचसीएल टेक 2.3% और टीसीएल 1.7% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि अडानी पोर्ट 4.4%, सन फार्मा 1.1% के साथ साथ टाटा स्टील और कोटक बैंक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब भी रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged lower. Among the top laggards, consumer durables skidded 2%, focused IT lost 1.8%, and insurance dropped 1.6%. In contrast, services gained 1.5%, telecommunications rose 1.3%, and metal added 0.5%.

0: 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,925 advanced, and 209 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार दर्ज हुआ. डॉक्टर शर्मा, किस तरह से देखते हैं बाजार की दिशा को? बाजार में कहां कुछ घबराहट सी थी जो बाजार वैश्विक परिदृश्य में कहीं तो बिकवाली के दबाव में रहा, आज लगभग एक बार उसने आज दिन के अपने निचले स्तर को भी छुआ. हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार तो हुआ, लेकिन ओवरऑल आज टोटल माने तो बाजार में गिरावट ही हावी रही.
2: जी बिल्कुल, बाजार काफी वीक था आज और कारण यही है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. तो उसका जो उम्मीदें थी कि शायद कुछ ट्रंप में और ईरान में बात होगी, शायद ट्रंप साहब कोई डिसीजन लेंगे, पीस वार्ता शुरू होगी या फिर हॉर्मुज को खोलने की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है. और दूसरे नंबर पे जो एक यूएस ट्रेजरी बिल जो है, जो उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए या फिर कैपिटल फ्लोज के लिए अच्छे नहीं है. और तीसरे नंबर पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो भी इम्पैक्ट कर रहा है. तो क्रूड ऑयल तो बहुत ही अभी चिंता का कारण तो है ही है. और पहले क्या होता था कि वॉलीटिलिटी आती थी, एक बार प्राइसेस ऊपर जाके फिर वापस करेक्शन लेके कुछ ऐसे न्यूज पॉजिटिव आ जाती थी कि करेक्शन हो गई है, कि अभी कुछ शांति वार्ता की बात होने लगी है, तो प्राइसेस एकदम से करेक्ट होते थे. लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है. अभी प्राइसेस ऊपर जाके 105, 106, 107 के आसपास सेटल हो रहे हैं, वहीं पे ऊपर नीचे थोड़ी वॉलेटाइल है. बट जैसे पहले एक बड़ी करेक्शन आ जाती थी जब प्राइसेस ऊपर जाए, वो नहीं हो रहा है. तो अगर ये ऐसे ही स्टेबल रहते हैं इस लेवल पे जाके, तो काफी मतलब एक वरिंग फैक्टर है, खास करके हमारे लिए भी, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड के. और जो जैसे आपने बात की कि मार्केट्स में पहले काफी नेगेटिव था, डिसेलरेशन थी, उसके बाद मार्केट्स रिकवर भी हुई, तो उसमें मैं ये समझता हूं कि क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी डे था, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस में एक्सपायरी डे था, तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी काफी जो ट्रेडर हैं उन्होंने अपनी रिकवरी पोजिशन, जब मार्केट एक लेवल पे जाके और डिसेलरेट नहीं हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बना है. अभी मार्केट काफी लो पे है, जो जैसे आपने बताया कि 2-3 साल के लो स्तर पे मार्केट है,
1: तो
2: अभी तो 6 महीनों के स्तर पे है. और जैसे पहले 23,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन अभी 23,000 से भी नीचे है मार्केट. तो यहां पे क्या होता है कि एक तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि ऐसा एक बाइंग एडवांटेज भी आता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है. ये जो भी ग्लोबल हेडविंड्स है उसी की वजह से, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसी की वजह से. अदरवाइज इंडिया के
0: हाउ डू यू व्यू द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच वंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट. टिपिकली मार्केट्स आर हाइटेंड वॉलेटिलिटी ऑन मंथली एक्सपायरी डेज. However, CAS has led to such wild swings, which you noticed today as well in the benchmark indices, and that too at the fag end of the sessions. How do you react to the CAS thinking about such volatility in the market?
2: Yes, I agree that at the closing time some volatility exists in the
0: within 2 seconds it happens.
2: Yes, in the cash market and in the options also. But otherwise, I believe there is some stability during the day session. When you are in the mid of the day, then the stability is also there. But at the closing time, some volatility happens in the last 10-15 minutes. So I think that is majorly retailers are not investing in the options, so that's why I think they are not impacted. But in the trading segment, this is a worrying factor. and some SEBI is also taking measures to resolve it, and I believe there will be some plausible solutions in the coming times.
0: The consultation paper is available till 3rd October.
2: Yes,
0: okay,
2: yes.
0: Also, the Indian benchmarks have now logged one of the longest weekly losing streaks in years. How much of this fall is domestic because of earnings, valuations, FPI flows versus external, which you mentioned also, oil, US yields, global risk off, etc.?
2: Yes, I believe this is majorly because of the international factors, because our fundamentals are strong, very, very strong, because now we are very good in the IIP numbers. Our GDP numbers are 7.8%. Though inflation worries are there, that too because of the international factors, as WPI is significantly increased to the level of more than 9%, and that is also passing through to the CPI. But overall, the other growth indicators, whether the exports are growing 17-18% in merchandise segment, and IIP numbers, core infrastructure, all are steady and growing significantly. But at the global level, such kind of the news like crude prices are going up and there is no sign of discussion between Iran and US, and again the treasury 10-year treasury bill yield are high and dollar is again strengthening and the US has increased the Fed rate, so all these are the negative factors for the financial markets. That's why the global volatility impact the markets in emerging Asia, like India is impacted by such volatility. So but domestically I think there is no bad news from any segment.
1: Abhi thodi din baad hi bazaar mein dusri timahi ke natije bhi aane shuru ho jayenge, aur aam taur pe bazaar timahi natijon ko pehle se hi bhaap leta hai, mehsoos kar leta hai,
0: factoring kar leta hai
1: ji. Kya bazaar अभी भी उन ट्रिगर्स से कहीं उत्साहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनके नतीजों को बाजार उससे उत्साहित नहीं है?
2: देखिए, नतीजों में क्या होता है कि उससे पहले मार्केट्स इतनी डाउन साइड या इतनी डिसेलरेशन नहीं लेती हैं, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ये जो मेजर इम्पैक्ट आता है, जो डिसेलरेशन है, जो अभी हम कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल आया, जो मार्केट्स पहले कंसोलिडेट कर रही थी समवेयर बिटवीन 23,000-23,500, बट नाउ मार्केट्स डिसेलरेट बिलो 23,000, बट बिकॉज ऑफ दी
1: 23,000 के स्तर से नीचे अगर आता है तो क्या ये चिंता का सबब है या ये अवसर का समय है?
2: देखिए, मैं तो इसको अवसर का
0: आज 22
2: अवर मैं तो इसको अवसर का मौका मानूंगा, अवसर मानूंगा, क्योंकि अब आप 23,000 के नीचे हैं तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, आई बिलीव दैट इज वेरी लुक्रेटिव नाउ. आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट इज वेरी गुड, आई वुड से, बिकॉज एक ना एक दिन तो यूएस और ईरान में पीस होगा, सीज फायर होगा, दोनों
1: उसके पहले कितना नुकसान हो चुका
2: है, कितना नुकसान होगा, वो मार्केट्स ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुके
1: हैं. अगले सप्ताह मौद्रिक नीति भी आनी है रिजर्व बैंक की, तो वो कैसे प्रभावित होगी?
0: डॉक्टर शर्मा, एज माय कॉलीग सेड, आरबीआई एमपीसी पॉलिसी इज नेक्स्ट वीक, सो आर वी सीइंग डी रेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज after years of premium valuations, which you also just pointed out, or is this mainly a liquidity and risk premium story?
2: I think this is the story of the uncertainty actually at the global level that is impacting the market sentiment. Otherwise, markets hold a strong potential to bounce back. If some good talks or the peace talk starts between US and Iran tomorrow, then the markets will strongly bounce to the
0: sentiments
2: will improve. So I believe this is the story of sentiments and the volatility at the global level. But market pillars, like markets are growing, or the economic sentiment or the business sentiment is based on the four major things, like the demand trajectory, second the stability in the repo rate during the last many quarters, and the efforts of the trade and industry, And last, the hand holding provided by the government. Many reforms undertaken by the government during the last many years, and particularly during the West Asia crisis, during the months of March, April, May. So these are supporting the sentiment of the investors. But at the global level, the uncertainty again impacts the sentiments during the some such kind of volatility.
0: Moving on, 17 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, ISP, recorded year-on-year expansion in July 2026, with the 10 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today, administrative and support services led the pack with growth of 20.9%, followed by retail trade at 18.5%. Real estate rose 14.4%, accommodation and food advanced 12.6%, and banking registered 12.3% annual growth. Index of Services Production tracks short-term changes in the volume of output produced by the formal services sector relative to a specified base year. MOSPI said that the monthly ISPs are being published on trial basis to assess data quality and coverage. Very quick comment on 20.9%.
2: As I mentioned, that fundamentals are very, very strong, and services, these are creating a great breakthrough in the economy, as their contribution is also more than 55%. So these are indicating that the growth trajectory will remain intact in the coming times, and we will grow, and the growth will remain resilient in the coming quarters.
1: भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर अमेरिका कोई शुल्क नहीं लगाएगा। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। बहुत संक्षिप्त में, ये खबर आमतौर पर कितनी उम्मीदें जगाती है?
2: देखिए, ये एक हमारा बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, तो उम्मीदें तो बहुत जगाती है कि एक बहुत ही अनसर्टेनिटीज में एक आपको एक बड़ी आशा की किरण दिखाई दे, तो उम्मीद आ जाए, तो लगता है कि और भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं।
0: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said that India is emerging as a major global aviation hub and working towards becoming the world's third largest aviation market. Addressing the curtain raiser press conference on Routes Asia 2027 in New Delhi today, Mr. Naidu said that India aims to increase the number of passengers sixfold from around 24 crore currently to 130 crore by 2047. The minister highlighted that the number of operational airports in the country has increased from 74 in 2014 to more than 166 currently.
3: We have expanded the airport network in the country, and the next step for us is to improve the connectivity. Today we have a lot of Indian diaspora which is staying outside, and we also have big trust in the Indian ecosystem today in terms of having trade with our country, manufacturing and supply chain ecosystems in our country. All that begins with better connectivity. So that is why not only at Global South but also the bigger part of Asia and the rest of the world, we want to offer direct and more importantly better connectivity with the world. So our focus for Route 2027 is going to be to engage with airlines, to engage with the countries, to see how do we unlock the connectivity opportunity that we have.
0: Sharma, Minister said that India aims to increase the number of passengers sixfold from 24 crore to 130 crore by 2047. And that's very good news.
2: Yes, and that's true. Actually, we are growing significantly, and our objective is to become Viksit Bharat by 2047. And as Honorable Minister rightly said, that connectivity is very, very important when you are growing significantly, you are robust and you are becoming more and more strong and participating more in the global growth trajectory. So I think this is a great step towards increasing the connectivity, and like we have signed up many free trade agreements. So now we need the more and more connectivity, not only for the businesses, but for the people also. As they go there and find the opportunities and connect with the people, people to people exchanges.
0: It works very well as part of ease of doing business.
1: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पेत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर

0: Okay, so
1: this is not for the longer period.
0: So how quickly, Dr. Sharma, do you expect higher oil prices to feed into domestic inflation? And what does that mean for RBI's rate path in the next 6 to 12 months?
1: I think because now the sentiment is on the basis of the stable repo rate and some rational oil prices were there earlier before 6 months, but now these are very volatile. So these are impacting the sentiments and the price cost margins of the producers. So if the oil goes up, then again there will be some more impact on the price cost margin, the profitability of the producers, and that can impact the sentiment of the businesses.
2: चलिए कच्चे तेल के बढ़ नजर डालते हैं सराफा बाजार पे. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.2% के नुकसान से 1,47,667 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी 0.6% की गिरावट से 2,21,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थिति में सोने और चांदी की कीमत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है?
1: देखिए, मेरे को तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा अपना व्यू है, मेरे को लगता है कि अभी दिस इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डॉलर अभी स्ट्रेंथन हुआ है थोड़ी देर के लिए और ये गोल्ड में जो फॉल आया तो इसमें
2: बाइंग अपॉर्चुनिटी. जी डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,716. इंडिया इज वर्किंग टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, सेज सिविल एविएशन मिनिस्टर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन ओवर 1%. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथरा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद. तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब.

दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म का नाम सुनिए मुकेश की आवाज में। सुनना चाहते हैं जयराज पलोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जैस्मिन भट्ट। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। और ये अगला मेल है जनाब कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकत दले। कापासिला बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसीन, आसमा परी। बागवान मंदिर छोटी बलिया से न्यूर, आयशा अहमद और अखलाक अहमद बागवान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोदी डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान। विलंगाम से अजीत भावसार, परमिला भावसार और भावेश भावसार। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर और जयपाल यादव। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून। दुबई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार और दिलीप वर्मा। यह जनाब ग्राम लसूड़िया पाता, जिला तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद।

वैष्णव, सुमन कोमलपली और कृतिका रमेश चंद्र डांगी। और ये अगला मेल है सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सेन, सोमेश सेन का। वाला शाहपुर कोल्हापुर माला से चौहान इंदूरकर, तेजस्वनी चौहान और अंकिता अनिकेत चौहान। आप सबकी पसंद, आपकी नजर है मुकेश की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश।

Sí. राजनाथ सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, गैर यकीनी हालात और जोग्राफियाई इम्कानात से पैदा होने वाले चैलेंजेस के पेश नजर भारत को जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक सोच और हंगामी मनसूबाबंदी को अपनी तैयारियों का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय बहरिया के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का हदफ वाजे है कि बुहरान पैदा होने से पहले तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि किसी भी बहरान से निपटा जा सके। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि जारी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने एक बार फिर भारतीय बहरिया की पेशावराना और अमली तैयारी को साबित कर दिया है, जो मुल्क की तवानाई की सप्लाई लाइनों और कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत बहरे हिंद के खित्ते में काबिल एतमाद और तरजीही सिक्योरिटी शराकत दार के तौर पर मजबूती से खड़ा है और एतमाद व भरोसे की अलामत बना हुआ है, जिससे मुल्क के महासागर के विजन को तकवीयत फराहम हो रही है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और माकूल कीमतें मिल सके। इस हिकमत अमली में कटाई के बाद के बंदोबस्त, पैदावार को साइंसी तौर पर गोदाम में रखना और मार्केटिंग निजाम शामिल है। आज नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 पर कौमी जरी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खिताब करते हुए जनाब चौहान ने तूर, उड़द और मसूर की कम अज कम इमदादी कीमत पर 100% सरकारी खरीद और 48 घंटे के अंदर अंदर अदायगी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैन अल-अक्वामी आजाद तजारती मुआहिदों के तवस्सुत से उभरने वाले बाजार के नए इम्कानात को भी बरूए कार लाएगा ताकि मुल्क की जरी पैदावार, फलों, सब्जियों और अनाज को आलमी बाजारों तक रसाई फराहम हो सके। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के तहत नए अकदामात के सिलसिले का आगाज किया, जिनका मकसद 50 शहरों के लिए इक्तिसादी, सकाफती, विरासती, मजहबी, सियाहती और इंतजामी अहमियत के हामिल मिसाली शहर से मुतालिक तरीकाकार तैयार करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि 24 रियासतों में ये 50 शहर मुल्क के बकिया हिस्सों के लिए एक साफ सुथरे मिसाली शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अहम शहरों, सकाफती अहमियत के हामिल शहरों, ज्यादा सयाहों वाले मकामात और इक्तिसादी मराकिस को इनमें शामिल करने को यकीनी बनाया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू और कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर रायजनी करने का हक नहीं है। IBSA बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वज़राए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका आलामिया जारी किया, जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ते नजर को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तिसादी तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉ जयशंकर की रायजनी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की रायजनी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तशवीश की वजह करार दिया है और ये कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए। 100% महसूल पर वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के वफद के साथ एक मीटिंग की। खलीज फारस में भारतीय बहरी जहाजों पर तर्जमान ने मुत्तला किया कि खलीज फारस में
भारत के परचम बरदार 6 कमर्शियल बहरी जहाज हैं। उन्होंने कहा कि वहां 6 गैर मुल्की परचम बरदार बहरी जहाज हैं जो भारत सामान लेकर आ रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जहाज रानी की वजारत मुसलसल इन जहाजों की नकलो हरकत की निगरानी कर रही है और सभी मल्लाहों की सलामती पर नजर

मीनू फिल्म का लगभग आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में नमन गातिश की बदायूनी मौसीकार नौशाद। सभी ख्वाहिशमंद थे भाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, भाई अभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, कुड़ी सेक्टर पांचोली नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, भंडारा रोड कुरु मानामारा से हर्षित पाटिल, मंदाकिनी पाटिल और विलास पाटिल, और ये जनाब छाया कोले और प्रियांश कोले और रनी कोले कहां से, जगह नहीं इन्होंने लिखी, बहरहाल इनके नाम मैंने शामिल कर दिए। और जफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम और आलमारा, पुणे जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत, सोनी कॉलोनी खंडवा से दुर्गाफार डावर, अब्दुल्लक डावर और जियालक डावर, नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा जिला सोलापुर मारा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, मलबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी मार्कंडे, वार्ड नंबर एक पोभाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता, बिशनपुर गिरडी झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, मदरसा गेट भावपुर मुनियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान रिशाद और अजहर तबस्सुम, रायपुर अनी जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन, पुराने तालाब डुमराव से वली अंसारी, इस्मानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, मथुरंगी भटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, गांव डागर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर और गुरुप्रीत सिंह। और समय लिए सुनिए शमशाद बेगम के बाद में प्रोग्राम की अगली पेशकश, जिसे हमने लिया है नगमा फिल्म से, मौसीकार है नौशाद। सुनी के ख्वाहिशमंद है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी।

मोदी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, बुढ़ाना श्यामपुर माला से बलदेव दामोदर, सहदेव दामोदर और सुमित कुमार दामोदर, नागपुर माला से विट्ठल यादव, अनुसुईया यादव और पवन राजे यादव, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, पुरानी भलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीद तीन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, डंडोनवाड़ा से मोहम्मद कलीम जख्मी, बेबी फातिमा गाजी और नजमा बेगम नाज, पांडरकोड़ा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तन्मय पूरी गौड़ और सुरेश आशीष गौड़, अस्तुपुरा भागलपुर से बलदीप कुमार मंडल, देशर में इनको ले चुका हूं, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन और दीपक मुनत, मेहनगर मुरखेड़ से विजय गवाहनकर, सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर।

और सामने ये सुनिए मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है मैं चुप रहूंगी। पसंद करने वाले हैं सलतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी और मोहम्मद बिलाल अंसारी और जनाब ये हैं बसंत कुमार सिन्हा, रणदीप फाजी लगाने, रेखा देवी शाह और अजय कुमार गुप्ता, बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से। अच्छा अब आपने पूरा एड्रेस लिखा है, कौन जी आपके नाम पहले पढ़ चुका हूं मैं, आपको सुन रहा हूं तो आपको अंदाजा होगा। और ये है जनाब छोटी बलिया कटिया मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, सदा फारजू और जो इकबाल, कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजात हिबराले और प्रतीक हिबराले, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नौमान और तनवीर मसरत, कोली नांदेड़माला से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़, उदयपुर से नरतन गौड़, हिमांशु गौड़ और यश गौड़, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीडा, भालेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर और सुशीला भटकर, बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युवती देवदास, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान और सायमा नवाज, लक्सर आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय और महराज जहां, और ये जनाब गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी।

Πάσουμε έτσι φορμάιση φιλμίν αρμόκα προγράμ τα μιλήρ σάντ. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप और डीडी फ्री डिश पर। पेश है खिदमत प्रोग्राम बज़्मी मौसीकी। बज़्मी मौसीकी प्रोग्राम में आप सुनिए विदुषी हीराबाई बरोटकर से प्राप्त पूर्य कल्याण में ख्याल।

जहाजों की मौजूदगी मुल्क की बहरी ताकत की सलाहियत का इजहार करती है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू और कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर रायजनी करने का हक नहीं है। IBSA बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वजराए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका अलामिया जारी किया जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ते नजर को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तिसादी तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की रायजनी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की रायजनी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तशवीश की वजह करार दिया है और ये कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए। 100% महसूल पर वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के वफद के साथ एक मीटिंग की। खलीज फारस में भारतीय बहरी जहाजों पर तर्जमान ने मुत्तला किया कि खलीज फारस में भारत के परचमबरदार 6 कॉमर्शियल बहरी जहाज हैं। उन्होंने कहा कि वहां 6 गैर मुल्की परचमबरदार बहरी जहाज हैं जो भारत सामान लेकर आ रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जहाज रानी की वजारत मुसलसल इन जहाजों की नकलो हरकत की निगरानी कर रही है और सभी मल्लाहों की सलामती पर नजर रख रही है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब में खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सरहद पर तातुल के हल के बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत काफी वक्त से चीन से कहता रहा है कि बाहमी ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी किसी भी मुल्क के लिए मददगार नहीं होगी और तवील वक्त से तातुल भी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। भारत अमेरिका ताल्लुकात और तजारती माहदों के बारे में बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तजारती माहदे पर आपसी समझ बूझ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के आवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया। भारतीय बहरिया का जदीद जंगी जहाज INS रणविजय जारी तैनाती के सिलसिले में ओमान की बंदरगाह सलालह पहुंच गया जिससे भारत और ओमान के दरमियान देरीना दोस्ती और बहरी ताल्लुकात की अक्कासी होती है। इस मौके पर INS रणविजय और ओमान के RNOV साद के दरमियान पेशावराना सरगर्मियां अंजाम दी गई और भारतीय बहरिया और ओमान की शाही बहरिया के दरमियान गुजरगाह से मुतालिक बहरी मश्क भी मुनक़िद की गई। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी लीडरों, बैनुल अक़वामी हुकूक इंसानी के हामियों, सहाफियों, सिविल सोसाइटीज के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने जिनेवा प्रेस क्लब में मुनक़िद एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हकूक की बढ़ती हुई खिलाफवर्जियों पर पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की। कांग्रेस का इनेकाद जिनेवा में जारी अक़वामे मुत्तहिदा हुकूक इंसानी काउंसिल के 63वें इजलास के मौके पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने किया था। UKPNP के मुताबिक शुरका ने अदालती कार्रवाई के बगैर हलाकतों, जबरन गुमशुदगियों, मनमानी गिरफ्तारियों, इत्तलात पर
मुकम्मल बंदिश और पाकिस्तान के जेर कब्जा

0: कश्मीर में पाकिस्तानी सलामती दस्तों के जरिए बेजा ताकत का इस्तेमाल किए जाने की सख्त नुक्ताचीनी की। जापान के नगोया में एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते, जिनमें रिले शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। भारत ने ख्वातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3:29 में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4x400 मीटर दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू धंडा ने जापान में ख्वातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की। इससे पहले वो आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ ख्वातीन के ट्रैप टीम इवेंट में भारत को चांदी का तमगा दिला चुकी हैं। आईसी नगोया ने एशियन गेम्स 2026 में मर्दों के 5000 मीटर के फाइनल में कांसे का तमगा जीता। मर्दों के 10000 मीटर और 1500 मीटर मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद ये गुलवीर का तीसरा तमगा है। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मुकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में ख्वातीन के ट्रैप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मनीषा कीर, नीरू और अश्मिता अहलावत को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने उनकी कारकिर्दगी की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी टीम को मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मंसूबाबंदी पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू और कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुजश्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने ख्वातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सामीन सुनिए उस्ताद असगर हुसैन से वायलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

जैसे कि मौसीकी प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे उस्ताद अज़हर हुसैन से वायलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग। इसके साथ ही आज का क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। प्रोग्राम की पहली पेशकश सुरैया की आवाज में दास्तान फिल्म का नगमा नगमा नगा शकील बदायूनी मौसीकार नौशाद।

कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर राजधानी करने का कोई हक नहीं है। IBSA बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वज़राए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका आलामिया जारी किया जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ते नजर को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तिसादी, तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की राजधानी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की राजधानी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तशवीश की वजह करार दिया है और ये कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए। 100% महसूल पर वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के वफद के साथ एक मीटिंग की। खलीज फारस में भारतीय बहरी जहाजों पर तर्जमान ने मुत्तला किया कि खलीज फारस में भारत के परचमबरदार 6 कमर्शियल बहरी जहाज हैं। उन्होंने कहा कि वहां 6 गैर मुल्की परचमबरदार बहरी जहाज हैं जो भारत सामान लेकर आ रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जहाज रानी की वजारत मुसलसल इन जहाजों की नकल व हरकत की निगरानी कर रही है और सभी मल्लाहों की सलामती पर नजर रख रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान भारत दरियाए गंगा आबी मुआहदे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का दरिया का एक मुश्तरका कमीशन है और दरियाओं से मुतालिक सभी मामलात पर इस कमीशन के तहत तबादला ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। न्यूयॉर्क में एशियाई सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरहद पर तातुल के हल के बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत काफी वक्त से चीन से कहता रहा है कि बाहमी ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी किसी भी मुल्क के लिए मददगार नहीं होगी और तवील वक्त से तातुल भी किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है। भारत अमरीका ताल्लुकात और तजारती मुआहदों के बारे में बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तजारती मुआहदों पर आपसी समझबूझ है। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया। भारतीय बहरिया का जदीद जंगी जहाज INS रणविजय जारी तैनाती के सिलसिले में ओमान की बंदरगाह सलाला पहुंचा जिससे भारत और ओमान के दरमियान तैरीना दोस्ती और बहरी ताल्लुकात की अक्कासी होती है। इस मौके पर INS रणविजय और ओमान के RNOV साद के दरमियान पेशावराना सरगर्मियां अंजाम दी गईं और भारतीय बहरिया और ओमान की शाही बहरिया के दरमियान गुजरगाह से मुतालिक बहरी मश्क भी मुनक्किद की गई। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी लीडरों, बैनुल अक्वामी हुकूक इंसानी के हामियों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने जिनेवा प्रेस क्लब में मुनक़िद एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिनेवा में जारी अक्वामे मुत्तहिदा हुकूक इंसानी काउंसिल के 63वें इजलास के मौके पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने किया था। जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते जिनमें रिले, शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। भारत ने ख्वातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3 मिनट
29 सेकंड में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4 जरब 400 मीटर

0: दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू ढांडा ने जापान में ख्वातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की थी। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मुकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मंसूबाबंदी पर जोर दिया है। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू और कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर के साथ एक गैर सेगानी मीटिंग की। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने ख्वातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजे चाहता है। यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम बिजादर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
3: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
4: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख के

0: कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और ओडिशा में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, "The country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches a doorstep." The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. Last week, Secretary George highlighted the need for stronger international cooperation to return cultural properties during a high-level side event at the UNGA. The Ministry of Social Justice and Empowerment will organize a Safai Mitra Suraksha Evam Samman Shivir in New Delhi today as part of the ongoing Swachhata Hi Seva SHS 2026 campaign. Being organized under the theme is Samman Safai Mitro Ka Sankalp Swachh Bharat Ka. The Shivir aims to recognize and honor the vital contribution of Safai Mitras and facilitate their access to health, safety and social protection measures. The program will be organized in hybrid mode. The physical event will be in New Delhi, while urban local bodies, rural local bodies and line departments from across the country will participate virtually. Minister of State for Social Justice and Empowerment, P.L. Verma, and Delhi Chief Minister Rekha Gupta will attend the event. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign is being observed from 17th September to 17th October with the theme Swachhata Mein Sehbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat. Election Commission EC has organized special camps at different colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. The camps will continue till today. EC said that a large number of students visited the camps with queries related to SIR and

और दोस्तों उस दौर के गीतों में जब हम जाते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि जब आप इन गीतों को सुनते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना सुकून रहा होगा उस दौर में, कितनी शांति रही होगी आपस में, दिलों में कितना प्रेम रहा होगा, है ना। तो चलिए प्रस्तुत है अगली प्रस्तुति फिल्म सितारा से।

कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम केएल सहगल जी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। 1930 और 1940 के दशक में उनकी आवाज और अभिनय का ऐसा जादू था कि लोग उन्हें भारतीय सिनेमा का तानसेन भी कहते थे। मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी जैसे महान गायक भी उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली पेशकश उन्हीं की आवाज में, केएल सहगल।

सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी 1937 को उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। हिंदी सिनेमा की एक महान और सुरीली पार्श्व गायिका थी। उन्हें हिंदी संगीत के सुनहरे दौर 1950 और 1960 के दशक की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से गिना जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। तो आइए इसी मीठी सी आवाज को हम सुनवाते हैं आपको लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर, जो आकाशवाणी दिल्ली का है।

और दोस्तों अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय ऐतिहासिक गीत माना जाता है कि सदाबहार गाने में बहुत ही ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि लोग आज भी इस गाने को सुनकर प्रभावित होते हैं। ये गाना 1951 में आई मशहूर क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजी का है। इस फिल्म को महान निर्देशक गुरुदत्त जी ने निर्देशित किया था। इस गाने को फिल्माया गया था अभिनेत्री गीता बाली जी पर, जिसमें उनके साथ देवानंद जी भी नजर आए थे। और इस गाने को संगीत के जादूगर SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया था और इसके प्रेरक बोल लिखे थे मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने।

और दोस्तों अगली प्रस्तुति है सुरैया जी की आवाज में, जिनके सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गाने, उनकी बेहतरीन अभिनय और उनका उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। तो चलिए सुनते हैं गीता जी दत्त जी की आवाज, तो आपने अभी सुनी, लेकिन अब हम सुनेंगे सुरैया जी की वो मधुर आवाज जो अपने दौर में बहुत बहुत बड़ी पहचान रखती थी।

और दोस्तों अब तो सबके हाथों में मोबाइल है, इस वजह से ये वक्त हमें नहीं मिलता, लेकिन एक दौर था जब हम अपने बड़ों से कहानियां सुनते थे और ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि तब नानी दादी और अपनी माँ से बच्चे जिद किया करते रहते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ ना, नानी एक कहानी सुनाओ ना, दादी एक कहानी सुनाओ ना। तो वो दौर तो शायद नहीं आ सकता, लेकिन पुराने दौरों के गीत में हम उस भावना को, उस एहसास को महसूस जरूर कर सकते हैं। और ऐसा ही एक प्यारा सा गाना अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। फिल्म है सीमा, फिल्म का नाम है सीमा और इसे आवाज दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और इस बोल के प्रसिद्ध गीतकार, इसके बोल लिखे प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी जी ने और संगीतकार हैं खूबसूरत धुन को संगीत जो का जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। और पर्दे पर यह गीत महान अभिनेत्री नूतन पर फिल्माया गया था। आप भी सुनिए और अपने कानों से रेडियो को लगाकर इस प्यारी सी कहानी को अपने दिल के पास महसूस कीजिए। रात के 1:34 और 50 सेकंड्स हो रहे हैं।

और दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस प्यारी सी कहानी को आपने भी जरूर जरूर प्यारी सी कहानी का आनंद उठाया होगा। और दोस्तों अगली प्रस्तुति जो आपके लिए आ रही है वो 1955 की फिल्म बाप रे बाप का ये गाना है, जिसे आवाज दी थी आशा भोसले जी ने और जिसे संगीतकार थे जिसके ओपी नैयर साहब और गीतकार जान निसार अख्तर साहब।

दोस्तों, अब जिस फिल्म का गाना हम आपको तक पहुंचाने वाले हैं वो फिल्म है झनक झनक पायल बाजे। और इस फिल्म का जो प्रसिद्ध गीत है नैन सो नैन ना ही मिलाओ, संगीत जगत का एक अमर और शास्त्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत है। और इस गाने को आवाज दी थी हेमंत कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और संगीतकार थे वसंत देसाई जी और गीतकार थे हसरत जयपुरी जी। तो आइए रात के 1:44 पर हम आनंद लें इस मधुर से संगीत का।

और दोस्तों अब जो संगीत आपके पास आने वाला है, क्योंकि अभी जो आपने गाना सुना वो बहुत ही मधुर संगीत था, और लता मंगेशकर जी की आवाज में और हेमंत कुमार साहब जी की आवाज में, और अब जो गाना आपके पास आने वाला है वो भी बहुत ही प्यारा है और उस दौर का बहुत ही डांसिंग नंबर भी माना जा सकता है इसको। और पर्दे पर ये गाना राज कपूर साहब और एक्ट्रेस नादिरा पर फिल्माया गया है, जबकि गाने के दृश्य में नरगिस जी भी दिखाई देती हैं इस गाने के। और गहरे और प्रेरणादायक बोल मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने लिखे हैं, और बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने इसका संगीत तैयार किया था। तो चलिए हम भी सुनते हैं। रात के 1:50 हो चुके हैं और आप इस रात में सुन रहे हैं कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे।

दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जिनका हमें डटकर मुकाबला करना होता है। और फिल्म संगीत, अगर हम पुराने दौर के संगीत में जाएं तो कुछ गाने ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में एक ताज़ा हवा की तरह आते हैं और हमें जीने का नया जोश दिलाकर जाते हैं। और कुछ गाने नहीं, पुराने गानों के दौर पे जब आप जाते हैं, पुराने गानों को सुनते हैं, तो उनमें आपको कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी जीने का हौसला देती है, आप ज़रूर सीख जाते हैं। ऐसा ये गाना हमारी आखिरी पेशकश है आज के इस गीत सुनहरे प्रोग्राम की, जिसमें जो फिल्म है मुनीम जी, और इसमें आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत बोल इसके लिखे हैं साहिल लुधियानवी जी ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे। रात्रि के 2 बजने वाले हैं तो समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने जायोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जारी किया है। जायोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस CAR में DGCA से जायोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और

भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरला, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन चल रहा है, 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक

जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब का एक मशहूर कथा पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कथा है जिसमें अदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

इसी पेशकश के साथ फिलहाल गीत और गजलों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त सारिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 होने को है। ये सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। संगीत दिया है त्यागराजा ने। मृदंगम पर है रामानंद ईश्वरम। राग श्री रंजनी है जो कि ताल आदि में निबद्ध है।

अभी आपने सुना टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादवरम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप आओ योग करें। आज आप सुनेंगे पान मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, यह आप सुन सकते हैं आज 6:10 पर। 6:40 का वक्त रहेगा कार्यक्रम चिंतन का। चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बचत पर गांधी जी के विचार। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा 6:45 पर। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 64। प्रातः 7:10 का वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8:45 का समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर होगा कार्यक्रम साइंस मैगजीन मिट्टी दी महक, इसका आनंद ले सकते हैं आप 9:30 पर। 10:10 का समय है आपकी पसंद इस कार्यक्रम का। 11:10 पर आप सुनेंगे सबरस। 11:30 का वक्त है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:00 हैं। अब समाचार होंगे।
1: ब्रह्म की गात नहीं जाने जोगन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ा

आयो शरण जी के दानी, कारण कारण सम्राट श्री तार, राख ले हो नानक के स्वामी, कीरत कारण शरण मन मोहन, जोहन पाप बिदारन का, हर तारन तारन सम्राट सवार।

गुबार परयो है एता गब आकाश नामावत बिस्ता अस्त क्रिम उदर पहयो है तै दिस ताए

0: सकल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। स्नान दान तापन सुज केरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जी तां प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवती कत्यो

0: प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंदे न जात विदय मन दर्श मग पावक जयो न जात प्रयोजन तूरे लग नीर न साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छुपे हर नाम खग
1: उद्दम कर लागे बोह भांति बिछरे अनेक शास्त्र बोह खटुआ पसम लगाए तीरथ बोह भ्रमते सूखम देह बंदे बोह जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत।

हमे अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिख खाई माया मोह परम पूले सुध धारा से प्रीत ले एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरन एक अरदास पाठ की।

एन सहज स्वभाये दर्शन परस गुरु के जन्म मरण

ਤੇਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰਕੀ।

Oh.

हार जात गोपी ले वृंदावन में रंग किया। काल में वेद तर बन हुआ नौ खुदाई अलह पया नील वस्त्र लाए कपड़े पहने चुक पठानी अमल किया। चार वेद हुए सचार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करने।

पौड़ी सदगुरु विट्टोवारे अंजित मिलिया कसम संभालिया, जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन नेत्री जगत ने हलिया, कसम छोड़ दूजा लेके डुबे सेवन जा रहा। सतगुरु है बहुत विरले कने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया।